107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की नवमी तिथि और विक्रम संवत 2083, श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, तदनुसार 31 जुलाई 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

ईश्वर की भक्ति में समर्पित कार्यक्रम पुष्पांजलि सिर्फ शब्द नहीं, हमारी वो श्रद्धा है जो हम अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करते हैं। ये भक्ति की वो भाषा है जो बिना बोले भी प्रभु तक पहुंच जाती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हम साथ मिलकर करें प्रभु का स्मरण कार्यक्रम पुष्पांजलि में। और इसमें आपके साथ मैं हूं, आपका दोस्त सुस्मित, 100.7 FM रेनबो पर। और कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम सुपूजित भगवान श्री गणेश के इस वंदन के साथ।

जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, दिशाएं धीरे धीरे जागने लगती हैं और मंद समीर शिव की जटाओं से बहती है, तब मन पुकार उठता है, ओम नमः शिवाय। यही तो है दिन की एक शुभ शुरुआत शिव सुमिरन के साथ।

विष पीकर भी संसार को अमृत देने वाले शिव क्रोध में भी करुणा दिखाते हैं। उन्हें पाने के लिए न किसी विशेष विधि की जरूरत है, न ही शब्दों की। उन्हें तो चाहिए बस एक सच्चा भाव भरा मन, जो उनके चरणों में समर्पित हो जाए। इसलिए सच्चे मन से ध्यान करें भगवान भोलेनाथ का।

कभी किसी मंदिर में जाकर, कभी किसी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए हम सब ने भोलेनाथ को पुकारा है। पर क्या कभी सोचा है कि जब मन शुद्ध हो जाए तो वही मन स्वयं शिव का मंदिर बन जाता है, और यही तो है शिव की सच्ची भक्ति भी। जब हम बाहर नहीं अपने भीतर उन्हें बसाएं,

सब पर कृपा करने वाले भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं आप कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से, और मैं सुस्मित हूं आज आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। तो आइए सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

जब मन में श्रद्धा हो तो माँ पार्वती वामांग होती हैं, नंदी और भृंगी सेवा करते हैं, और स्वयं महादेव हमारे भीतर एक कैलाश बना लेते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो अनुभूति है जो हर सच्चा भक्त अपने हृदय में हर दिन जीता है। तो इस भाव के साथ आइए ध्यान करें शिव शंभू का इस दिव्य भजन के साथ।

भगवान शिव भोले हैं, भंडारे हैं, जो बिना कहे दे देते हैं, और जो त्रिशूलधारी होकर भी दया के सागर हैं।

उन्हें किसी सिंहासन की चाह नहीं, उनका आसन तो है नंदी की सवारी, और उनका निवास हर भक्त का हृदय, और उनका हर भक्त उनके कृपा का अधिकारी।

दोस्तों, संगीत के सुरों में लिपटी भक्ति की ये पुष्पांजलि अब अपने विराम की ओर है, पर ईश्वर से जुड़ा ये आत्मिक संबंध कभी खत्म नहीं होता। तो चलते चलते ईश्वर से यही प्रार्थना कि हमारे कर्म शुद्ध हों, विचार पवित्र हों और पथ सदा मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से, लेकिन आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा प्रोग्राम सदाबहार गीत में। तो आइए जुड़ते हैं इस भजन से।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं और सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक हो गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इसी दिशा में कड़े कानूनी प्रावधानों वाला विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यहां मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गाजीपुर के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवान

को नौकरी मिल रही है। यूपी में 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। इन अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने कल बरेली में बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता में दोनों अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद चित्रकूट में पेंशनरों को बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कोषागार परिसर में 24,26,000 रुपए की लागत से बनने वाले पेंशनर्स कक्ष का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश कोषागार निदेशालय लखनऊ द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा निर्माण कार्य के लिए 24.26 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में वरिष्ठ पेंशनर, उत्तर प्रदेश पेंशनर्स संघ के पदाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला बुलेटिन अखबारों के सुर्खियों के साथ 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

दोस्तों, सुबह की ये ताजी हवा, चाय की पहली चुस्की और रेडियो पे बसता कोई सदा बहार नगमा, इससे बेहतर सुबह और क्या हो सकती है। तो आइए इस हसीन सुबह को बनाइए और भी सुरीली प्रोग्राम सदाबहार गीत के साथ, जहां मैं सुस्मित लेकर आया हूं कुछ ऐसे ही गीत जो हैं किसी याद का झरोखा। तो 100.7 FM रेनबो पर शुरू करते हैं सफर की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दीवानगी उसकी पहचान बन जाती है। एक ऐसा दीवाना जो दुनिया की बंदिशें तोड़कर कातिल के पीछे भी मुस्कुराते हुए चल पड़े, क्योंकि उस दीवाने के लिए मंजिल नहीं सिर्फ उसका इश्क मायने रखता है।

जब बादलों ने घेर लिया आसमान और पत्तों पर गिरती बूंदों ने धुन छेड़ दी, तो दिल ने भी अपनी धड़कनों को थोड़ी सी रफ्तार दे दी। सावन के इस रुत में दोस्तों मौसम भी अब कुछ कहने लगा है। बादल दीवाने हो गए हैं और हवा में घुल गई है प्यार की खुशबू। तो आइए इस हसीन मौसम में प्यार के इस सदाबहार गीत के साथ थोड़ा भीगते हैं जज्बातों की बारिश में।

जब आंखें बोलने लगें तो लफ्जों की जरूरत ही कहां रहती है। कभी एक नजर का वादा सारी जिंदगी का भरोसा बन जाता है, और जब ये आंखें वादा करें तो वो वादा नहीं मोहब्बत की मुहर बन जाता है। तो चलिए इन्हीं नशीली अदाओं और प्यार की मस्ती में थोड़ी देर के लिए हम भी खो जाते हैं इस गीत के साथ।

सावन का मौसम हर दिल को कुछ पुरानी यादों की चिट्ठी भेजता है। कभी ये मौसम हंसाता है तो कभी किसी अपने की याद में भिगो देता है, और जब बादल गरजते हैं तो दिल तड़प उठता है कि काश

उस घटा के साथ वो भी लौट आए जिसका इंतजार हर बूंद करती है। क्या आप भी इस सावन में किसी को याद कर रहे हैं? तो आइए अपने अपने मन की भीगी परतों को खोलिए इस गीत के साथ।

और दोस्तों आपसे थोड़ी देर में हम पहुंचाएंगे आप तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की डेली हाइलाइट्स। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: has been nothing short of exemplary. This journey started with Mirabai Chanu getting us the gold in women's 48 kilogram category. Then came Gyaneshwari Yadav getting us the silver in women's 53 kilogram category. Then came Bindya Rani Devi getting us the bronze in women's 58 kilogram category. After that, there was Harjinder Kaur getting us the silver in women's 69 kilogram category. After that, there was Rishikanta Singh, who got us the silver in men's 60 kilogram category. Raja Muthupandi got us the silver in men's 65 kilogram category. Ajaya Babu got us the silver in men's 79 kilograms category. And then came Lovepreet Singh, who got silver in men's 110 kilogram category.
1: एथलेटिक्स में सारी निगाहें थी नीरज चोपड़ा, शॉटपुट में तेजिंदर सिंह तूर और 5000 मीटर में पारुल चौधरी पर। सुबह के सत्र का केंद्र थे भारत के लाडले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, 2018 गेम्स के स्वर्ण पदक धारी, पिछले गेम्स में चोट की वजह से नहीं आ पाए थे। ओलंपिक के विजेता, विश्व विजेता, एशियन गेम्स के विजेता, अलंकरण ही अलंकरण। लेकिन बीते समय चोट के शिकार रहे, करीब 9 महीने मैदान से दूर रहे वो। वापसी के बाद प्रदर्शन में अपनी पुरानी की खोज में दिखते रह रहे हैं। यहाँ इस स्पर्धा में मुकाबला खासा तगड़ा है उनके लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम, श्रीलंका के रोमेश थरांगा और हमवतन रोहित और यशवीर तो हैं ही। नीरज, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने ही क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। हाँ, जो दूरी उनके भालों ने नापी वो कागज पर उतनी शानदार नहीं लग रही। नीरज ने दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर भाला फेंका, जबकि 85 से ऊपर तो वो जब चाहे तब फेंक दिया करते थे। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क था 84 मीटर, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ठहरिए, 18 क्वालिफायर्स में से कोई भी ये मार्क हासिल नहीं कर पाया। नीरज ने बाद में कहा कि तेज हवा और ठंडक सभी भाला फेंकने वालों के लिए कठिन माहौल पैदा कर रही थी।
2: The throw was okay, like 79 meter throw, and the goal was to go in the final and give my best in the final. So I'm happy with the throw. Yeah, conditions are not best for javelin throwers. Not only cold, but it's really windy, and wind was also not in the front. Sometimes it's from side, and it's really hard to process. Like where we have to throw. We are happy that all three Indians are in the final.
1: तो अब निगाहें रहेंगी फाइनल में कि नीरज वहां पर उनका भाला लक्ष्य भेदने में सफल रहे। लेकिन कल का सबसे यादगार प्रदर्शन आया डिस्कस थ्रो में, महिलाओं की चक्का फेंक। सीमा कालीरम्मा ने अपना हालिया शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में सीमा और निधि रानी के रूप में भारतीय चुनौती थी। शुरू से ही वो तीसरे और चौथे स्थान पर रही और सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर की दूरी नापी तो निधि का चक्का 57.10 मीटर तक गया और ये स्थिति उन दोनों ने अंत तक बनाए रखी। हालांकि इसके बाद के सारे थ्रो सीमा के फाउल हो गए, लेकिन तब भी ये जो प्रयास तीसरा था वो उन्हें कांस्य पदक दिला गया। निधि रानी चौथे स्थान पर आईं। सीमा एक जीवंत उदाहरण है स्त्री शक्ति की ताकत का। मातृत्व के कारण उन्होंने अवकाश लिया, कुछ दिन बिल्कुल अभ्यास से दूर रहीं, उसके बाद वापसी की, मैदान पर आई और अपनी पुरानी लय हासिल की, बल्कि उससे बेहतर, साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल, डॉक्टरेट कर रही हैं। सलाम है सीमा आपको। नीरज के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थे तेजिंदर सिंह तूर। शॉटपुट में पदक की उम्मीद के साथ उतरे, दो बार के एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियन। उनके साथ थे समरदीप सिंह गिल। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, तूर ने कोशिश तो बहुत की लेकिन गोला 20 मीटर के आसपास ही जा पा रहा था उनका। तीसरे प्रयास में 20.27 मीटर फेंका उन्होंने, जो उनका कल का सबसे अच्छा थ्रो रहा, लेकिन ये काफी नहीं था पदक के लिए। वे पांचवें स्थान पर रहे, तो समरदीप सिंह गिल को ये संतोष अवश्य रहेगा कि उन्होंने भी 20 मीटर की दूरी पार कर ली। उनका बेस्ट थ्रो रहा 20.23 मीटर और वो सातवें स्थान पर आए। स्वर्ण नाइजीरिया के चुक वेयमबुका ने जीता 21.07 मीटर के थ्रो के साथ। 200 मीटर में अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल चक्र में ही बाहर हो गए, 20.65 सेकंड का समय औरों से बहुत पीछे था। कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे। सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में। प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथी सेल्वा प्रभु तीसरे स्थान पर आए 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं। 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर सरक गए। पारुल

0: चौधरी एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस की दौड़ को भुलाने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन ये रेस उनका दर्द और बढ़ा गई। 15:08.56 के साथ वो 13वें स्थान पर रही। हाँ, डेकथलॉन में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4339 अंकों के साथ। अपनी प्रिय लॉन्ग जम्प स्पर्धा में तो वो टॉप पर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर आज ये जारी रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर।
1: आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 15 मेडल्स सो फार एंड द नेक्स्ट 3 or 4 डेज वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग बाउट्स कमिंग अप। देयर आर 8 or 10 ऑफ द बॉक्सर्स हु मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। देयर आर वेटलिफ्टर्स एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द मेगा इवेंट ऑफ जैवलिन एंड द ट्रैक एंड फील्ड एज वेल। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हेल्दी टैली ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द closing ceremony.
2: On day 8, India's historic debut in para-track cycling at the Glasgow Commonwealth Games was highlighted by an inspiring performance from 16-year-old sensation Lisha Das. Hailing from Tezpur, Assam, the class 11 student took to the track at the Sir Chris Hoy Velodrome to become the first ever para-athlete from Assam to qualify for the Commonwealth Games. Competing in the high-octane women's C4-C5 4,000-meter individual pursuit qualification round, her debut marked a monumental step forward for Indian paracycling on the world stage, despite missing out on a spot in the final medal rounds.
0: इन खेलों में साइकिलिंग की स्पर्धा में सिर्फ ट्रैक साइकिलिंग ही है, रोड रेसेस और माउंटेन बाइक शामिल नहीं है। सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग का कल पहला दिन था और 6 स्वर्ण पदक दांव पर थे। भारत भी इनमें से एक पर अपना दांव लगा रहा था। पुरुष टीम स्प्रिंट, भारतीय टीम 6 और देशों के मुकाबले थी। 3 साइकिलिस्ट वेलोड्रोम ट्रैक का एक एक लैप पूरा करते हैं लगातार एक एक करके। टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंतिम पायदान पर ही आ सकी। एवरेज स्पीड रही 58.195 किलोमीटर प्रति घंटा। रोनाल्डो सिंह लाइथोन जंप, डेविड बेकहम और रोनजीत सिंह यांगलेम। अंतिम आना भी इस मायने में दिलासा देता है कि भारतीय साइकिलिंग अब विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। आज खेलों का नवा दिन खासा सरगर्म रहने वाला है। बॉक्सिंग में 10 पदक पहले ही पक्के हो चुके हैं, लेकिन पदक का रंग बेहतर करने के इरादे से सभी 10 बॉक्सर्स कल सेमीफाइनल में रिंग में उतरेंगे। महिलाओं में प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साक्षी और लवलीना बोरगोहेन। और पुरुषों की बात करें तो उसमें सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे, अंकुश होंगे और होंगे जादूमणि। देखना है इनमें से कितने बॉक्सर्स फाइनल में प्रवेश पाते हैं। मुक्केबाजी में भारत की उम्मीद के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह।
3: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
2: इन जूडो देयर विल बी द मेंस 60 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन व्हिच हर्ष सिंह विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देयर विल बी वुमेन्स 52 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 in which Shraddha Kadubal Chopade shall be representing India. There will be men's 66 kilogram round of 16 in which Rohit Basir Majgul shall be representing India. Then there will be women's 48 kilogram event quarterfinals in which Ashwita Day will be representing India. Then there will be women's 57 kilogram quarterfinal event in which Yamini Maurya shall be representing India.
0: Athletics mein decathlon ki spardhaen jari rahengi. Tejaswin Shankar padak ki hod mein baki bachi 5 स्पर्धाओं में उतरेंगे। मिक्स 4x400 रेले होगी जिसमें अंशु बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर और विशाल टीके, 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी मैदान में उतरेंगे।
2: In track cycling, there will be men's 4,000-meter individual pursuit event in which Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhaw shall be representing India. There will be men's Keirin first round events in which Ronaldo Singh, David Beckham and James Singh will be representing India. In lawn ball, the men's pair sectional play event shall be happening in which Navneet Singh and Dinesh Kumar will be representing India. There will be women's single sectional play in which Nayanmoni Sekh

जी हाँ दोस्तों, ऐसी यादें देख करके हमारे साथ जब ऐसा कुछ जुड़ता है तो वाकई में मन नहीं चाहता कि हम उनसे दूर हों, लेकिन क्या करें, समय का इशारा हो चुका है कि अब इस प्रोग्राम में लेनी होगी आपसे अनुमति। लेकिन हाँ, आपसे ये वादा कि मैं सुस्मित आपसे फिर मिलूंगा समाचार के बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ में, और साथ में होगा कौन ये भी पता चलेगा। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़

0: भी समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पे अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
3: My retirement from international cricket and all formats.
1: अजरबैजान

0: के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्री की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: खतरा जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी को खिलखिलाती और मुस्कुराती हुई सी ये प्यारी सी सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना आज अपनी आखिरी पारी खेल रहा है और हम तैयार हैं इससे एकदम शानदार हैप्पी एंडिंग देने के लिए। हम कौन? मैं हूँ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला और मेरे साथ,
1: जी हाँ, मैं हूँ वही जी आपका अपना दोस्त उसमें जो सुबह से आपके साथ बना हुआ है। और रोली, आपको भी गुड मॉर्निंग और सभी जो

0: हमारे साथी इस वक्त हमको सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग
1: बिल्कुल। और सुस्मित हाँ। शुरू हो चुका है सावन का शानदार महीना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो बस दिल थाम के बैठना है क्योंकि आज का शो भी भरा है आपके पसंद के गानों से और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब से।
0: बिल्कुल सही कहा। और तो ऐसे में भाई करना क्या है, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है और वो जो एनर्जी है ना वो आप भी बनाए रखिए और ये एनर्जी हमारे साथ भी है, फुल एनर्जी। और इसी एनर्जी के साथ हम इस सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ और साथ ही है ये प्यारा सा ट्रैक।
1: बिल्कुल, तो सुनते रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर ट्यून इन रहिए।

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: और देखिए, जब इतनी सी, इतनी प्यारी सी, खूबसूरत सी, मुस्कुराती हुई सी सुबह आपके सामने खड़ी है, अपने बाहें फैलाए आपको आगोश में लेने के लिए, तो बस ऐसे में क्या करना है, मुस्कुराकर इस प्यारी सी सुबह में तैयार हो जाना है पूरे दिन को खूबसूरत बनाने के लिए, क्यों सुषमा?
2: बिल्कुल सही कारोली। और जब जीवन में कभी ये लगे कि मुश्किल हो गया जीना जीना जीना,
1: हाँ,
2: तो फिर हमारा जो मॉर्निंग मंत्र है ना, ये बहुत मदद करता है और ये बताता है हमें कि साहब, ये जो जीना जीना मुश्किल है, इसको कैसे आसान है करना करना।
1: तो इसको करने के लिए क्या करना होगा उसमें?
2: बिल्कुल, वो छोटी सी बात ध्यान से आपको सुननी है और अपने जीवन में उतारनी है। अब देखिए ना, एक खूबसूरत सी बात जो कि प्रेमचंद जी ने कही थी, उस बात से आपको जोड़ते हैं। यहाँ पर उनका कहना था कि वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है और भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। तो अगर आप इस बात को समझ जाएं, तो फिर क्या कहने, तो वर्तमान को अपना सब कुछ बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए, तब आपकी जिंदगी बोलेगी कि हाँ, मुश्किल हो गया जीना नहीं है, जीना बहुत मजेदार हो गया है।
1: बिल्कुल, और मजेदार जीना जब हो जाता है, तो आपकी जिंदगी का कोई भी पल हो, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाता है। और जैसे कि ये पल है जिसमें आप बहुत सारे अच्छे अच्छे नगमे एंजॉय कर रहे हैं और साथ में सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आरजे के साथ कौन, रोली शुक्ला और
2: मैं सुस्मित।

0: और अगर कोई चलने की बात पूछे कि कहीं चलने की बात सुस्मित कोई पूछे तो कितनी जल्दी इंसान कह देता हाँ हाँ मैं भी चलूंगी मैं भी चलूंगी।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा रोली आपने।
0: और जैसे कि आजकल का जो समय है ना, भाई सावन आते ही हवा में कुछ अलग सा जादू घुल जाता है ना। मतलब नोटिस किया है आपने सड़कों के किनारे वो पेड़ जो कल तक धूल में छिपे हुए थे एकदम, और आज कल आप देखिए जब से बारिश का मौसम आया है या सावन लगा है आज कल एकदम धूल पुचकर चमकीले से हरे से हो गए हैं सारे पेड़ पौधे,
1: एक नया कलेवर नजर आता है। और ये जो सावन है ना, इसका मतलब ही है भाई नेचर का अल्टीमेट मेकओवर। और सच बताऊं तो सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, सावन आते ही हम इंसानों का मूड भी एकदम से बदल जाता है, बड़ा खुशनुमा माहौल हो जाता है, हमारा जो मन होता है वो बहुत ही मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है।
0: और सबसे ज्यादा बदलाव अगर देखें सुस्मित तो हमारे किचन में आ जाता है। कैसे? जैसे ही बाहर रिमझिम बारिश शुरू होती है घर घर में अदरक वाली कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आने लगती है। और इस मौसम में तो डाइटिंग का तो सोचना भी गुनाह लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, जो डाइटिंग है वो तो सावन में ब्रेक लेने ही आती है मुझे लगता है। और सिर्फ खाना ही क्यों, सावन अपने साथ ढेर सारी नॉस्टैल्जिया भी लाता है। वो बचपन में कागज की नाव बनाना, स्कूल से लौटते वक्त जान बूझ कर भीगना, ये सब यादें जो हमारे पिछले टाइम की है वो सब एकदम ताजा हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा, भाग दौड़ वाली लाइफ में सावन जैसे एक पॉज बटन दबा देता है। खिड़की के पास बैठो, बारिश की बूंदों की आवाज सुनो और पसंदीदा संगीत का मजा,
1: क्या बात है। तो बस फिर देर किस बात की है, अगर आप भी अपनी चाय का कप थामे खिड़की के पास बैठे हैं तो रेडियो का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ा लीजिए ना साहब।
0: बिल्कुल, क्योंकि सावन के इस खूबसूरत मिजाज को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक्स और साथ में बहुत सारी अच्छी बातें। फिलहाल आपको बता दें इस प्यारी सी मॉर्निंग में आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें अभी बहुत कुछ शेयर करना बाकी है आपसे।
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी बातों के साथ मिलेंगे हम आपसे थोड़ी देर में, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जी हाँ बिल्कुल, सावन आ गया है और बादल भी छाए हैं आज बाहर, तो कभी भी लगता है कि कभी भी बारिश हो सकती है सुष्मित।
1: बिल्कुल, सुबह से मौसम ऐसा है जैसे बस लग रहा है कि हमें बस, मतलब कहते हैं ना कि एक लालच दे रहा है कि साहब अब तब अब तब।
0: बिल्कुल। और अच्छा, ऐसे में जब बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी सुबह हो और हवा भी चल रही हो, ठंडा मौसम हो, और निकल जाइए आप जैसे ही सोकर उठते हैं, निकल जाइए किसी बाग में या कहीं पार्क में, बहुत ग्रीनरी हो जहाँ पर और बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल खिले हों, तो वो जो खुशी मिलती है, वो एक खुशी को शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।
1: बिल्कुल, वहां पर तो हम स्पीचलेस हो जाते हैं क्योंकि वो वाकई में सिर्फ मन से महसूस होती है वो खुशी, वो जो प्रकृति हमारे आसपास अपना जो इतना सुंदर रूप लेकर के खड़ी होती है और हम उसको निहार रहे होते हैं, उसके बीच में होते हैं, तो वो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं उसे।
0: सुष्मित, ऐसा लगता है कि जब इतने प्यारे फूलों और इतने प्यारी सुंदर हरी भरी अपनी प्रकृति देखते हैं, तो देखते ही ऐसा लगता है कि हमारी माँ ने जैसे हमें गले लगा लिया हो।
1: क्या बात कही है, ये जो आपने उपमा दी ना, ये बहुत

0: खूबसूरत है और वाकई में ये मन की बात है। तो ये जो मन की बात है ये बहुत सुंदर है और इस समय जो मन होता है हमारा बहुत बहुत बहुत खुश होता है।
1: तो क्यों ना इतनी प्यारी सी बातों के साथ क्यों ना एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुन लिया जाए और उसके बाद चलते हैं सिटी की ओर सिटी अपडेट्स के साथ।
0: बिल्कुल ठीक बात है, तो चलिए ये गीत एंजॉय करते हैं जो पीछे से दस्तक दे चुका है।

0: और अगर कोई बहुत प्यारा बहुत मासूम आपके सामने आपकी जिंदगी में है तो क्या करिए आपको, आपको करना बस इतना है कि एक चॉकलेट लीजिए और उसे दे दीजिए और कह दीजिए कि भाई मुस्करा दो।
1: क्या बात है। और ये जो तरीका ना, ये आप अप्लाई करके देखिए, बहुत मजा आएगा क्योंकि सामने वाला इतना खुश हो जाएगा और वो जो खुशी आपको मिलेगी उसके बाद वो अपने आप में जबरदस्त होगी।
0: भले ही इंसान कहे ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर के उसके मन में बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी ऐसी आ जाती है ना।
1: बिल्कुल, कई बार रोली एक छोटी सी हमारी एक ऐसी बात जो है ना वो दिल छू जाती है। तो कभी अगर ऐसा कुछ मौका मिले दोस्तों आपको भी तो आप जरूर करके देखिए, वाकई में आपको लगेगा कि साहब हमारा दिन बन गया।
0: वो जो खुशी होगी वो एक अलग ही अंदाज होगा उस खुशी का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने विभिन्न हॉस्टलों में पुराने छात्रों के री अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है।
1: तो ये बात तो पता चल गई और बात हो रही थी खुशी की, तो चलिए खुश हो जाइए क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आपके लिए है और स्पेशली कुछ रूट्स हैं उनके लिए भी। मैं बात कर रहा हूँ राजाजीपुरम से बीबीडी तक, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से कल से यानी 1 अगस्त से AC इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू होने जा रही है। इसमें इस रूट में 12 बस स्टॉपेज होंगे और बसों की जो समय सारणी है वो 7 बजे से 7 बजे तक मिलेगी और हर आधे से 1.25 घंटे में ई बसों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। तो ये अच्छी खबर आपके लिए, अगर आप इस रूट पर सफर करना चाहते थे और दिक्कत होती थी तो अब आपके लिए ये आसानी हो गई है।
0: और साथ ही साथ अगर बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम लखनऊ द्वारा गृह कर जमा करने पर दी जा रही 5% छूट का लाभ उठाने के लिए आज 31 जुलाई का यानी ये अंतिम दिन है, तो बस जल्दी जल्दी करिए इसका लाभ उठाइए।
1: अच्छा, लास्ट डेट की बात चली रोली, तो एक और लास्ट डेट मुझे याद आई, ITR फाइल करना साहब ये मत भूलिएगा, इसकी भी लास्ट डेट आज ही है। और इसके साथ ही साथ एक रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में बता दे अपने साथियों को। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का परिणाम आ चुका है, चौथे चरण की जो काउंसलिंग हुई थी उसके सीट आवंटन घोषित कर दिए गए हैं और जिन अभ्यर्थियों को संस्था पाठ्यक्रम मिला है उन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन कराना होगा और इसके बाद सत्यापन 31 जुलाई यानी आज से 4 अगस्त 6 बजे तक किया जाएगा और जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो निर्धारित तिथि में मूल प्रमाण पत्रों के साथ उन्हें केंद्र पर जाना होगा। तो याद रखिएगा आज से 4 अगस्त तक और 4 अगस्त को 6 बजे तक, ये डेट और ये समय बिल्कुल मत भूलिएगा, ये जरूर याद रखिएगा।
0: और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग छात्रों के लिए रोजगार के लिए एक अनोखा अवसर क्या है ये, भाई दिव्यांग छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त तक दिव्यांग रोजगार मेले लगाए जाएंगे और सभी जिलों के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये दिव्यांग रोजगार मेले लगाए जाएंगे।
1: जी हाँ, ये एक बढ़िया मौका है, जितने भी ITI हैं हमारे प्रदेश की वहां पर ये रोजगार मेले आयोजित होंगे, तो एक बढ़िया मौका है उन सभी के लिए जो रोजगार लेना चाहते हैं हमारे दिव्यांग दोस्त, तो जरूर इस मेले में जाकर के 3 तारीख से ये मेले लगेंगे इसका ध्यान रखें और 3 तारीख से 10 तारीख तक यानी 3 अगस्त से 10 अगस्त तक इस मेले का लाभ उठाएं।
0: तो दोस्तों ये तो थी हमारे शहर की अपडेट्स जो अभी अभी हमने आप तक पहुंचाई, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है, लेकिन एक प्यारा सा ट्रैक है जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है।
1: तो देर किस बात की है, आइए जुड़ते हैं इस ट्रैक से,
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो
1: जो है धड़कन
0: लखनऊ की।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, सुन रहे हैं आप इस समय 100.7 एफएम रेनबो पर जो है धड़कन लखनऊ की, और आपका साथ दे रहे कौन, मैं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और
1: मैं सुस्मित आपके साथ हूं, और हम दोनों आपके साथ बने हुए हैं इस मंच पर और आपका साथ भी चाहते हैं।
0: सुस्मित, लिफ्ट में कभी आप आधे जाते तो होंगे, वैसे लिफ्ट में चढ़ते होंगे?
1: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, कहीं किसी बिल्डिंग में पहुंचे और वहां पर मजबूरी होती है कि साहब लिफ्ट से जाना है।
0: वैसे कुछ लोग लिफ्ट बहुत अवॉइड करते हैं, लिफ्ट से नहीं जाते हैं, है ना?
1: लेकिन लिफ्ट की बात क्यों कर रही हैं आप?
0: ऐसे ही आज एक स्पेशल डे है लिफ्ट की बात करने का,
1: कुछ याद आ गया।
0: बिल्कुल नहीं नहीं, जरूरी है इसके बारे में बात करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लिफ्ट में चढ़ते ही अक्सर नजरें मोबाइल पर टिक जाती हैं, या फिर सबकी नजरें लिफ्ट के नंबरों पर टिकी होती है। माहौल कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ पल के लिए खामोशी ही सबसे सुरक्षित भाषा हो गई हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी मुस्कान या दो मीठे शब्द इस खामोशी को कितनी सहजता से तोड़ सकते हैं?
1: क्या बात कही रोली आपने, बिल्कुल वो जो लिफ्ट का सीन है ना, वो सामने क्रिएट कर दिया। और इस सीन से याद आता है कि साहब इसी बात को बढ़ावा देने के लिए, इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हर साल जुलाई के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है राष्ट्रीय लिफ्ट में बातचीत दिवस। साहब ये दिवस एक अनूठा दिवस है जिसकी शुरुआत हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन धीरे धीरे इसे कई देशों में मनाया जाने लगा। और इसकी शुरुआत लोगों को ये याद दिलाने के लिए हुई कि रोजमर्रा की भागदौड़ में भी छोटे छोटे हमारे जो बातचीत होती है, जो संवाद होते हैं, वो रिश्तों को कितना मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ बढ़ता है अपनापन।
0: बेशक लिफ्ट का सफर कुछ ही पलों का होता है, लेकिन जनाब एक प्यारी सी भाषा, एक प्यारी सी मुस्कान या मौसम पर की गई छोटी सी बातचीत किसी का दिन बना सकती है, किसी का दिन और बेहतर कर सकती है। इतना जरूर ध्यान रखें कि सामने वाला बातचीत में सहज महसूस करे और उसकी निजता का सम्मान भी बना रहे।
1: बहुत अच्छी बात कही रोली आपने। तो आज अगर आप जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथी, अगर किसी लिफ्ट में आप पहुंचे और जाएं, वहां देखें कि साहब जो सन्नाटा है, तो उस सन्नाटे को तोड़िए, एक मुस्कान के साथ पहल कीजिए बात की।
0: क्योंकि अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और अक्सर लिफ्ट में वही स्ट्रेंजर्स बहुत करीब खड़े होते हैं, तो कई बार हम बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसा ना करें और थोड़ा सा इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए कोशिश करें
1: बिल्कुल।
0: कि हम टॉक कर सकते हैं एक दूसरे से।
1: बिल्कुल, और ये जो छोटी सी बातचीत है ना, ये किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आती है, और कुछ जो मंजिलों का सफर होता है ना, वो कुछ शब्दों से यादगार बन जाता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। मैं अभी जल्दी की बात करूं रूली, एक लिफ्ट में मैं चढ़ा, दो बच्चे छोटे से प्यारे प्यारे से आए और वो आपस में बात कर रहे थे, मैं उनको देख रहा था, फिर मैंने उनको बोला, उनसे बात की, और उसके बाद वो जो चेहरे पर उनके स्माइल थी ना, वो लगा कि जैसे बहुत पहले से जानते हैं।
0: और अक्सर कुछ लोग लिफ्ट में आते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ये कहाँ पर है, वो कौन सी फ्लोर पर है। अगर उनको बस आप बता दीजिए नहीं नहीं ये इसी फ्लोर पर है, कितना मतलब उनके चेहरे पर कितना इत्मीनान दिखाई देता है कि ओ चलो पता चल गया, है ना?
1: तो ये जो सुकून है, जो इत्मीनान है ना, यही चाहिए, आज का दिन यही बताता है।
0: तो ये सुकून और इत्मीनान यूं ही आपकी जिंदगी में बना रहे, और साथ ही साथ जो ये म्यूजिक का तड़का रेनबो आप तक भेजता है रेडियो के उस पार, उसे भी आप इंजॉय करते रहे। तो सुनते हैं ये ट्रैक।

और दोस्तों वक्त हो गया है समाचारों का और समाचार के उस पार गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर फिर से हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, प्रातः के 9 बजे हैं और अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिलने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को आरएएफ के हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश देने तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोडीन कफ सिरप मामले में सख्त टिप्पणी करने से संबंधित खबरें आज राजधानी लखनऊ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की मुख्य सुर्खियां बनी हैं। दैनिक जागरण ने पेपर लीक रोधी विधेयक पर संसद की मुहर शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की लीड स्टोरी बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही खबर के उपशीर्षक में लिखा है, संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित, विपक्ष की टिप्पणियों पर बोले जितेंद्र सिंह, सही निशाने पर लगा तीर। हिंदुस्तान ने एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद की मंजूरी मिली। नवभारत टाइम्स ने विशेष हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत है सुप्रीम कोर्ट। अमृत विचार ने केंद्र को आरएएफ के हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश और अमर उजाला ने 900 करोड़ रुपए के कोडीन कांड में जज को प्रभावित करने का प्रयास शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की मुख्य खबर के रूप में सचित्र प्रकाशित किया है।
1: इसके अलावा वंदे मातरम के अपमान पर अब 3 वर्ष की सजा, रामलीला में असलहा लहराने वाले होंगे दफन मुख्यमंत्री, आईटीआई परीक्षा में नकल, प्रिंसिपल समेत 11 गिरफ्तार, अब जन सुविधा केंद्रों में बदलेंगे सुरक्षा बलों के कैंप, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 3रा गोल्ड, भारोत्तोलक लवप्रीत को रजत पदक और अंजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट से लिया संन्यास, शीर्षक से संबंधित समाचारों को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, बीती 20 जुलाई को दिल्ली में संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जा रही हैं। इस पर जारी सियासत से अलग सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है। जाहिर है इस मामले में सियासत से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय का ही होगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, अमेरिकी सीनेट द्वारा रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी मिलना केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत।

नवभारत टाइम्स और अमृत विचार सहित अनेक समाचार पत्रों ने भी अपने संपादकीय में अलग अलग टिप्पणी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: और ये लीजिए भाई, 9:04 हो चुके हैं सुबह के, और अभी अभी जो इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, मतलब अभी अभी आंखें खोली हैं और सोकर जाके उन्हें प्यारी सी गुड मॉर्निंग।
4: वैसे सुबह बहुत खूबसूरत है और इस प्यारी सी सुबह में आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी, सुप्रभात आप सभी को। और देखिए ना, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है। सेकंड हाफ में हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत करते हुए रूली हम यहाँ पर एक ट्रैक के साथ बिल्कुल तैयार हैं।
3: बिल्कुल, एक ट्रैक आप तक पहुँचाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और सारी बातों के साथ सुनते रहिए हद पर 7 FM रेनबो, जो है धड़कन
4: लखनऊ की है।

0: हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज है जिनका हैप्पी हैप्पी बर्थडे, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं।
1: ये चहकती ये सुरीली सी ये जो शुभकामनाएं पहुंची आपसे, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत खुशी मिली होगी। साहब मेरे भी शुभकामनाएं, मेरे भी गुड विशेज आपके लिए। आपका ये दिन आपके जीवन में बार बार आए और ढेरों खुशियां लाए।
0: और इसके साथ साथ अगर एक और सेलिब्रेशन है आपके घर में, मतलब आज होती है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, तो भाई हमारी तरफ से लड्डू और बालूशाही वाली मिठास के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो साहब ये दिन भी मत भूलिएगा, अगर भूल रहे हैं तो याद कर लीजिए, ऐसा ना हो शाम को खाना भी आपका छूट जाए।
0: देखिए कितना एक्सपीरियंस है। और दोस्तों आपको ये जरूर जानना होगा कि आज अपना बर्थडे आप किन के साथ शेयर करते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आज आप किन के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रचनाकारों में से एक प्रेमचंद जी की आज जयंती है। 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक गाँव में जन्मे प्रेमचंद जी का नाम जो असली था वो था धनपत राय। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को जीवन के यथार्थ की ओर मोड़कर आम आदमी की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव को बखूबी दिखाया। उनकी कहानियों के किरदार ऐसे आम लोग होते थे जो हमें अपने आसपास ही दिखाई दे जाते हैं। मंत्र, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, आत्माराम, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कफन, उधार की घड़ी, नमक का दरोगा, पंचफूल, प्रेम पूर्णिमा, गबन जैसी कहानियों से प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वो अद्भुत है।
0: और आगे बढ़ते हैं।

0: दोस्तों आपको बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम की स्थापना के लिए विश्व भर में जाने जाने वाले के शंकर पिल्लई की आज जयंती है। उन्हें राजनीतिक कार्टूनिंग का जनक माना जाता है। पद्म विभूषण जैसे पद्म पुरस्कारों से सम्मानित शंकर को 1957 में स्थापित चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना और 1965 में अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना के लिए याद किया जाता है।
1: इसके अलावा प्रख्यात इतिहासकार, गणितज्ञ और भाषा शास्त्री दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की भी आज जयंती है। उन्होंने भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करने के साथ ही इतिहास और पुरातत्व विषय पर महत्वपूर्ण शोध किया।
0: आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले मोहनलाल सुखाड़िया की भी आज जयंती है। वे राजस्थान के एक प्रख्यात राजनेता और राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे।
1: और आप चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, तो यहाँ पर एक नाम आता है प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज का, जिनका आज है जन्मदिन। कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत करने वाली मुमताज ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। उन्होंने एक के बाद एक 16 फिल्में शुरू में दारा सिंह के साथ की, जिनमें से कई फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई और उसके बाद फिर उन्हें मिला सुपरस्टार राजेश खन्ना का साथ। और इस जोड़ी ने दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम इन जैसी कई फिल्में, कई सफल और यादगार फिल्में दी। और इसके बाद उन्होंने अपने 15 साल के करियर में 108 फिल्में की और इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुईं। 1971 में संजीव कुमार के साथ खिलौना फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया।
0: और इसके साथ ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी का भी आज जन्मदिन है। साल 2014 की फिल्म फुगली से अभिनय की शुरुआत करने वाली कियारा ने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, शेरशाह, कबीर सिंह, गुड न्यूज, भूलभुलैया 2, वॉर 2 और सत्य प्रेम की कथा जैसी फिल्मों में अपने किरदार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। भाई
1: तो ये वो नाम थे जिनके साथ आप अपना भविष्य शेयर करते हैं। बहुत ही जबरदस्त नाम है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बार फिर से आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हुए बात कियारा की, चलिए तो आइए सुनते हैं
0: कियारा आडवाणी का ये ट्रैक।
1: बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: और दोस्तों धीरे धीरे वो वक्त आता जा रहा है, हो सकता है कि इस समय आप बहुत जोर शोर से तैयारी करने में लगे हो, भाई ये सामान कहाँ गया, वो कहाँ गया, चलो अभी ये उठा लेते हैं और ये डॉक्यूमेंट समेट लेते हैं, अपना लंच उठा लेते हैं और सारा इकट्ठा करके अपनी कार में रख लेते हैं, है ना।
1: बिल्कुल, ये सुबह सुबह का जो वक्त होता है और जैसे 9 बजे के आसपास घड़ी पहुंचती है तो वाकई में एकदम भागम भाग शुरू हो जाती है। तो साहब इस भागम भाग में अपनी जो जरूरी चीजें उनको ध्यान से रख लीजिएगा, ऐसा ना हो हड़बड़ी में आप कुछ काम की चीज भूल जाएं। तो इस काम की बात के साथ ही साथ एक काम की बात और कि साहब ये जो मौसम है ना, ये हमें बड़ा खुशनुमा एक माहौल देखे जाता है, जब हमें दिखता है चारों तरफ पेड़ हैं, हरे भरे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये खाली इस मौसम में दिखता है, वैसे हमें कहाँ दिखते हैं, जंगलों में। और जंगल की बात आती है तो साहब जंगल जो है सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो वो धरती की सांस के रूप में नजर आता है। और इन सांसों की हिफाजत कौन करता है? जी हाँ, अनगिनत प्रहरी जिन्हें हम जानते हैं वन रेंजर।
0: इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 31 जुलाई को यानी आज मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस, जो उन वन रेंजर्स को सम्मान देने का अवसर है जो अपने साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा से जंगलों, वन्य जीवों और हमारी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं। कई बार वे अपनी जान जोखिम में डालकर अवैध शिकार, वन तस्करी और जंगलों में लगने वाली आग जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं ताकि प्रकृति की धड़कन कभी थमे नहीं।
1: बिल्कुल सही। और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा 2007 में शुरू किया गया था ताकि उन रेंजर्स को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राण गंवाए। वन केवल हरियाली नहीं बल्कि जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, संतुलित जलवायु और जैव विविधता, इन सबकी सुरक्षा में वन रेंजर्स का मौन योगदान अमूल्य है।
0: जी हाँ, तो बस आज का ये जो दिन है इसे यूं ही सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही खुशी के साथ। विश्व रेंजर दिवस पर हम उन सभी वन रक्षकों को दिल से सलाम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि जब जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी जीवन सुरक्षित रहेगा और जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी भविष्य भी मुस्कुराएगा। क्यों सुस्मित?
1: बिल्कुल, तो मुस्कुराते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर आप तक आ रहा है ये ट्रैक।

0: भाई मौसम बहुत खूबसूरत है, हवा भी चल रही है, और क्या हो रहा है भाई इन सब चीज़ों के बीच में? आखिर पानी नहीं बरस रहा है, ये क्यों नहीं बरस रहा है? मौसम किस करवट बैठेगा? ये सारी बातें जानने के लिए हम कहाँ जाते हैं सुस्मित?
1: जी, हम जाते हैं दानिश जी के पास, जो कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं, और उनसे जुड़ करके हमें पता चलती है ताज़ा अपडेट कि मौसम किस करवट बैठने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दानिश जी। दानिश जी का वेलकम करते हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर।
0: गुड मॉर्निंग
2: जी। गुड मॉर्निंग
1: दानिश जी। हवा चल रही है, मौसम इतना खूबसूरत है, बादल भी हैं, लेकिन साहब ये पानी नहीं बरस रहा, तो मौसम कैसा रहने वाला है ये हमारे साथियों को बताएं।
2: जी, मौसम की बात करें तो जैसा कि एक डीप डिप्रेशन साउथ की तरफ बना हुआ है, जैसे एमपी के साउथ एमपी में बना हुआ है, जिसकी वजह से उसी का असर, जो सिस्टम काफी बिग है, तो उसके हवाओं का असर हो रहा है, क्योंकि नॉर्थन पार्ट में उतना बारिश नहीं होती, क्योंकि सदर्न पार्ट में ही इस सिस्टम से ज्यादा बारिश होती है, तो उधर तो काफी अच्छा बारिश हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ तेज हवाओं का चलन है, जिसमें कि बादलों का आवाजाही लगातार बना रहेगा, मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से छिटपुट वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, कहीं कहीं छीटा कसी लखनऊ उसके आसपास, कहीं आसपास
1: हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है,
2: बूंदाबांदी कहीं छीटा कसी हो सकती है, लेकिन नॉमिनल कोई मेजर कुछ ऐसा
1: नहीं होने वाला।
0: तो ये ऐसा मौसम कब तक बना रहेगा?
2: बाकी आज और कल इसी तरीके से रहेगा, परसों से धीरे धीरे, जैसे कि सिस्टम जो साउथ में चला गया था, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आएगा, तो उम्मीद है कि अब हल्की हल्की बारिश की संभावना कल और परसों से बनेगा।
1: ओके, तो चलिए, आपने हमारी थोड़ी सी जो दुविधा थी उसको दूर कर दिया, हमारे जो परेशानी थी कि साहब मौसम क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, उसको आपने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी अपडेट के लिए।
2: ओके, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि साहब आज मौसम ऐसा ही रहने वाला है।
0: आज और कल फिलहाल ऐसा ही रहने वाला है, और उसके बाद कुछ मौसम में शायद बदलाव हो, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि मौसम भी खूबसूरत हो और आपकी जिंदगी भी।
1: बिल्कुल। तो साहब, इस उम्मीद के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: और अगर जिंदगी में अच्छा सा म्यूजिक आपके पास है और आपकी आदत है कुछ कुछ सीखने के लिए म्यूजिक को बैकग्राउंड में चला के रखना, तो भाई ये आदत बड़ी अच्छी वाली है। और लेकिन आपको पता है सुस्मित, कुछ सीखने की जो बात आई है तो एक बात मेरे जहन में आई है कि कुछ भी सीखना यानी कोई भी वर्कशॉप करना किसी भी व्यक्ति के लिए सीखने, नया हुनर पाने और आगे बढ़ने का एक शानदार मौका होता है।
1: क्या बात कही आपने साहब। तो जब ये बात चली है कार्यशाला की, वर्कशॉप की, तो यहाँ पर एक एक जबरदस्त वर्कशॉप और उसकी एक प्रस्तुति है, उसके बारे में हम सीधे आपको ले चलते हैं। कुछ क्या कुछ उसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्या कुछ और डिटेल हैं, ये जानने के लिए सीधे हम आपको जोड़ते हैं ज्योत्सना सिंह जी से। हमारे साथ ज्योत्सना सिंह जी हैं जो कि ये जो कार्यशाला के बाद इसकी जो प्रस्तुति है, कार्यशाला की अभिनय प्रस्तुति, इसमें वो लेखिका हैं और उन्होंने इसमें अभिनय भी किया है। तो आइए जुड़ते हैं। ज्योत्सना जी बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर।
2: धन्यवाद सर
1: जी। ये एक प्रस्तुति हमें पता चली कि कुछ कार्यशाला और उसके बाद ये अभिनय कार्यशाला की प्रस्तुति कुछ हो रही है, इसके बारे में हमारे साथियों को बताएं क्या कुछ है ये।
2: सर ये एक नाटक है जो आज शाम को 7:45 से शुरू होगा
0: जी।
2: इस ससरैया हॉल है, PWD का उसमें ही है। तो ये नाटक जो है उन्माद नाम है इसका, और इसको लिखा है श्रीमती ज्योत्सना सिंह यानी कि मैंने, और इसका डायरेक्शन किया है अमरीश बॉबी जी ने
0: जी।
2: और इसमें हम 8 कलाकार हैं
1: जिसमें
2: जिन्होंने 60 दिन तक रंग की कार्यशाला ज्वाइन करी थी, और उसको वहां हमने सीखने का समझने का बहुत प्रयास किया। रंगमंच क्या है, कैसे इससे जुड़ करके हम क्या कर सकते हैं, और अपने मन के भाव कैसे हम दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है इस कार्यशाला में हमें सिखाई गई थी।
1: तो उसके बाद ये अब कार्यशाला समापन के बाद अब जो उसकी प्रस्तुति है फाइनल, वो सामने आज हमारे साथियों को देखने को मिलने वाली है। हेलो हेलो हेलो, और शायद मुझे
0: कॉल ड्रॉप हो गई है
1: जी।
2: हेलो
1: हेलो, ज्योत्सना जी आवाज मिल रही है?
2: हाँ जी मिल रही है
1: जी। तो ये जो आज प्रस्तुति होने वाली है इसके बारे में आपने बताया, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है?
2: मेरी इसमें एक छोटा सा किरदार है मेरा, जिसमें मैं एक वकील बनी
1: हूँ। ओहो
0: जी,
1: क्या बात है। तो ये जो प्रस्तुति है ये कब, और आपने विश्वेश्वरिया सभागार बताया वहां पर ये होगी, समय क्या रहेगा?
2: जी 7:45 से।
1: ओके, और इसमें लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं अगर कोई देखना चाहे, कोई इसको इसका आनंद उठाना चाहे तो?
2: इसके डोनर कार्ड

0: सर 300 रुपए के, 100 रुपए के। 300 रुपए वाला जो है वो नीचे से बैठने का 3 रो छोड़ करके है, और
1: जी
0: 100 रुपए वाला बालकनी का है। तो इस तरीके से इसमें प्रवेश पाया जा सकता है। कार्ड्स वहां भी अवेलेबल है, कार्ड्स यहाँ पे भी मतलब ऑनलाइन भी मिल गए, ऑनलाइन एक्चुअली बॉबी सर से कांटेक्ट करने पे मिल जाएंगे।
2: ओके तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनमें से जो लेना चाहें इस कार्ड को, तो वो कैसे ले सकते हैं?
1: कोई ऑनलाइन नंबर या
0: आप
1: कुछ?
0: वहां आकर के भी ये ले सकते हैं, बड़े आराम से वहां पे अवेलेबल रहेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे वहां पे कार्ड देने के लिए लोग बैठे होंगे, आप अपना पेमेंट करिए और कार्ड ले लीजिए।
2: ओके तो ये एक अच्छी सुविधा है, वहां जाकर के लोग सीधे सीधे कार्ड लेकर के और वहां पर आनंद उठा सकते हैं इस प्रस्तुति का। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रस्तुति के लिए।
0: जी धन्यवाद।
2: तो मित्रों, अभी आपने जाना कि हमारे शहर में जो कि सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र है, साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है, वहां पर आज एक जबरदस्त प्रस्तुति देखने को मिलने वाली है उन्माद नाम से, और इस प्रस्तुति का आप आनंद उठा सकते हैं, जिसकी लेखिका हैं ज्योत्सना सिंह और साथ ही साथ इसके निर्देशक हैं अम्बरीश बॉबी जी। समय का जरूर ध्यान रखिएगा, 6:45 इसका समय निर्धारित है, और आपको विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह पहुँचना है जो कि गवर्नर हाउस के सामने है महात्मा गांधी मार्ग पर। तो अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं इसका तो जरूर जाइए।
1: बिल्कुल, और अगर आप जाते हैं तो उसके आपको कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो आप प्रस्तुति देखेंगे उसका जो आनंद आएगा वो तो अलग, जो नई चीजें सीखने को मिलेंगी वो अलग, और साथ ही साथ नए लोगों से आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं, और एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही आता है। तो अपनी जिंदगी में ये समय भी निकालना चाहिए, अक्सर ऐसी वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए।
2: तो ये बढ़िया मौका है आपके हाथ, आप जाइए, वर्कशॉप का आनंद, वर्कशॉप क्या, ये प्रस्तुति का आनंद लीजिए, और साथ ही साथ सुनते रहिए 100.7 FM बिंदु, जिस पर पहुंच रहा है एक खूबसूरत सा ट्रैक।

0: बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर

0: से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वो होता है जब हमें ये जानना हो कि भाई आज हम जहाँ निकलने वाले हैं, अपने गंतव्य तक जाने वाले हैं, तो वहाँ का रास्ते का ट्रैफिक कैसे रहने वाला है, कितनी देर पहले निकलना है कि हम टाइम से पहुँच जाएँ। तो ट्रैफिक की ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं
1: जी, ट्रैफिक कांस्टेबल हमारे साथ ऋषभ जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि ट्रैफिक का क्या कुछ हाल रहने वाला है। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर।
2: जी धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग लखनऊ। सर फिलहाल में अभी अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि समिट टावर के पास घुसड़िया से कमता की तरफ जाने वाले मार्ग पर हल्का सा दबाव है, क्योंकि वहाँ पे मेन लाइन से एक रोड आता है उसपे क्या नाम है कि गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से हल्का सा दबाव है, गाड़ी को हटवाया जा रहा है। यातायात पुलिस मौके पे मौजूद है, वो अभी हट जाएगा, दबाव हल्का सा जो है वो खत्म हो जाएगा
0: जी।
2: बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज पे निर्माण कार्य की वजह से जो दबाव है वो तो है ही, उसका डायवर्जन दिया गया है, उस डायवर्जन का पालन अगर हमारे लखनऊ वासी करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा ट्रैफिक आलमबाग क्षेत्र में है और अवध चौराहे पे है, ये अवध चौराहे पे जिसको बारह बिरवा भी कहते हैं, वहां पे भी निर्माण कार्य चल रहा है, अंडरपास का निर्माण हो रहा है उसकी वजह से। बाकी लखनऊ शहर में फिलहाल में ट्रैफिक नॉर्मल ही चल रहा है।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी
2: माध्यम जी सर, हम आपके माध्यम से लखनऊ शहर के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया वाहन चलाते समय, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। धन्यवाद सर,
1: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से आपने जो चलते चलते अपनी बात कही है कि जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें, ये वाकई में बहुत ज़रूरी है। और हम भी यही गुजारिश करते हैं अपने सभी साथियों से कि ये जो बात है ना, इसको जब आप सड़कों पर चलते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
2: वेलकम सर,
0: थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ ट्रैफिक कांस्टेबल ऋषभ मिश्रा जी,
1: जिन्होंने हमें ट्रैफिक की ताजा अपडेट दी। और अब इसके साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।
6: रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ। और आज इस शो में आपके साथ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और मेरे साथ है
7: सुस्मित बना हुआ है आपके साथ। हम दोनों लोग आपके साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये सफर जारी है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी बातें की और बर्थडेज की भी बातें हुई, कुछ ज़रूरी बातें भी आप तक पहुँची, लेकिन कुछ नाम और भी हैं जिनका जिक्र किया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि।
6: बिल्कुल, आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान करने वाले महान क्रांतिकारी उधम सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी माइकल ओडायर की लंदन में गोली मार हत्या करके निर्दोष भारतीयों की मौत का बदला लिया था।
7: इस हत्या का दोषी मानते हुए अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें आज ही के दिन पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई, और इस तरह क्रांतिकारी उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपनी शहादत देकर अमर हो गए। आज हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। और इसके अलावा बात करें एक और बड़े नाम की, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मान कौर की भी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक जीते। मास्टर एथलीट मान कौर ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 105 साल लंबा जीवन जिया, और अंतिम समय तक वो मुस्कुराती दिखी।
6: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले स्कॉटलैंड के निवासी रहे अंग्रेज राजनीतिज्ञ ए ओ ह्यूम की आज पुण्यतिथि है। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था।
7: और अब बात आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब की, जिनकी आवाज खामोश हुए बरसों बीत गए, लेकिन उसकी गूंज आज भी हर दिल में जिंदा है। 26,000 से अधिक गाने गाने वाले रफी साहब ने सिर्फ गीत ही नहीं गाए, बल्कि हर एहसास को अपनी आवाज दी। कभी चौधरी का चांद हो, कभी तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, कभी

0: बहारों फूल बरसाओ तो कभी ये दुनिया ये महफिल हर गीत आज भी उतना ही ताज़ा और दिल के करीब लगता है।
1: जी हाँ, और
0: उनकी आवाज में रुली इबादत भी थी, मोहब्बत भी थी, दर्द भी था और जिंदगी का जश्न भी था।
1: यही वजह है कि रफी साहब सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत की अमर विरासत हैं। आज हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायक जाने माने मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि आज का रजनीगंधा सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा।
0: जी हाँ, जो डेडिकेटेड होगा रफ़ी साहब को ही, और इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, कैसे उनको हम अपनी बात रखने वाले हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे आज की रजनीगंधा में, तो सुनना मत भूलिएगा 100.7 FM रेनबो पर। फिलहाल बात रफ़ी साहब की चली है, संगीत के इस पुजारी की बात चली है, तो आइए जुड़ते हैं एक ट्रैक से जो हमें बताता है कि रफ़ी साहब किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं।

0: इतना प्यारा गीत आज भी सुनते हैं और जब जब इसे सुनते हैं तब तब बहुत खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रुली। और देखिए वारिस अली जी इसी बात को कह रहे हैं कि आज जो पुण्यतिथि है रफ़ी साहब की, उस पर इन्होंने कहा है कि फरिश्ता जमी पे था वो गायकी का, कहाँ कोई सानी रफ़ी का, वो दूल्हा वो दुल्हन बारातें विदाई, कोई छूटा नहीं रंग जिंदगी का, बुलंदी पे होकर भी जमी पे रहा तू, है कायल जमाना तेरी सादगी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन लाइंस के लिए। निश्चित रूप से कोई जवाब कोई सानी नहीं, कोई मतलब जोड़ ही नहीं है रफ़ी साहब का, एक जबरदस्त आवाज जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी।
0: और सुष्मिता और भी लिसनर्स ने हमें मैसेज किया है और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं। जगमोहन मिश्रा जी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा, और ये लिखते हैं कि आप दोनों की जुगलबंदी बहुत प्रभावित करती है, मन को आकर्षित करती है, आप दोनों यूं ही मुस्कुराते रहें और हम लोगों को आनंदित करते रहें। थैंक यू सो मच, आप भी यूं ही मुस्कुराते हैं और खुश रहिए। और ये लिखते हैं कि मौसम सुहावना है, बरसात का है और खूब बारिश हो रही है, पर लखनऊ में हम लोग झमाझम बारिश से महरूम है।
1: जी हाँ, ये कमी हमें भी लग रही है और इसीलिए हम रोजाना अपडेट लेते हैं और जानते हैं, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ दानिश जी जुड़ते हैं, उनसे पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये पता नहीं मिल रहा।
0: और ये कहते हैं कि हम तो अपने सुनने वालों से यही कहेंगे, बरसात के पानी को जहां तक हो सके संग्रहित करते रहिए, जहां भी जगह मिले, घर के किसी भी कोने में आपको जहां भी जगह मिले प्लांट्स लगाइए। और ये लिखते हैं मैंने आज भी 2-3 प्लांट्स लगाए हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आपने जो बातें कही बिल्कुल मानने वाली बातें हैं, इनको जरूर अपने जीवन में अप्लाई करिए। बहरहाल आपके मेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके अलावा योगेंद्र कुमार जी ने मुजफ्फरनगर से अपना मेल किया, आपको भी बहुत बहुत आभार। और नवीन मिश्रा जी का भी मेल आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
0: शैलेश कुमार ने हमें मैसेज किया, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने सुबह सुबह समय निकाला और हमसे अपने दिल की बातें शेयर की।
1: बिल्कुल, तो ये वो साथी थे जिनमें से कुछ लोगों की बातें यहाँ पर हमने उनका नाम लेकर के आपके साथ शेयर की। और अब इसके बाद चलते चलते देखिए 9:55 हो गए हैं रोली, और यहाँ पर एक सप्ताह की बात कर ले जो इन दिनों चल रहा है, और ये सप्ताह है हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह, जो हमें बताता है कि कई देशों में ये जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और इस दौरान लोगों को इस बीमारी, इसके कारणों, बचाव और समय पर जाँच के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। तो अगर आप भी लीवर जो संबंधित रहता है हेपेटाइटिस जैसी बीमारी की चपेट में आता है, इससे संबंधित है, कोई दिक्कत लग रही है, तो ज़रूर जागरूक रहिए, डॉक्टर को दिखाइए और कोई गंभीर समस्या आए उससे पहले आप इससे बच जाइए, हम यही कहेंगे।
0: अपना ध्यान रखिए और कहते हैं ना कि अगर स्वस्थ शरीर है तो जिंदगी खूबसूरत है, और यूं ही आपकी जिंदगी खूबसूरत बनी रहे, हम यही प्रे करते हैं आपके लिए।
1: बिल्कुल, तो इस बात के साथ ही साथ मेरे चलने का समय आ गया है इस प्रोग्राम से, रोली रहेंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में भी, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
0: आप बने रहिए, आपसे कुछ ही देर बाद समाचार, और समाचार के उस पर आपके लिए नॉनस्टॉप म्यूजिक, और उसके बाद संदेश आपके गीत। हमारे अभी ये ट्रैक आप तक पहुंच रहा है 100.7 FM रेनबो के जरिए, सुनते रहिए।

नमस्कार, प्रातः के 10 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए कल मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचनाएं, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के उर्वरक के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ के नरेंद्र जाट दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से कांवड़ ला रहे हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी से 11 लीटर गंगा जल लेकर निकले नरेंद्र जाट कार पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर दांतों से कई किलो वजनी कार खींच रहे हैं। अलीगढ़ के छज्जूपुर गांव निवासी नरेंद्र जाट की अनोखी कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी है। यात्रा में 5 अन्य शिव भक्त और 1 10 वर्षीय बालक भी साथ दे रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए कार के आगे पंखा लगाया है। यात्रा लगातार जारी है। रास्ते भर श्रद्धालु फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह जलपान और प्रसाद की व्यवस्था भी है। नरेंद्र जाट बोले, ये ताकत का प्रदर्शन नहीं, भगवान शिव के प्रति मेरी अटूट आस्था और संकल्प का प्रतीक है। जनपद बिजनौर में भारी बारिश के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। बाढ़ जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम समय से पहले पूरे कर लिए गए हैं। मुख्य तैयारियों में 32 बाढ़ चौकियां, 35 बाढ़ आश्रय स्थल, 5 कंट्रोल रूम तथा 25 नावें हर तहसील स्तर पर त्वरित राहत और रेस्क्यू के लिए आरक्षित की गई हैं। नदियों के जल स्तर पर लगातार प्रशासन की पैनी नजर है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जौनपुर में पवित्र सावन के आगमन के बाद बाजारों में दुकानों की रौनक बढ़ गई है। शिव भक्त लगातार बाजारों में जाकर कपड़ा और अन्य चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

हो गए हैं सुबह के 10:04 और एक बार फिर से मैं आप सबके बीच आ चुकी हूँ ढेर सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नगमे लेकर के, क्योंकि ये प्रोग्राम ही ऐसा है सुपर हिट सॉन्ग्स जिसमें आप एंजॉय करते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से ट्रैक्स। तो फिलहाल मैं रोली शुक्ला आपके साथ रहूंगी पूरे 12 बजे तक, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं।

0: रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
4: भाई। अब मैच का क्या होगा?
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
1: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
1: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
6: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और दोस्तों, देखते ही देखते टाइम यहाँ पर आ गया है ये प्रोग्राम वाइंड अप करने का, यानी सुपर हिट सॉन्ग्स यहीं पर वाइंड अप करती हूँ. और आपसे ये कहती हुई कहीं मत जाएगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम आपका फेवरेट संदेश, आपके गीत हमारे लेकर बिल्कुल हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में. कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जिस पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय दिया, वह सदियों तक माँ भारती की सेवा के लिए अनुकरणीय रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को बलिया के पुलिस कांस्टेबल के कथित ट्रांसपोर्ट बिजनेस की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय लगातार कमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। पुलिस थाने व्यवसायिक सेंटर बन गए हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को बलिया के रसना पुलिस थाने के सभी पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। वाराणसी से अयोध्या जा रही एक क्रूजर गाड़ी शुक्रवार तड़के लगभग 5:15 बजे लंबुआ क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में मध्य प्रदेश के शिवडी निवासी करीब 15 श्रद्धालु सवार थे। रास्ते में अचानक पीछे का टायर फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और चिकित्सकीय टीम मौके पर पहुंची और घायलों का उपचार शुरू कराया। इनमें से 5 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिज नारायण सिंह ने बताया कि हादसे में किसी के मृत होने की खबर नहीं है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन आप दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: FM Rainbow अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता, Rainbow।

0: का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप थ्री विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।

0: शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा
1: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
0: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
1: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
0: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
1: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
0: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
1: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और हो चुके हैं सुबह के 11:05 और ये समय है संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम का, जिसमें कि आपके कॉल्स हम तक आते हैं, आपसे बात भी होती है और साथ ही आप हमें मैसेज करते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com और आपके मैसेज ऑन एयर होते हैं। तो बस इंतजार किस बात का है, जल्दी से भेज दीजिए मैसेज और फिलहाल ये ट्रैक इंजॉय करें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और देखिए हमारे पास एक कॉलर है जिन्होंने हमें कॉल किया है और वो कुछ बहुत ही प्यारी सी बात कहना चाहते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो ओके, तो इनका कॉल ड्रॉप हो गया है फिलहाल। इन्होंने ये बोला था कि अपने देशवासियों के प्रति मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी देशवासी एक दूसरे से प्यार से मिलजुल कर रहें और अपनी सामाजिक, अपने देश की उन्नति के लिए ऐसा काम करें कि हम अपने देश में कुछ योगदान दे सकें और हमारा देश आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया था और आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं और उसके साथ मैसेजेस भी कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय हमारे पास राकेश श्रीवास्तव का मैसेज है बहराई से, लिखते हैं कि पेड़ पौधे लगाने का सबसे सुंदर समय है ये, सभी अगर बाहर वृक्षारोपण नहीं कर सकते कम से कम घरों में तो जरूर पौधे लगाएं, और अगर बाहर कर सकते हैं तो क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास तालिब अंसारी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, सभी लिसनर के लिए मेरा मैसेज है कि जो लोग रोज ईमेल कॉल करते हैं प्लीज वो एक हफ्ते बाद किया करें ताकि न्यू लिसनर्स जुड़ सकें और नए नए लोगों को मौका अच्छे से मिल सके। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास प्रवीण का मैसेज आया है और इन्होंने सिंपल गुड मॉर्निंग लिख करके भेजा है और बहुत ही प्यारी सी सीनरी भेजी है। थैंक यू सो मच। और आप भी ऐसे ही मैसेज कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है। और आपको ये भी बता दें कि भाई और भी हमारे पास मैसेजेस हैं जिन्हें अभी हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और हमारे पास मैसेज आया है कि इनका भाई सुकृति सिन्हा का मैसेज आया है रायबरेली से, और रायबरेली से इन्होंने मैसेज भेजा है, लिखती हैं क्या ये लिखती हैं कि भैया बच्चों को कृपा करके डांटा मारा ना करें, प्यार से बच्चों को समझा के ही कोई काम करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों को डांटे और मारने लगेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, जिद करेंगे, फिर अपनी जिद के आगे कोई बात मानेंगे नहीं, क्या कहते हैं आप। और हमारे पास किसका मैसेज आया है, हमारे पास मैसेज आया है मन्ना सिंह का, ये मैसेज आया है मोहन लालगंज से, ये कहती हैं कि दोस्ती बहुत अनमोल है होती है, इसे दिल से निभाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर दोस्ती दिल से निभाई जाए तो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकते कोई नहीं जानता, और अगर दोस्त सच्चे दिल से हमेशा हमारे साथ रहे तो चाहे कितनी भी मुसीबत की घड़ी हो हमेशा सुंदर हो जाती है और हम उसे पार कर जाते हैं। आपका क्या कहना है आप लिख सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर भेज सकते हैं हमें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

और अगर वादा किया है किसी से कि कभी जुदा नहीं होंगे तो ये वादा तो निभाना चाहिए, क्योंकि प्यार और वादा एक दूसरे के साथ अगर चलते रहे तो ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, शानदार हो जाती है और खुशियां तो बेशुमार हो जाती है। हमारे पास लखनऊ डीजे और लाइट हाउस रायबरेली से एक मैसेज आया है, ये लिखते हैं कि भाई नमस्कार, मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार भेजता हूँ और ये संदेश आप सभी के लिए है। ये लिखते हैं कि हम सभी संकल्प लें कि कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालेंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो क्यों ना सार्वजनिक स्थान स्वच्छ रहें, सभी जागरूक रहें और जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान दें तो कितना अच्छा हो जाए। बिल्कुल, अगर इस तरह से लोग इतने ज़्यादा अच्छे से मानकर चीजों को करने चलने लगे तो ऑब्वियसली हमारे आसपास बहुत ज्यादा खुशियां, बहुत ज्यादा शांति और सुकून फैलेगा, जिससे कि हम सभी देख करके खुश भी होंगे और अच्छा भी लगेगा कि हाँ, ये अच्छी सीख जो है ना वो कहीं भी मिले, कम से कम लोग ले रहे हैं और उस सीख को अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ कहीं से सीखते हैं, अगर जब तक हम उसे अपनाते नहीं हैं, उस पर उसको अपनी जीवन में अमल नहीं करते तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है ना। आपका क्या कहना है? वैसे मेरे पास मोहम्मद आसिफ का भी अभी जस्ट मैसेज आया और ये क्या लिखते हैं, मैं हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, संदेश ये है कि भाई सॉन्ग बहुत लाजवाब लग रहे हैं। ओके, ये क्या, ये तो संदेश नहीं है, ये तो बस आपने एक तारीफ की है, संदेश भी भेजिए। हमारे पास मैसेज आया है, किसका नेक्स्ट मैसेज आया है, बिग बॉस का। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं रेनू गांव मझगई ज़िला लखीमपुर खीरी से हूँ। प्लीज़ मैम मेरा नाम ज़रूर ले लीजिएगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मेल शामिल कर लीजिएगा। मैं बचपन से ही कार्यक्रम को सुनती हूँ, मुझे सारे गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं और एक गाना लिखा है इन्होंने, हाँ वो गाना कभी ना कभी रेडियो पर बजेगा, बस कान लगा के सुनती रहेगा। राइट, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें मैसेज किया और इसी तरह से आप यूँ ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ किसकी हो सकती है। श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज़ में आपने सुना ये ट्रैक। गुलफ़शा सिद्दीकी का मैसेज आया है, हेलो गुड मॉर्निंग रोली मैम, मैं गुलफ़शा सिद्दीकी संडीला से। मेरा संदेश ये है कि अगर किसी इंसान को ऊपर वाले ने कोई कमी दी है तो हमें उसकी खराबी पर हंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस तरह की बातें कभी भी सामने आती हैं, कुछ अजीब सी चीज़ या कोई कमी किसी के अंदर दिखती है, तो हमेशा उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसे अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए, जैसे कि उसका मन खुश हो जाए। और कहते हैं कि अगर मन में शक्ति है ना, तो ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, सब अपने आप अच्छा हो जाता है, है ना। बस सब हमारी कोशिशें, और कोशिशों के साथ जब हमें कामयाबी मिलती है तो कमियां बहुत पीछे रह जाती है। हमारे पास अगला जो मैसेज आया है वो योगेंद्र कुमार का मैसेज है, लिखते हैं, आज काफ़ी दिनों बाद कार्यक्रम ऑनलाइन सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। दूर दराज के श्रोताओं का भी ध्यान रखना चाहिए भाई, हम आप लोगों को सुनने के लिए तरसते हैं, सच बताइए। देखिए, आपकी सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए बिल्कुल कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

वाह क्या बात है, और इतने अच्छे से अगर म्यूजिक मिल जाए तो बस थिरकना कौन नहीं चाहेगा। भाई वारिस अली खान जी का मैसेज आया है, कहते हैं रोली जी प्यार भरा आदाब आपको भी, और ये लिखते हैं कि बरसात का मौसम है हमेशा अपने साथ टॉर्च रखें, कपड़े और जूते हमेशा झाड़ कर पहने क्योंकि बरसात में घर में सांप भी आ जाते हैं। पिछले साल की बात है, हमारे मित्र के यहाँ गांव में उनकी भतीजी को सांप ने काट लिया था, दस लिया था, और वो आई कि घर में अंधेरा था और अंधेरे में ही कुछ निकाल रही थी और इस तरह से उनके साथ ही घटना हो गई, बहुत दुखद है। जी हाँ बिल्कुल, हर जगह पर, इवन मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, अपने आँखें हमेशा खुली रखिए, कान हमेशा सक्रिय रखिए कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ है, कहीं कोई कील तो नहीं पड़ी है, कोई इस तरह से जो डसने वाले जीव होते हैं और इस तरीके से जो हमें कई बार क्या होता है कि हम कहीं किसी गार्डन में टहलने जाते हैं, चींटियों की बामी होती है, उस पर पैर रख देते हैं और अचानक ना चाहते हुए बहुत सारी चींटियाँ हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं, ये सब सारी घटनाएँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद और दर्द देने वाली होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें तुरंत मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है और पता नहीं कि वहाँ पर कोई आपकी हेल्प करने के लिए है कि नहीं है, तो हमेशा देखकर ही रखें और स्पेशली अगर बरसात की बात है तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: और दोस्तों, वक्त आ गया है कि ये प्रोग्राम मैं वाइंड अप करूं और आपसे ये कहूं भाई कि अब जाने का समय है मेरे, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्दी वापस आऊंगी। जाकर के आने का समय है, राइट? तो बस आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। सावन आ गया है, सावन में खूब हरी हरी चीजें पहनिए, हरी चूड़ियां और अच्छी अच्छी मिठाइयां खाइए, घेवर खाइए, स्पेशली अंदर से की जो गोली है वो खाइए और बस यूं ही खुश रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। अगले कुछ घंटे आपके साथ रहेंगी आरजे राधा, राइट? हाय राधा।
5: हेलो मैम।
4: हाय।
5: और मैं देख रही हूँ कि आपने ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, सावन आप मना रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप।
4: थैंक यू। और इसी तरह से आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं और साथ में हमारे जितने लिसनर्स इस समय सुन रहे हैं वो सभी जल्दी से जल्दी और प्यारे बन जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर बलिदानी शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संस्कृत श्लोक के जरिए उनके साहस, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा, महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। हिम्मत और हौसले से भरी उनकी जीवन गाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। उन्नाव पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में चाइनीज मांझे के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 102 दुकानों को चेक किया गया, साथ ही दुकानदारों को चाइनीज मांझा ना बेचने की सख्त हिदायत दी गई। आमजन से भी अपील की गई कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग और खरीद फरोख्त न करें। ये मांझा पक्षियों, राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रयागराज द्वारा ऑपरेशन रेल सुरक्षा के अंतर्गत प्रभावी गश्त और निगरानी के दौरान रेलवे संपत्ति, रेल कोच के अंडर फ्रेम वायर की चोरी करने तथा चोरी की रेलवे संपत्ति खरीदने बेचने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त, एक बाल अपचारी और एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है। ये कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मीणा के निर्देशन और उप निरीक्षक नितिन कुमार के नेतृत्व में की गई। शामली में डीएम आलोक यादव ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने एकल शिक्षक वाले स्कूलों में अवकाश के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था करने, आंगनबाड़ी केंद्रों में मैपिंग और शिक्षा चौपाल के जरिए छात्र नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं के सुरक्षित परिवहन और निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय समय पर पूरा करने पर जोर दिया। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: सृष्टि का आधार है वो, उसमें बसा संसार है, ममता की वो मूरत है तो शक्ति का भी अवतार है। जो ठान ले तो फिर उसे रुकना कहाँ मंजूर है, वो अबला नहीं वो आज की सबसे प्रबल हुंकार है। जी हाँ नमस्कार, 12:05 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है स्वयं सिद्धा, जिसमें आज आपके साथ मैं रहूंगी आपकी दोस्त राधा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने समाज की बंधिशों को तोड़कर हर मुश्किल का सामना करके खुद को साबित किया है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, और कार्यक्रम में बहुत कुछ है तो बिल्कुल बनी रहेगा मेरे साथ, यानी अपनी दोस्त राधा के साथ।

0: जी हाँ, संवार लूँ। और गाना तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी हमारे साथ एक स्वयं सिद्धा जो जुड़ रही हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है और आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। और हमारे साथ जो जुड़ने वाली हैं वो कौन है, क्या करती हैं, उन्होंने किस प्रकार से स्वयं को सिद्ध किया है, नाम मैं बता दे रही हूँ। शालिनी सिंह हमसे जुड़ने वाली हैं, तो चलिए उनसे हम जुड़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो उसे हम ज़रूर पाकर रहते हैं। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी आपका और एफएम रेनबो का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया।
0: जी मैम, और ये बताइए मैम कि आप कौन हैं, क्या आपकी पहचान है? मैं तो बताऊंगी चलिए, लेकिन हमारे श्रोता अगर आपसे ही जानना चाहते हैं तो प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मेरा नाम शालिनी सिंह है और मेरी संस्था सिटीजन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। मैं 20 सालों से समाज में काम कर रही हूँ, सोशल एक्टिविटीज में, और वुमेन्स को अधिकतर हमारा रोजगार देने का कार्य है। और हमारी संस्था से इस वक्त उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख महिलाएं अलग अलग रोजगार की वजह से जुड़ी हुई हैं।
0: तो मैम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या विशेष है?
1: देखिए, हम लोगों ने इसमें अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। मेन हमारा जो है वो काउडन पे काम होता है, जैसे इको फ्रेंडली दिए हो गए, मूर्तियां हो गई, इको फ्रेंडली धूप बत्ती, जो मंदिरों से फूल निकलते हैं उनकी धूप बत्तियां मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग जो मार्केट में जाकर के बिकते हैं और गवर्नमेंट में भी जाते हैं।
0: बहुत ही अच्छा आइडिया मैम कि काऊ डंग से, यानी गोबर की, गोबर से मूर्तियाँ, दीपक बनते हैं और जो मंदिरों से निकलते हैं फूल उससे आप धूप बत्ती बनाती हैं। तो ये अनोखा आइडिया आपको कैसे आया और इसकी शुरुआत आपने कैसे की?
1: कि सन 2020 में जब कोविड आया था तो उस वक्त हमें अपनी महिलाओं को रोजगार देना था, लेकिन रोजगार भी हमें ऐसा देना था जो उनके बजट में हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। तो उस वक्त हम लोग को आइडिया आया और घर सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन सभी लोग पूजा पाठ और ये सारी चीजें करते हैं। तो हम उस वक्त एक इनिशिएटिव लिया कि काउडंग से हम लोग दिए बनाते हैं और हम लोगों ने दिए बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जगह जगह पर इसका प्रचार करना शुरू किया टेलीफोन से ही। तो कुछ अच्छे लोग हम लोग से कनेक्ट हुए, फिर दैनिक जागरण हमसे मिले, उन्होंने हमारे बारे में छापा, फिर हमसे गौ सेवा आयोग जुड़ा और उसने हमें 1 लाख दियों का ऑर्डर दिया जो गोमती तट पे दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन जले। तो वहीं से हमारा ये रोजगार स्टार्ट हो गया और उसके बाद आज 17.5 लाख दिए हमारे दिवाली में जाते हैं और पूरा साल हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर में महिलाएं अलग अलग जिलों में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे प्रोडक्ट बाई बैक किया जाता है।
0: जी मैम,
1: मार्केट में जाता है।
0: तो इस बिजनेस को खड़ा करने में मैम शुरुआत मतलब आपने बता दी है, लेकिन लागत कितनी आई, कैसे अरेंज किया, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: कि इसके लिए हमारे लिए चीजें बहुत सारी रही। क्या हुआ, शुरू में हम लोगों को, मतलब ये जान लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट जो था हम लोगों ने लमसम 50,000 से स्टार्ट किया था और इसमें हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी हम लोगों को करीबन 1 लाख के आसपास। तो मैं डूडा की निधि वाजपेयी मैम थी उस वक्त, पीओ डूडा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती कि उन्होंने हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। जी
0: तो मैम ये जो मूर्तियां बना रही हैं आप काउडंग से, तो इस प्रकार से ये इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरण के लिए भी बहुत कार्य कर रही हैं आप, महिलाओं के लिए भी कर रही हैं, तो ये जो महिलाएं इससे जुड़ी हैं इस संस्था से, तो उन पर क्या असर हुआ, उनकी फैमिली पर क्या असर हुआ, अब उन्हें कैसा लगता है?
1: देखिए, आज उनके पास रोजगार है, बहुत सी महिलाएं तो पूरा पूरा घर चला रही हैं, बहुत सी महिलाओं के हस्बैंड कोविड में गुजर गए, उनको रोजगार मिला। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि जिनके घर में खाने को भी नहीं था, आज वो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए महीना कमा रही हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा और महिलाएं लगातार हमसे जुड़ती चली जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और

0: 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस पे सम्मानित भी किया था कि हमने यूनिक आइडिया पे काम किया था और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा था।
1: जी मैम, आइडिया तो आपको बहुत यूनिक है। जो आप मूर्तियां बनाती हैं, धूप बत्ती, तो वो मशीनों से तैयार होता है या ये हाथों से बनते हैं?
0: इस वक्त राधा जी हम लोग कह रहे थे कि इसमें हम लोग अगर मशीनें लगा लेंगे तो महिलाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे। हम लोगों ने मशीनें सिर्फ गोबर पीसने की लगाई है, बाकी सांचों से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोजगार दे पाए।
1: जी
0: और
1: मैम,
0: प्रेजेंट टाइम में हम लोग नगर निगम कान्हा उपवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही अब हमें पशुधन विभाग ने 2 नई गौशालाएं हमारी संस्था को दी हैं जिनको हम मॉडल बनाए। एक हमें BKT में दी गई है और एक हमें गोसाईगंज में दी गई है।
1: जी मैम, तो ये शो हमारा जो सुन रही महिलाएं, अगर वो आपके साथ जुड़कर काम करना चाहें तो वो
0: जी
1: कैसे जुड़ सकती हैं?
0: जी मैम, यही कहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे नंबर पे डायल कर सकती हैं। मेरा नंबर है 7775808100।
1: जी
0: इस
1: मैम,
0: नंबर पे कॉल कर सकती हैं और हमसे जुड़ सकती हैं।
1: ये सवाल है कि आज के समय में इन उत्पादों की मार्केट में कितनी डिमांड है और आप इन्हें ग्राहकों तक कैसे पहुंचाती हैं?
0: मैम देखिए, इसके लिए हम लोगों ने कई महिलाएं लगा रखी हैं, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है, अलग अलग विभागों में तो लोग टाई अप हमसे करे हुए हैं। साथ ही जैसे हमें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लोगों को जोड़ा जाता है, साथ ही हमारा अमेजोन फ्लिपकार्ट इसमें भी है, हमारा मीशो वगैरह पे, तो आप
1: अच्छा
0: डायरेक्ट जाकर के हमारे प्रोडक्ट को वहां सर्च करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट खुल के आ जाएगा और आप वहां से खरीद सकते हैं। वरना अगर हमें डायरेक्ट कोई ऑर्डर आता है तो हम उसे पोर्टर के माध्यम से वहां तक पहुंचा देते हैं।
1: अच्छा मैम, बहुत सी महिला होती हैं जो अपना कुटीर उद्योग, कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो उनको पहला कदम क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा सा गाइड करिए।
0: देखिए, इस वक्त सरकारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास हुनर है लेकिन हम हुनर को रोजगार तक कैसे पहुंचाएं। बहुत सारी महिलाएं पूरा जीवन इससे संघर्ष करती रहती हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है,
1: जी
0: इसमें 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के आपको मिलता है। अगर आप 18 से 40 साल की हैं तो पहले आप इसमें आवेदन करिए, वरना नहीं तो फिर आप PMSEB की भी आती है योजना, आप जिला उद्योग में जाकर के वहां से आप इसको कर सकती हैं। आसानी से आपको एक पूंजी मिल जाएगी। और नहीं तो अगर छोटा ही एकदम छोटे से स्टेप से आप शुरू करना चाहते हैं तो PM स्वनिधि है, उसमें भी आप शुरू करके अपने छोटे छोटे कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं, जिसमें 10,000 मिलता है। अगर आप 10,000 वापस करेंगे तो 20,000 मिलेगा, 20,000 वापस करेंगे तो 50,000 आपको मिलेगा, बिना किसी सिक्योरिटी के, सीधे बैंक। और इसमें ऑनलाइन आपको एक फॉर्म नगर निगम द्वारा भरा जाता है, तो ये हो जाता है कि आपके पास एक पूंजी हो जाएगी। और फिर अगर आप रोजगार करना चाहें तो आजकल कौशल विकास मिशन के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर बन चुके हैं, और अगर चाहते हैं कि हम वहां नहीं जा रहे दूरी, तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी टीम आपके पास आएगी या आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा जो भी हमारे सेंटर पे, और वहाँ आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दे करके हम लोग उन्हें आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो अपने रोजगार को कर पाए।
1: जी मैम, अंत में ये हम बताइए कि जो स्वयं सिद्धा है हमारी, जो श्रोता है हमारी, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो भी अपनी अलग पहचान बनाए और समाज में उनका भी अलग मान सम्मान हो?
0: कि मैं यही बात कहूंगी कि हर महिला को अपना आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति ही सर्वोपरि है। और मैंने भी यहीं से शुरू किया था, जब आपको लगे कि हम हिम्मत हार रहे हैं तो उस वक्त को याद करिए जिस वक्त आपने सबसे ज्यादा संघर्ष किया था। आपको ऑटोमेटिकली अंदर आपके जो महिला है, आपका सिक्स सेंस है, वो आगे बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ। महिलाओं में आत्मविश्वास की जो कमी होती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। हौसला रखिए, आगे बढ़िए, साथ चलेंगे तो जीतेंगे, और हाथों में हाथ रहेगा तो भी जीतेंगे।
1: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मैम, बहुत अच्छा। आप जो महिलाएं हमारी सुन रही हैं मोटिवेट हुई होंगी, और आपने जो सारी बातें बताई उनको मुझे लगता है कि सुनने के बाद से काफी लाभ मिला होगा। तो मैम, अब जो है चलते चलते आप कोई गाना सुनना चाहेंगी?
0: अगर आप बजाना चाहती हैं तो बिल्कुल मुझे सुना दीजिए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
1: जी मैम, बिल्कुल, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी बात बताने के लिए हमारे श्रोताओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जी, ये हमारे साथ शालिनी सिंह जी जुड़ी हुई थी और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो भी जानकारी दी आपको वो आपको पसंद

भी आई होगी, और जो महिलाएं अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही है ये स्वयं सिद्धा, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को अगर सिद्ध करना चाहती हैं तो ये जो आपने आज सुना शालिनी सिंह से, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी। और अभी उनकी पसंद का सुनते हैं ये सॉन्ग जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता, रेनबो लखनऊ @2026।
4: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार, भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
3: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है, या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
4: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली, तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
4: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
3: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
4: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
3: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
4: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
3: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
4: fmse26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
3: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।

जी हाँ, 12:27 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहाँ आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। दोस्तों, आज 31 जुलाई है हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में महिलाओं को केवल रोती बिलखती अबला नहीं, बल्कि एक जुझारू और मजबूत इंसान के रूप में गढ़ा। उन्होंने लिखा था, स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान और शांति संपन्न है। अगर आप उनका साहित्य आपने पढ़ा है तो गोदान की धनिया हो जो हर मुश्किल से टकराती है, या सेवा सदन की सुमन जो समाज के तानों के बीच अपना रास्ता खुद चुनती है, इन किरदारों में एक अलग ही बात थी। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की इन्हीं सशक्त महिलाओं की तरह आज के दौर में भी हमारी बहुत सी महिलाएं हैं, और इसीलिए हमारा आज का कार्यक्रम भी उन्हीं पर जो बेस है, कार्यक्रम है हमारा स्वयं सिद्धा। बातें बहुत सी हमारे कार्यक्रम में, लेकिन अभी एक प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, तो सुनिए

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: अगर आपको है FM से बेपनाह मोहब्बत,
4: तो लिख भेजिए हमें 26 बरस के FM के लिए 26 शब्दों की मोहब्बत भरी कविता या कहानी।
3: मोहब्बत का नियम निभाएंगे,
5: एक लिसनर से केवल एक ही एंट्री मंगाएंगे।
3: और हाँ, आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2026। 3 टॉप विनर्स बनेंगे हमारे सबसे खास मेहमान 20 अगस्त की शाम।
4: पता है ना, fmsesh26@gmail.com।
3: और सुनते तो रहेंगे आप हमें 100.7 FM रेनबो पर।
6: For more details, follow us on social media.
7: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, 12:33 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा। अच्छा, आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं ना, जो हमारी जो सखियाँ सुन रही हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें करना है लेकिन रास्ता नहीं मिलता या कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमें राह दिखा सके। लेकिन आज हम कुछ ऐसी ही स्वयं सिद्धा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनसे जिनके बारे में जानने के बाद से मुझे लगता है कि अगर आप कुछ सोच रही हैं करने के लिए तो आप ज़रूर करेंगी। श्रीमती सुधा मूर्ति, जो 1950 में जन्मी थी और उस दौर में इंजीनियरिंग की जो बात हम करें तो लड़के ही करते थे, और उस क्षेत्र में उन्होंने इंजीनियरिंग की। एक आवेदन उन्होंने पढ़ा था जिसमें लिखा था, ये जो आवेदन था टाटा मोटर्स की तरफ विज्ञापन जो आया था, तो उन्होंने पढ़ा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें। जी हाँ, ये आवेदन आया था, तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सीधे JRD टाटा को खत लिखा। उनके इसी साहस का नतीजा था कि वो टेल्को के वर्क फ्लोर पर काम करने वाली देश की पहली महिला इंजीनियर बनी थी। जी हाँ, ऐसी और भी हमारी जो स्वयं सिद्धा है जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सोचना क्या है। और अभी ये जो गाना आ रहा है आपके

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं,
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, 12:40 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहां आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। स्वयं सिद्धा, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो नारी हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। अब मैं जिन स्वयं सिद्धा की बात करने जा रही हूँ, उन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शर्मिला धनकर जी की। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, 12:49 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं से द। और सॉन्ग से पहले मैंने क्या कहा था कि हम जानेंगे शर्मिला धनकर जी के बारे में। जी हाँ, 2 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुई शर्मिला जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। 19 साल में शादी, फिर घरेलू हिंसा और बच्चों को पालने के लिए बस कंडक्टर तक की उन्होंने नौकरी की। 34 साल की उम्र में उन्होंने खेल में कदम रखा, ट्रेनिंग के लिए घर बेचा और आज 40 की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर साबित कर दिया कि उम्र और हालात कभी सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो ये मैं सोचिए कि ये एज कभी भी आपके आगे कभी भी आड़े नहीं आती कोई भी परिस्थिति, लेकिन बस ये है कि आप ठान लीजिए कि कुछ करना है। और अभी मैं क्या ठान रही हूँ, मैं तो अभी ये ठान रही हूँ कि चलिए आप कुछ अच्छे से सॉन्ग सुनवा दूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो वक्त है ना अब कार्यक्रम का जो वाइंड अप करने की ओर आ रहा है, लेकिन अभी अभी आपकी तरफ आ रहा है ये प्यारा सा गीत, तो चलिए एंजॉय करिए।

0: 26 शब्द, न एक कम न एक को ज्यादा।
1: भैया ये का है इरादा,
0: विनर बनेंगे और बर्थडे पार्टी में जाएंगे।
2: अरे कैसे, हमको भी बताएंगे।
3: अगर आप करते हैं FM रेनबो से प्यार तो कर डालिए 26 शब्दों में इजहार
0: और भेज दीजिए उसे इस मेल आईडी पर FM से इश्क 26@gmail.com।
1: एक लिसनर की होगी सिर्फ एक ही एंट्री
0: और ये प्रतियोगिता है सबके लिए फ्री।
2: सो डोंट बी लेट,
3: कॉज 5th of August इज द लास्ट डेट।
4: वो लहरों से डरकर किनारे पर बैठने वाली नहीं थी, उसने समंदर से भी कह दिया कि अपनी हदें तय कर लो। दोस्तों बात करते करते एक घंटा जो है कब वक्त हो चुका है कि आपसे विदा ले, एक घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब अगले कार्यक्रम में आपसे जुड़ेंगे जो है होठों पे तेरी बात। लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार, दोपहर के 1:00 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2024

26 के भारतीय पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर लिखा, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमा काली रामना को बहुत बहुत बधाई। आपकी ये उपलब्धि आपके दृढ़ संकल्प, समर्पण और कड़ी मेहनत का सबूत है। आपकी सफलता खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए युवा महिलाओं को प्रेरित करेगी। आप इसी तरह देश का नाम रोशन करती रहे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर लवप्रीत सिंह को हार्दिक बधाई। आपका शानदार प्रदर्शन, आपके अटूट संकल्प, अद्भुत ताकत और बेहतरीन प्रदर्शन की निरंतर कोशिश को दर्शाता है। आपकी इस उपलब्धि ने हर भारतीय को बहुत गर्व और खुशी दी है। मैं कामना करती हूं कि आने वाले वर्षों में आप और भी कई उपलब्धियां हासिल करें। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों ने देश का मान बढ़ाया है और ये अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। आने वाले समय में विजेताओं को और भी सफलताएं मिले, यही शुभकामना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पदक विजेताओं के शानदार प्रदर्शन, उनकी कड़ी मेहनत, जबरदस्त ताकत और अटूट संकल्प का ये नतीजा है। भविष्य की उनकी कोशिशों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खिलाड़ियों की ये जीत उनके पूरे फोकस और लगन का सबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय समाज की संवेदनाओं, संघर्षों और यथार्थ को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्यों और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का अक्षय स्रोत बनकर हम सभी का निरंतर मार्गदर्शन कर रही हैं। महान कथाकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक में लमही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और लोक कला का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। इसके साथ विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लोकगीत, लोकनृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन तथा सांस्कृत प्रस्तुतियां दर्शकों को मनमोह ले गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा,
2: जानो फिर मानो।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
6: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. Dharkan, Lucknow ki.

दोस्तों आज 31 जुलाई है और जुलाई का महीना अब ये आखिरी है, जा चुका है। तो ये जाता हुआ जुलाई आपके लिए कैसा रहा, क्या एहसास हुआ आपको इस जुलाई के मौसम में, और सावन भी कल से आ चुका है। सावन की ये रिमझिम फुहारे और जाते हुए जुलाई का ये प्यार जो है ना वो एक अलग ही है। और आज इस कार्यक्रम में बहुत सी बातें होंगी, कुछ ऐसा विषय हम चुनेंगे जिसे मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी क्या, अभी सुनते हैं ना ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी हाँ, 1:16 हो चुके हैं और कार्यक्रम है होटो बे तेरी बात। अच्छा, आज हम कौन सी बात आपसे पूछने वाले हैं? बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मेरे मन में तो आता है कि अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद से आपके साथ ऐसा क्या होता है जिससे लगता है अरे मेरा तो आज दिन बन गया, और वो होने के बाद से वाकई आपका दिन बन जाता है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपके साथ ऐसा क्या होता है, बस यही बता दीजिए। और मैं अगर अपनी बात कहूँ कि सुबह सुबह अगर आप उठते हैं और अपनी मम्मी पापा का फेस देख लेते हो ना, तो लगता है कि हाँ पूरा दिन बन गया। और आपके साथ ऐसा क्या होता है, बस यही जानना चाहते हैं कि आप उठते हैं और सुबह ऐसा क्या होता है, या सुबह या पूरे दिन में ऐसा क्या हो जाता है जो आपको लगता है अरे वाह मेरा तो दिन बन गया। और दोस्तों, सावन जो है ना आ चुका है, और सावन में क्या होता है, सावन में होती है बारिश। और अभी सुनिए ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, और आपके मेल्स भी हमारे पास आ चुके हैं. भाई, हम आज पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होता है आपके साथ सुबह या दिन में, कुछ ऐसी बात जिसे लगता है आपके, अरे आज तो मेरा पूरा दिन बन गया. और हमारे पास जो है मेल भी आ गए हैं. होठों पे तेरी बात, जुलाई महीना हम किसानों के लिए बहुत ख़राब चला गया, क्योंकि जुलाई महीना हमारे लिए बारिश नहीं हुई, लेकिन जाते जाते 31 जुलाई को रात को हमारे यहाँ इधर 1 घंटा बारिश हुई थी. ये हमें लिखा है सुधाकर जाधव जी ने. मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से लिखा है इन्होंने. श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सरवर्द देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख ने लिखा है ये. लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा आपके साथ मॉर्निंग में क्या होता है जिससे कि आपको ये लगता है कि आज का पूरा दिन आपका बन गया. भाई, और भी लोग जल्दी जल्दी मेल करिए. और अभी फ़िलहाल आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये प्यारा से. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी का नाम भूल गए हैं? नहीं हुआ है? मेरे साथ तो हो जाता है.

0: पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
3: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
2: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
3: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
3: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
2: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
3: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
2: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
3: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
2: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
3: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
2: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।

तेरी बात। और आज आपके साथ हूँ मैं, राधा। भाई, हमने तो ये पूछा आपसे कि ऐसा क्या होता है आपके साथ में जिससे आपको लगता है कि आपका दिन बन गया। तो हमारे पास जो है मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये मेल हमें भेजा है रामराज जी ने। ये लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, होठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली, गाँव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू भानु, झुर्री यादव, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। और जब हम सुबह उठते हैं तो कभी कभी कुछ याद किया।

मनीष नीरज, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। और जब हम सुबह उठते हैं तो कभी कभी कुछ याद किया और पूरा हो जाए तो हमें लगता है कि दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। ये तो होता है, तो होता है ना कि जब हम सुबह उठते हैं और कुछ सोचे, मतलब मन में कुछ चल रहा हो, अचानक से वो पूरा हो जाता है तो लगता है कि अरे वाकई दिन हमारा वाकई आज का बहुत अच्छा जाने वाला है, है ना। और भी मेल हमारे पास आ चुके हैं। ये लिखा है होठों पे तेरी बात, ये लिखा है सुधाकर जाधव जी ने, ये लिखते हैं कि होठों पे तेरी बात, सवेरे सवेरे मैं उठने के बाद अपने माता पिता के तस्वीर के दर्शन करता हूँ और पावर देव घर में रखे हुए ईश्वर का दर्शन भी कर लेता हूँ, उसी से मन को शांति मिलती है और दिन अच्छा जाता है। एक और सावन के महीने में भोले महादेव का उपवास भी रखते हैं, उपवास रखना इनको अच्छा लगता है। और इन्होंने लिखा कहाँ से, इन्होंने लिखा है मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। अच्छा, अभी मैंने इनका मेल पढ़ा था, इन्होंने पहले कुछ और लिखा था लेकिन अभी इन्होंने समझ लिया कि हम पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो भाई आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस आने लगे हैं। अच्छा, गाने की फरमाइश अभी नहीं क्योंकि अभी कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? होठों पे तेरी बात। तो अभी गाने जो है ना वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग फरमाइश कीजिएगा। जो अभी जो हम पूछ रहे हैं कि सुबह जब आप उठते हैं तो ऐसा क्या होता है आपके साथ कि आपको लगता है कि अरे आज तो हमारा दिन बन गया। तो अभी जो मैसेज आया है चंदन जी का आया है, रामपुर से चंदन तुरेहा। नमस्कार, चाय के साथ अगर अच्छी क्वालिटी के बिस्किट मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा लगता है। राम राम जी। अच्छा, मतलब ये भी अच्छी बात है ना कि सुबह सुबह उठिए और आपको अपनी मन पसंद चाय, मतलब जैसा आप पसंद करते हैं। भाई चाय भी अलग अलग लोग पसंद करते हैं ना, कुछ लोग बिना शुगर के, कुछ लोग ज़्यादा शुगर के, कुछ लोग जो होते हैं मतलब कड़क चाय अदरक वाली, कुछ लोग को इलायची वाली चाय। तो अपनी पसंद की चाय अगर आपको मिल जाती ना सुबह सुबह तो भी आपका दिन बन जाता है। मतलब ये तो होता है, ये अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ में होता है। और क्या क्या होता है, और कौन सी बातें हैं जो सुबह होने के बाद से आपको लगता है कि अरे हमारा तो दिन बन गया। लेकिन अभी आपका दिन बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो एक प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है, मुझे लगता है ये सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि हाँ आज दिन बन गया।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, और घड़ी की सुइयां जो बता रही है 1:39 हो चुके हैं और कार्यक्रम है होठों पे तेरी बात। जी हाँ, और जिसमें आज हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है सुबह, ऐसी कौन सी बात अगर आपके साथ हो जाती है तो आपको लगता है कि अरे आज तो मेरा पूरा दिन बन गया। और अभी हमारे पास जो मैसेज आया है, ईमेल आया है, वो आया है संडीला हरदोई से, संजू, संतोष, सतीश, विनीत, ममता जी का, और ये लिखते हैं, और वीरपाल सिंह जी का, ये लिखते हैं कि प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी 3 बेटियाँ हैं सामने आती हैं तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। बात अच्छी है आपकी, जब आप अपने परिवार को देखते हैं सामने तो वाकई लगता है कि आपका दिन बन गया। अभी हॉटमेल कार्यक्रम नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा रुक के, बस टाइम जो है ना धीरे धीरे जा ही रहा है, तो आप 2 बजे से मैसेज करिएगा अपनी पसंद के गाने के लिए होठों पे तेरी बात पे। नफीस अंसारी जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा मेल पूरा पढ़ना, साहिबा अंसारी महेवा गंज ज़िला लखीमपुर खीरी से हूँ। मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो नमाज पढ़ती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और साजिया अंसारी, गुलफ्शा सिद्दीकी, अपी वकील अहमद मंसूरी, आसिफ भाई, शमा अपी, जीशान भाई, जान, नायला अंसारी, रोशनी दीदी।

बबीता दीदी। अच्छा, ये सबका नाम भी इन्होंने लिख दिया। ये तो है, अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपने नमाज पढ़ा या आपने पूजा किया या कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपको दिल को सुकून मिलता है, तो सच में लगता है कि आज तो मेरा पूरा दिन बन गया है ना। और भी ऐसे बहुत सी हम लोग बातें हैं जो आप हमें शेयर कर सकते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जिससे आपका लगता है कि हाँ दिन बन गया। तो अभी हमारे पास जो मेल आया है, यह है जावेद अख्तर जी का। गुड आफ्टरनून मैम, होटो पे तेरी बात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर रही हैं। सुबह मैं जब उठकर बाहर जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अपने बहुत ख़ास दोस्त मिल जाते हैं, तो उनके साथ बैठकर चाय समोसे अपनी पुरानी बातें याद करके दिन बन जाता है। और इन्होंने लिखा है रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से, शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रुकीबा शाहीन जी। तो ये तो अच्छी बात है कि जब आप सुबह उठते हैं, वाकई अपने दोस्तों के पास आप जब भी जाते हैं, मतलब सुबह क्या कभी भी आप जाइए, मुझे लगता है कि उनसे मिलने के बाद लगता है कि वाकई आपका दिन बन गया। और भी लोग जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, प्लीज़ आप लोग भी मेल करिए और बताइए कि ऐसा क्या होता है आपकी लाइफ में सुबह उठने के बाद से कि लगता है कि हमारा तो दिन बन गया। और भाई एक गाना, ऐसा गाना जो मुझे लगता है कि जो 90s किड्स होंगे उनको ये गाना पसंद भी होगा और सुनने के बाद से वो पुराने दौर में भी चले जाएंगे। तो बिल्कुल चलिए सुनवाते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्टबीट ऑफ लखनऊ।

जी 1:48 हो चुके हैं और कार्यक्रम है होठों पे तेरी बात, जहां हमने आज पूछा है आप लोगों से कि ऐसा क्या होता है जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि अरे आज तो मेरा पूरा दिन बन गया। तो ये बताने के लिए अगला मेल जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिंकी पिंकी जी का, और वो लिखती है कि प्यारी सी राधा दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, शुभ दोपहरिया आपने लिखा है, और लिखती है कैसी हैं आप, और सुबह सुबह जब वो उठती हैं तो उनकी पसंद की अदरक वाली चाय और साथ में नमकीन खाने को मिल जाता है तो इनका पूरा दिन बन जाता है। क्या बात है रिंकी पिंकी जी, मतलब अगर आपका दिन अगर किसी को बनाना हो तो बस छोटी सी चीज़, मतलब मनपसंद आपकी चाय और नमकीन, बस इतना सा, चलिए अच्छी बात है। ये बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से इन्होंने लिखा है। अच्छा, इन्होंने रेडियो का अपना फोटो भेजा है और लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून मैम जी, आप कैसी हैं, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सुबह अच्छा होता है, बस सुबह उठ के नहा के दुकान पर आ जाता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ तो सारा दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और साथ ही हम पूरे दिन FM भी सुनते रहते हैं दुकान पर और मैं खुश रहता हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि FM सुनते हैं और खुश रहते हैं। और भी बहुत सारे मेल हमारे पास आ रहे हैं, लाल गिरी जी का है, कार्यक्रम पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी जी ने। आगे लिखा है ये लिखा है शिवेक जी ने, मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है और आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। और अगला मेल जो हम पढ़ रहे हैं ये लिखा है

प्रवीण ने, घर की सफाई के दौरान जब कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ और वो मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि अगर हम घर की सफाई कर रहे हो और कोई चीज़ आपने ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से और वो मिल जाता है तो सच में बहुत खुशी होती है, या फिर आपके रखे हुए खुद के ही पैसे जब आपको मिल जाते हैं, हाँ मतलब सच में लगता है कि कितने अमीर हो गए, कितना ढेर सारा पैसा हमारे पास आ गया। नहीं, मेरे साथ तो होता है, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने प्रवीण जी ने। तो भाई बातें और भी होंगी और भी हम दोस्तों से जानेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम धीरे धीरे देखिए 1:51 हो गया, लेकिन अभी एक प्यारा सा गीत जिसमें मुझे लगता है ये सुनने के बाद से ये गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा, और चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, आपके इन ढेर सारे किस्सों ने तो मेरा भी दिन बना दिया और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपका दिन कैसे बनता है। भाई, अगला कार्यक्रम जो है वो है हॉटमेल, जहां आप अपनी पसंद के गीत हमें भेज सकते हैं। तो जल्दी से मेल करिए और ये कार्यक्रम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।

नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर से शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार

और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण आगामी 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि देश और विदेश में इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और आगंतुक इसमें सहभागी बने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने लिखा कि यह विधेयक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये महत्वपूर्ण कदम परीक्षा माफियाओं और अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाकर योग्य अभ्यर्थियों के परिश्रम को उनका उचित सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए अमरोहा में पुलिस द्वारा यातायात एडवाइजरी जारी की गई। श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH09 मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक में लमही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर हिंदी साहित्य और समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता, रेनबो लखनऊ @2026।
5: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार, भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
4: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है, या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
5: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली, तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
4: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
5: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
4: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
5: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
4: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
5: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
4: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
5: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
4: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।

कुछ अल्फाज लिखकर उन्होंने भेजे हैं और हमने उन्हें सुरों में पिरो दिया। जी हाँ दोस्तों, 2:06 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हॉटमेल। जी हाँ, और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। इस शो में बातें कम और आपके पसंद के तराने ज़्यादा बजेंगे। हमारा डिजिटल इनबॉक्स आपके ढेरों ईमेल्स और फरमाइशों से एकदम भर चुका है। मैंने अभी देखा बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं। तो भाई बिना देर करते हुए जो ये गीत है, पहले हम ये सुनवा देते हैं कि किसकी पसंद का है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

हॉट मेल. और आपको क्या करना है, जी हाँ, आपको हमारी मेल आई डी यानी fmakashwani@gmail.com पे अपने मेल भेजने हैं और आपको बताना है कि आपको कौन सा गाना सुनना है. और मैं देख रही हूँ बहुत सारे मेल आ चुके हैं. अभी जो मैं मेल पढ़ने जा रही हूँ ये है मानसी जी का, और इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है. अच्छा चलिए ठीक है, और भी देख लेते हैं मेल. ये बाबू अंसारी जी का आ गया है. गुड आफ्टरनून राधा मैम जी, गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम ये है और ये ठीक है. और अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दे. चलिए गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद. अच्छा इन्होंने बोला है कि इनको कोई भी गाना सुनना है. चलिए आपका मेल हमने शामिल कर लिया है और चलिए आपको जो गाना अगला आएगा समझिए कि आप उस गीत में शामिल हैं. ये तो हमने मेल पढ़ लिया है. आगे कौन सा मेल है, ये भेजा है यशमीत ने. और नमस्कार मैम, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, ये इन्होंने लिखा है यशमीत. यशु निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, कोई भी गीत सुनवा दीजिए. अच्छा चलिए अच्छी बात है. तो भाई आप लोगों के जो मेल हैं वो आ रहे हैं और कुछ लोगों ने बोला है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए, कुछ लोगों ने बोला है कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए. लेकिन ये जो गीत आ रहा है जिनकी पसंद का है मुझे पता है वो समझ जाएंगे. तो चलिए देर ना करते हुए ये गीत सुनवाते हैं जो आप लोगों में से ही किसी एक श्रोता की पसंद का है.

जी हाँ, ये खूबसूरत सा गीत जिसने फरमाइश किया था, मुझे लगता है कि वो समझ गए होंगे। अभी जो गाना आने वाला है वो भी आपकी फरमाइश का ही है, और मैं देख रही हूँ इतने सारे मेल है ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज लगभग लगभग बहुत सारे गीत में बजाऊँ। ये जो मेल आया मेरे पास में, जय जी का आया है, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, एक फिल्म है ये और इसका गाना हमें आप सुनवा दीजिए। बिल्कुल कोशिश करते हैं हम। ये आया है ताज मोहम्मद जी का, नमस्कार जी, आदाब, आप हमें किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कीजिए। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि हम इन्होंने बोला किसी भी सदाबहार गीत में, तो चलिए जो सदाबहार गीत बजेंगे तो समझिए वो आपका है ना। तो ये अभी हमारे पास मेल है आफ्ताब अंसारी जी का, प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता जी को बहुत प्यार भरा आदाब, प्रोग्राम हॉटमेल, और इन्होंने, अच्छा इन्होंने लिखा है एनी सॉन्ग, और बहुत प्यारा सा इन्होंने रोज़ और पत्तियां और बहुत से डिज़ाइन बना के भेजे हैं, थैंक यू सो मच। और शेरवानी स्कूल गंजडू वारा उत्तर प्रदेश, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, चलिए इन्होंने बोला किसी भी गीत में शामिल। अच्छा ये जो श्रोता होते हैं ना बड़े प्यारे होते हैं, बड़े भोले होते हैं कि गीत तो बज ही रहा है, और ऐसा नहीं होता है कि जो लोगों की दूसरे लोगों की फरमाइश होती है उसमें से कोई ना कोई आपके गीत पसंद का गीत आ ही जाता है ना। ये भागवत वर्मा जी ने लिखा है, दंत रेगी के, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, कोई भी गीत, अच्छा बहुत प्यारा मैसेज आपका, कोई भी गीत, और हमने देखिए आपका मेल भी शामिल कर लिया। ये है शंकर लाल जायसवाल जी, इन्होंने इस फिल्म का ये गाना सुनने के लिए बोला है, जिला नादेंद इताला महाराष्ट्र से, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल जी, हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। नमस्कार जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी प्लीज़ नाम पूरा पढ़ना, नरेश जी ने भेजा है, और खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। अच्छा आपने कहा था ना कि दीदी जी मेल पूरा पढ़ेगा, तो हमने देखिए पूरा पढ़ा, और चलिए भाई मेल भी पढ़ेंगे, लेकिन कार्यक्रम क्या है, हॉट मेल, तो आपकी पसंद का गीत जो है ना, चलिए हमने क्यों कर रखा है, और जिसकी पसंद का है वो समझ जाएंगे। तो अभी चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आप लोगों में से ही किसी एक श्रोता की पसंद का है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।
7: जी 2:24 हो चुके हैं और कार्यक्रम है हॉटमेल, जहाँ मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सबके गाने सुनवा सकूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपके मेल इतने ढेर सारे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि सबके मेल भी पढूं और कोशिश ये भी है कि आपकी गाने भी मैं प्ले करूं। अभी जो मैं मेल पढ़ रही हूं, ये है विट्ठल जाधव जी का, हॉट मेल प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता महोदया जी को प्यार भरा नमस्कार जी। हाँ, मैं राधा हूँ। फिल्म, अच्छा, इस फिल्म का ये गाना इनको सुनना है, तो चलिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास जो मेल है, ये है शहरून नूर अंसारी जी का, कोई भी गीत सुनवा दीजिए दीदी जी, धन्यवाद। ग्राम और पोस्ट हररपुर मटककली जिला बरेली से शहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, और इन्होंने थैंक यू भी बोल दिया, इनको पता था कि मेल शामिल होगा। जी हाँ, हमने मेल शामिल कर लिया है। ये है मदन गोठवाल जी ने लिखा है कि प्रोग्राम प्रसारक जी को नमस्कार।

संगीतकार, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है, नागलोई दिल्ली से लिखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच, आप लोग कितनी दूर दूर से मैसेज करते हैं ना। और चलिए आपका तो मैसेज फिर से एक बार आ गया। अच्छा, जो लोग भेज चुके हैं बार बार भेजेंगे ना, तो फिर ऐसा होता है कि जो नए लोग हैं उनका मैसेज नहीं आ पाएगा ना। संजय ढिंगिया जी ने लिखा है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। चलिए, बहुत से गाने हैं अभी सुनवाने बाकी, लेकिन अभी जो गाना आ रहा है वो आप ही लोगों में से एक श्रोता की पसंद का है, तो चलिए सुनवाते हैं।

0: बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: भाई इतने ढेर सारे आप लोग के मेल आए हैं ना, और एक ही व्यक्ति ने कई मेल कर दिए हैं, जिसकी वजह से देखिए ताज मोहम्मद आपने बहुत सारे मेल कर दिए हैं। अच्छा, बहुत सारे मेल और भी लोगों ने किए, तो इसमें ना जो लोग अभी मेल कर रहे हैं वो रह जा रहा है ना। ये लिखा है निसार अली ने, प्रस्तुतकर्ता जी को प्यार भरा नमस्कार, आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और लास्ट में उन्होंने लिखा है आपकी अति कृपा होगी। लेकिन कृपा वाली बात ही नहीं है ना, ये हम लोग बैठे इसीलिए कि आपकी पसंद के गाने यहाँ प्ले करें, लेकिन अभी एक घंटे का टाइम होता है और ढेर सारे श्रोता जो हमसे बहुत प्यार करते हैं उनके मैसेज आते हैं, और सबकी तो हम फरमाइश नहीं पूरी कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी फरमाइश को पूरी करें। अभी हमारे पास जो मेल हम पढ़ रहे हैं ये है वरेश जी का। अच्छा, इन्होंने इस फिल्म का ये गाना सुनने के लिए बोला है, जालना शहर से सागर माटोले, रेणुका माटोले, लक्ष्मी माटोले जी ने ये मेल किया है, मेल करने के लिए थैंक यू सो मच। और ताज मोहम्मद जी, मैंने आपका मेल तो पढ़ लिया है, आपने लिखा था किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कीजिए, तो भाई अभी गीत बजे हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे लगता है कि आपने खुद को शामिल भी कर लिया होगा, और ये गीत आप ही के लिए था। और अभी हम संग आपका भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक ही व्यक्ति ने कई मेल हमारे पास आ चुका है, तो इस वजह से संजय साहू जी लिखते हैं कि सब प्रेम नमस्कार, जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। बात तो सही है आपकी, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज़्यादा सरल है। कार्यक्रम का सब परिवार आनंद ले रहे हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू। बात तो आपकी सही है कि अगर बहुत सारी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस खुद में भी कर लेने चाहिए, है ना भाई। चलिए गाना जो है जल्दी से सुनवा देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि बातें ज़्यादा होंगी तो गाना कब बजेगा, तो चलिए ये गीत। और हाँ, ये अभी जो मेल आया था जिन्होंने कहा था कि मैडम बारिश का गाना सुनवा दीजिए और किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, तो चलिए लगता है कि ये गीत जिसकी फरमाइश है उसकी भी, और जिन्होंने कहा था कि बारिश में शामिल कर लीजिए तो उनके लिए भी है ये गीत, तो एंजॉय करिए सॉन्ग को।

जी हाँ, 2:38 हो चुके हैं और कार्यक्रम में हॉट मेल और आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं। और अभी जो मेल में पढ़ रही हूँ ये है शंकर लाल जी का, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। मुझे लगता है कि आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं। जिल्हा, हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ, कोई बात नहीं, आपने इस फिल्म का ये गाना जो है फरमाइश किया है। चलिए आगे हम देखते हैं और किसका मेल हमारे पास आया है। सुधाकर जाधव जी का, और इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। चलिए कोशिश करते हैं। ये आया मेल हमारे पास में एमके राज जी का, मुकेश कुमार राज, विलेज भानपुर, हरवा डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी। गुड आफ्टरनून राधा मैम। राधा मैम जी, राधा मैम हैज़ आवर ईमेल नॉट बीन शो। अरे ऐसा नहीं है बाबा, हमारे पास बहुत सारे जो मेल आ रहे हैं, तो आपका मेल भी हमने देख लिया, आपका गीत भी हमने देख लिया जिस फिल्म का गीत आपने बोला है। चलिए आगे भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन इससे पहले हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उनको जो गाना सुनना है, क्योंकि आज मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि है, तो ये गाना वो सुनना चाहते हैं। तो चलिए हम ये गीत सुनवा देते हैं उनको।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है।
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

जी 2:45 का वक्त है और कार्यक्रम है हॉट मेल और आपके ढेर सारे मेल, बहुत सारे मेल जो है आ गए हमारे पास में. ये लिखा है स्वर्ण सिंह जी, ने नमस्कार मैम, मैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से बोल रहा हूँ और इनको कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए. मेल इनका जो है शामिल हो चुका है और जो अगला गीत है समझिए आप उसी गीत में शामिल हो चुके हैं. नरेश जी ने लिखा है राधा दीदी जी को लगता है कि हमेशा अच्छा नाराज़गी वाले भी मेल आने स्टार्ट हो गए क्योंकि जो टाइम है वो धीरे धीरे जो है वो वाइंड अप की ओर है. तो ये नरेश ही लिखते हैं नमस्कार जी, आपको मेरा मेल शामिल करने का मन नहीं है.

चलिए हमें शामिल नहीं करोगे दीदी, क्या शुक्रिया फिर भी आपका। अरे ऐसा नहीं है कि हम, देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं। हमने कहा ना एक ही व्यक्ति ने ढेर सारे, हमारे श्रोता ने बहुत सारे मेल भेज दिए, तो उसमें जो नए मेल है वो खो जाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आपने एक मेल भेज दिया, हम आपको वो मेल पढ़ेंगे और आपके गीत की फरमाइश को भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए अगला मेल हम देखते हैं, ये है नंदन कुमार जी का। सप्रेम नमस्कार आरजे बहन जी, फिल्म का नाम ये है और इनको ये गीत सुनना है। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, ज़िला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, ज़िला मोतिहारी बिहार से। तो कितने दूर दूर से कितने हमारे श्रोता जो हैं हमें मेल करते हैं, पसंद करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सबके गाने प्ले करूं। ये जो मेल आया है अशोक कुमार जी का है। गुड आफ्टरनून मैम, पता रायपुर ओदारा मितौली लखीमपुर खीरी से प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, थैंक यू। इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। अच्छा तो भाई हम चलिए जल्दी से कोशिश करते हैं कि ये गाना जो है वो आप श्रोताओं की ही पसंद का है और सुनने के, अच्छा जिनकी जो सॉन्ग है प्लेलिस्ट में हमने प्ले कर दिए हैं तो वो थैंक यू तो बोल सकते हैं ना, थैंक यू का मेल अगर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे मन करे तो।

जी हाँ, और जो टाइम है वो भी धीरे धीरे कह रहा है कि बस अब ये कार्यक्रम जो है वाइंड अप करने की ओर आ चुका है. लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश है कि आपके कम से कम ईमेल्स तो शामिल हो ही जाए, जिन लोग के गीत नहीं शामिल हो पाए हैं उसके लिए प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा. और फिर ये कार्यक्रम तो आप सुनते ही है, फिर आप फरमाइश कर दीजिएगा, आपकी ख्वाहिश जो है ना पूरी ज़रूर होगी. अभी हमारे पास जो मेला है वह है महराजुद्दीन का है, ये सालर पहलगाम कश्मीर से लिखते हैं फिल्म. इस फिल्म का ये गाना इनको सुनना है, और ये हमारे पास नरेश श्रीकम पढ़ चुके हैं. ये हमारे पास आया है अंकित जी का आया है, अंकित अंकित कुमार, कविता राज विलेज से इन्होंने लिखा है, लखनऊ से ही है ये. और सॉन्ग लगी, अच्छा ठीक है, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है. और नरेश श्रीकम पढ़ चुके हैं, नरेश सुरेश सुरेश जी का पढ़ लेते हैं. नमस्कार जी, मैं इस फिल्म का, अच्छा इन्होंने गाना तो फरमाइश किया है साथ में, मतलब अम्ब्रेला बनाया हुआ है और कलरफुल अम्ब्रेला है इनके पास में, और कुछ डिज़ाइंस भी बनाया हुआ है और रेडियो बनाया, मतलब बड़ा अच्छा प्यारा सा इन्होंने सजा के भेजा हुआ है. तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद का हम गाना आपको सुनाएं. और सुरेश जी का हमने पढ़ लिया है मेल. मोहम्मद फरमान जी लिखते हैं हमें, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, हमारा मैसेज बस शामिल कर लीजिए प्लीज़. तो चलिए, हमने आपका मैसेज जो है वो शामिल कर लिया. मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून. चलिए जल्दी से और मेल पढ़ लें. मुकेश कश्यप जी का है हॉटमेल में, नमस्कार जी आपको, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये लिखते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, और किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए. अब तो देखिए कार्यक्रम जो है वाइंड अप की ओर है, और जो आखिरी गीत आ रहा है वो आप में से ही किसी की पसंद का है. तो चलिए समझिए ये सारा गीत जो गाने हैं जो जिन्होंने बोला है कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, ये गीत उनके लिए, और जिनकी पसंद का है तो उनको तो पता ही है. तो चलिए ये कार्यक्रम वाइंड अप करते हैं और अगले कार्यक्रम जो है सतरंगी दुनिया उसमें मिलते हैं.

समाचार दोपहर के 3 बजे हैं अब सुनिए मुख्य समाचार सरकार ने कहा है कि विभिन्न उच्च स्तरीय और अनाधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक संपन्न हुई बैठक में वर्ष 2026-27 के बजट सहित किसान कल्याण कृषि विपणन एवं मंडी व्यवस्था से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण

प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी पालों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की मंडियों का आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार करते हुए उन्हें आधुनिक सुविधाओं में लैस किया जाए। काशी में श्रावण मास के दूसरे दिन आज भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर गंगा जल को लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध होकर मंदिर पहुंचते रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए धाम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से धाम की सभी व्यवस्थाओं पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं प्रदेश के दूसरे जिले में भी सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। अंबेडकर नगर की जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 9 जोनल 78 सेक्टर एवं 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पारंपरिक माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को आधुनिक तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित होगा।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा।
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, घड़ी में 3:05 हो चुके हैं, 6 मिनट हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत। जी कौन सा गीत है आप सुनने वाले, आपको पता है कार्यक्रम हमारा क्या है? सतरंगी दुनिया। और कार्यक्रम में जो गीत आने वाला है वो भी कुछ ऐसा ही सतरंगी सा है।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी 3:15 हो चुके हैं और कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, और जहां इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। तो अब कुछ सतरंगी दुनिया में कुछ सतरंगी सा होने वाला है, और आप जानते ही हैं कि मैं अकेले नहीं आती हूं सतरंगी दुनिया में, मेरे साथ मेरे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त भी आते हैं। बंटी आने वाला था लेकिन अभी लग रहा है उसको टाइम लगेगा।
2: दीदी, ओ दीदी, आप यहाँ पर माइक पर बैठी हो और मैं कितना गुस्सा आ रहा है मुझे आपको पता है।
1: देखिए मैंने कहा बंटी आने वाला है और गुस्से में आ रहा है। अरे क्या हुआ बंटी, आराम से सांस तो ले लो, क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो?
2: दीदी आपको पता है आज ना मेरी क्लासमेट सोनू ने मुझे क्या कहा, उसने ना मुझे

0: मैं मोटा हूं।
1: अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, कह देते हैं, हालांकि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर तुमने क्या कहा?
0: तो दीदी मैंने भी तो कहा कि तुम भी तो काले हो, तुम मुझे मोटा क्यों कह रहे हो, पहले खुद को देखो फिर मुझे कहो। मैंने सही कहा ना दीदी?
1: नहीं देखिए, उसने तो गलत कहा, लेकिन आपने भी गलत ही कहा। बहुत बुरा है, किसी की बॉडी शेमिंग करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, हम सब ईश्वर की ही रचना है। अगर कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के अंदर कोई कमी है, तो उसका मजाक उड़ाना बहुत ही गलत बात है। बंटी, आपने बहुत गलत किया ये।
0: तो दीदी उसने भी तो मेरा मजाक उड़ाया, तो मैंने बदला ले लिया।
1: ठीक है, उसने मजाक उड़ाया, वो गलत है, लेकिन आपने उसको बोला, वो भी तो गलत है ना।
0: हाँ दीदी गलत तो है, लेकिन फिर मैं क्या करता, सारे बच्चे हंस रहे थे ना।
1: देखिए, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ बंटी, और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनसे भी, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता उसकी क्या स्थिति हो, अगर कोई मोटा है या कोई पतला है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। आपने तो उसका मजाक बना दिया, लेकिन उसके दिल पे क्या बीत रही है वो तो वही जानता है ना। इसलिए किसी के भी बॉडी शेमिंग करना बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि बंटी आप भी समझ गए होंगे और हमारे श्रोता भी ये बात समझ गए होंगे, है ना।
0: जी दीदी, अब मैं कल जाकर सोनू को सॉरी बोल दूंगा।
1: चलिए, आप तो समझ गए। और अच्छा सोनू, गाना सुनना चाहोगे क्या?
0: दीदी इसीलिए तो मैं आपके पास आता हूँ कि आप मुझे प्यारे प्यारे गाने सुनवाते हो।
1: चलिए ठीक है, बिल्कुल बंटी, देर ना करते हुए हम आपको प्यारा प्यारा गाना जो आप बोल रहे हैं ना, तो एक प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे, और बंटी आपके लिए भी।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की और कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया। और जो कार्यक्रम में धीरे धीरे वाइंड अप की ओर भी आ चुका है। भाई बंटी तो हमसे जुड़ गए थे, रिया पता नहीं कहाँ रह गई। दीदी दीदी आप कैसे हो, तुमने पुकारा और हम चले आए। बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम? अरे दीदी पता है आपको, आज ना मेरे मैथ के टेस्ट में 10/10 नंबर मिले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि दीदी के लिए एक चॉकलेट लेके चलो, उसी में देरी हो गई। ओ बहुत बहुत बधाई आपको चिंकी कि आपको 10/10 नंबर मिले हैं। अच्छा चिंकी भाई आपको क्या चाहिए हमसे? दीदी हम तो आपसे बाद में कुछ लेंगे, पहले पता है आपको जो मेरी बगल में बैठती ना वो रिया, वो बिल्कुल डफर है, उसके तो 3 नंबर आए थे मैथ में, उसे तो कुछ भी नहीं आता। और मैंने तो बोल भी दिया कि रिया तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा ये बताओ चिंकी कि जो स्कूल में पिछले हफ्ते स्पोर्ट डे हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता था? उसी रिया ने जीता था। अगर वो आपसे कहे कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो लूज़र हो, तुम्हें दौड़ना नहीं आता, तो आपको कैसा लगेगा? दीदी हमें तो बुरा लगेगा। इसीलिए हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें हमेशा सबसे दोस्ती करके मिल के रहना चाहिए, है ना। और कार्यक्रम देखो धीरे धीरे वाइंड अप की ओर है, तो पहले तो ये गाना हम प्ले कर देते हैं और गाने के बाद हम मिलते हैं।

दोस्तों, सतरंगी दुनिया और भी सतरंगी तब बनेगी जब हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि जीवन एक है और जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके सामने भी आपको मिलता है। इसलिए सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए। और ये जो कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, इस कार्यक्रम से मुझे आज के लिए दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे चलते चलते आपसे अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
0: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
0: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम।

0: तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी। इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना

0: एक विशाल बट वृक्ष के समान है, जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
1: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
0: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखे पते संग, लागे लगन सखे पते संग, लागे लगन सखे पते
0: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जानें।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा।

0: हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
1: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
0: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
1: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
0: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: मिनट
0: कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक

0: गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
1: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
0: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। ठाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। का धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

नमस्कार, शाम के 4 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह को रजत और चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा कलीरामना को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि स्नैच स्पर्धा में लवप्रीत के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि श्री सिंह का समर्पण और दृढ़ संकल्प वास्तव में सराहनीय है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण आगामी 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने निर्देश दिए कि देश और विदेश में इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और आगंतुक इसमें सहभागी बने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने लिखा कि यह विधेयक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण कदम परीक्षा माफियाओं और अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाकर योग्य अभ्यर्थियों के परिश्रम को उनका उचित सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव लम्ही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक में लम्ही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर हिंदी साहित्य और समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश प्रो हैंडबॉल लीग के लोगों का अनावरण हुआ। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक

और यूपी प्रो हैंडबॉल लीग के सीईओ डॉक्टर आनंदवेश्वर पांडे ने कहा कि पहले सीजन की सफलता ने दूसरे संस्करण को और अधिक भव्य और प्रतिस्पर्धी स्वरूप में आयोजित करने का विश्वास दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरा सीजन प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बेहतर अवसर देगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ, और वक्त हो गया शाम के ठीक 4:05 और कुछ सेकंड्स। दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही हवा में एक अलग ही वाइब आ जाती है ना। चाय, समोसे, ठंडी हवाएं और भीगने का एक अलग ही मजा। लेकिन सच कहें तो मॉनसून सिर्फ बाहर का मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी स्किन, बॉडी और मूड तीनों पे असर डालता है ना। एक तरफ तो नमी और चिपचिपाहट से हाइजीन हमारी बिगड़ती है, तो दूसरी तरफ लगातार वो काले बादल और धूप ना निकलने से मॉनसून ब्लूज यानी कि बेवजह की सुस्ती और उदासी छाने लगती है। फिलहाल अभी तो जो सावन तो आ चुका है, लेकिन ये वाला मौसम अभी हमें नजर नहीं आया, लेकिन हमें लगा कि सावन आ गया तो पहले से क्यों ना हम आपको प्रिकॉशंस देते चलें। तो चलिए आज जानते हैं कि इस बरसात में यूथ वेव के जो आज का सेगमेंट है यानी कि पर्सनल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो बस यूथ वेव का आज का जो सेगमेंट है होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो इसके लिए सुनते रहिए हमें यानी कि आरजे प्रीति को, और सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो। फिलहाल अगर बात हुई है बारिश की, तो भले ही बाहर बारिश ना हो रही हो, लेकिन FM रेनबो ज़रूर बारिश का मौसम यहाँ से ज़रूर आपको आप तक रेडियो सेट तक पहुँचाएगा। तो इसको सुनिए और कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए।

0: You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।

इससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की और पर्सनल हाइजीन की। तो जो सबसे पहला आता है, मुझे लगता है इसके बारे में तो ज़रूर आपसे बात करनी चाहिए, जो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, कभी इसको कंसीडर ही नहीं किया। और पर्सनली अगर हम अपनी बात करें तो जब तक मैंने इसके बारे में नहीं पता था तो मैं भी फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और वो ये है कि मानसून के दिनों में कभी भी हमें डायरेक्टली हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ, अंदर एक कॉटन का रुमाल, बंडाना या सूती स्कैल्प यानी कि स्कैल्प कैप जिसे कहते हैं, उसको हमें पहनना शुरू कर देना चाहिए। और ये क्या करता है ना, सारा हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है या फिर नमी होती है ना, वो खुद उसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके बालों को हेलमेट के बैक्टीरिया से बचा कर रखती है। हेलमेट के अंदर की जो स्मेल और फंगस को होते हैं ना, उसको भी खत्म करने के लिए बाजार में बहुत सारे स्प्रे अवेलेबल हैं, जिनको हम कहते हैं हेलमेट डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। तो उनको आप परचेज करिए, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस उनको स्प्रे करना होगा हेलमेट के अंदर। या फिर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पैसे नहीं आप देना चाहते हैं, मतलब नहीं खरीदना चाहते हैं आलस टाइप की चीज़ें, तो फिर आप घर पर ही थोड़ा सा सिरका, जिसको हम विनेगर कहते हैं, उसे पानी में मिलाकर स्प्रे बना सकते हैं, और स्प्रे बना के स्प्रे बॉटल में डालिए और बस हेलमेट के अंदर उसको स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा ये कि राइड के बाद अंदर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे स्मेल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जब भी आप राइड से वापस आएँ तो ये एक अपना जो कहते हैं ना, इसको हैबिट में डाल लीजिए। तो दोस्तों अपनी बाइक को चमकाने के साथ साथ अपने हेलमेट की सफाई पर भी ध्यान देना शुरू करिए, वरना स्टाइल तो रहेगा बेटा पर सिर पर बाल बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इन्हें फॉलो करिए और सेल्फी भी लेते रहिए और सेफली राइड भी करते रहिए। तो चलिए अब सुनते हैं अगला धमाकेदार ट्रैक ओनली ऑन यूथ वे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे प्रीति को और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।
1: हाय, कितना खूबसूरत है।
2: वाकई कितना खूबसूरत है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, बारिश के दिनों में जब बाहर जाना हमारा कैंसिल हो जाता है ना, इससे दिल हमारा भर जाता है ना, पानी से नहीं दिल उदास हो जाता है। तो हम सब क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग बेड पर या फिर सोफे पर पड़े पड़े फोन पर घंटों बेवजह रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। और सच बताऊं, इससे क्या होता है, इससे मूड फ्रेश होने के बजाय दिमाग और हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बॉस इस मानसून में अपने माइंड को डोपामाइन बूस्ट दीजिए। ये हम कहना चाह रहे हैं, दो आप दीजिए डोपामाइन बूस्ट। अब आप सोच रहे होंगे, ये किस बीमारी का नाम है, ये अब फिर ये किस मेडिसिन का नाम है। तो भाई, होता ये है, इसमें करना आपको ये होता है कि फ़ोन को थोड़ी देर के लिए करो साइड, किचन में जाइए और अपने लिए एक कड़क तुलसी।
4: India.in, munitionsindia.in। Power Foundation।

0: फाउंडेशन ऑफ इंडिया आमंत्रित करती है इन पदों के लिए आवेदन, विशेषज्ञ हाइड्रो संविदा, विशेषज्ञ ट्रांसमिशन संविदा तथा विशेषज्ञ विनियामक एवं वितरण संविदा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप और विस्तृत जानकारी उपलब्ध है पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.powerfoundation.org.in। टाटा स्मारक केंद्र नवी मुंबई आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए, चिकित्सा अधिकारी ई क्लिनिशियन साइंटिस्ट सेल्युलर थेरेपी, चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक अधिकारी डी वैज्ञानिक सहायक, बी वैज्ञानिक सहायक बी हिमेटोपैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी पैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी रेडियो डायग्नोसिस। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है, जो 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 7 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा स्मारक केंद्र की वेबसाइट sctrec.gov.in। आवेदन ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार आमंत्रित करता है प्रशासन सह लेखाधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन। ये पद प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। आवश्यक पात्रता मानदंड और अन्य सामान्य नियम एवं शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.naturopathyday.in। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर भारत सरकार आमंत्रित करता है लीड कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर NHSRC के एक पद को भरने के लिए आवेदन। आयु 55 वर्ष और उससे कम होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.mohfw.gov.in तथा nhsrcindia.org। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किए जाने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 4 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे डोपामाइन बूस्ट की। तो डोपामाइन बूस्ट होता क्या है? एक्चुअली इसमें करना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड करना होता है। जी हाँ, किचन में जाइए और अपने लिए कड़क तुलसी अदरक वाली चाय या एक मग हॉट चॉकलेट बनाइए। जी हाँ, इसके बाद खिड़की के पास बैठ जाइए, बारिश की बूंदों को देखिए, कोई कमाल की किताब पढ़िए या फिर बैकग्राउंड में अपना फेवरेट गाना चला लीजिए। और कुछ ना समझ में आए तो 100.7 FM रेनबो तो रहेगा ही रहेगा आपके साथ, इसको सुनते रहिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, स्क्रीन से दूर ये जो 15 मिनट का मी टाइम होगा ना, इसे आपके दिमाग को इतना रिलैक्स कर देगा कि सारी थकावट और चिड़चिड़ापन अपने आप गायब हो जाएगा। तो आज ही ये सोल केयर होता ना, इस हाई को ट्राई करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। हमारी चलिए ईमेल आईडी हम आपसे शेयर कर दिए और अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल एक और खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, इसको सुनते और सुनिए और कहीं मत जाइए, बस बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। वक्त हो गया 4:31 और कुछ सेकेंड्स, RJ प्रीति है आज आपके साथ।

दोस्तों, मानसून में बाहर का मौसम तो बहुत कूल होता है, लेकिन हमारी स्किन के लिए ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बस दो सिंपल ग्रूमिंग रूटीन आपको ये इस मानसून में भी एकदम फ्रेश और स्टाइलिश रखेंगे। पहला तो ये कि स्मार्ट मॉइस्चराइजर रूटीन, जी हाँ, जिसको कहते हैं स्किन हाइड्रेशन, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश के मौसम में जब पहले से ही बहुत ही चिपचिपाहट वाला मौसम है तो मॉइस्चराइजर क्यों ही लगाएं, है ना। पर सच तो ये है कि बार बार नहाने या पसीना आने से, स्वेटिंग होने की वजह से हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है ना, वो खो सा जाता है। तो मॉनसून हैक कहता है ये कि नहाने के तुरंत बाद जब स्किन हल्की नम हो, यानी कि डैम्प हो, तब कोई हल्का नॉन स्टिकी या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आप ज़रूर लगाएं। जी हाँ, इससे आपकी जो बॉडी में नमी होगी ना, उसको लॉक कर देती है वो मॉइस्चराइज़र। स्किन चिपचिपी भी नहीं लगती है और एक नेचुरल ग्लो होल डे के लिए बना रहता है। एक और हैक है, दूसरा ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये गाना सुनिए। और दोनों के दोनों हैक आप चाहते हैं एक बार में बता दें, इसको सुनिए, कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर

दोस्तों वक्त हो गया 4:45 और कुछ सेकंड्स, आप सुन रहे हैं यूथ वेव ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। और फिलहाल आज माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ, और यूथ वेव का आज बेहद ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम है, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर्सनल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। तो हमने अभी आपको इससे पहले, इस गाने के पहले आपको एक हैक बताया था कि किस तरीके से खुद का आप केयर कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि हमेशा आपको स्मेल फ्री फीट और जूतों की केयर करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं फुट केयर एंड हाइजीन। बरसात में सबसे बड़ी आफत होती है ये दोस्तों, कि जो गीले हमारे शूज़ होते हैं और बदबूदार पैर, भाई ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होते हैं, है ना। बारिश के पानी और पसीने से शूज़ में हमारे फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फैलते हैं, जिससे पैरों में इन्फेक्शन और तेज़ स्मेल आने लगती है। और मॉनसून हैक कहता है ये कि बंद जूतों की जगह बारिश में आप वाटरप्रूफ सैंडल्स या फ्लोटर्स पहनें। लेकिन अगर शूज़ पहनना आपकी मजबूरी है, मतलब ऑफिस गोइंग है या फिर स्कूल गोइंग है, आपको पहनना ही पहनना है, तो उसका हैक ये है कि शूज़ के अंदर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा या एंटी फंगल पाउडर आप स्प्रे करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमेशा आप इस मौसम में साफ कॉटन वाले सॉक्स ही पहनें, और घर आते ही पैरों को हमेशा डेटॉल या साबुन से धुल कर ही आप उसको कॉटन से, मतलब वाइप करें, उसके बाद आप अपने बेडरूम में प्रवेश करें। और ये जो आलस वाली चीज़ होती है ना, इसको थोड़ा सा साइड करें। यानी कि बॉटम लाइन ये कहती है कि बारिश में भीगने का मज़ा ज़रूर लें, लेकिन नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र और पैरों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिए।

दोस्तों वक्त हो गया 4:56 और ये वक्त कह रहा है कि यूथ वेव को भी वाइंड अप करने का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले कुछ बात है जो लगा आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि रोज़ दिन में 15 से 20 मिनट के लिए पूरी दुनिया को पॉज पर डाल दिया करिए और मी टाइम ज़रूर निकाला करिए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप दिन भर की भागदौड़ के बीच अपने माइंड को ये छोटा सा रीसेट बटन देते हैं ना, तो आपकी सारी मेंटल थकावट मिनटों में दूर हो जाती है और आपकी एनर्जी फिर से 100% पर आ जाती है। तो इन सब बातों के साथ ज़रूर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। तो बस इन बातों के साथ सुनते हैं यूथ वेव का लास्ट ट्रैक और इस ट्रैक के साथ ही यूथ वेव प्रोग्राम से लेना चाहूँगी विदा। लेकिन

नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास करना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5,070 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार और राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय को स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर कुल 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। इनमें 80 छात्राएं और 31 छात्र शामिल हैं। समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा और भविष्य निर्माण पर जोर दिया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और आज दोपहर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। जिला प्रशासन के अनुसार गंगा में हरे

द्वार बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी बढ़ाकर छोड़ा गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने तीनों तहसीलों के SDM को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर हालात या जायजा लेने का आदेश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
2: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
3: जी हाँ, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, हार्ट बीट ऑफ लखनऊ, यानी कि धड़कन लखनऊ की। और वक्त हो गया शाम के ठीक 5:05 और कुछ सेकंड्स। और इस वक्त के साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि माइक इस पर है आरजे प्रीति आपके साथ, तो अपने स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लीजिए क्योंकि अब टाइम हो गया आपके मोस्ट फेवरेट शो का जिसका नाम है टॉप 10। और आज का टॉप 10 पूरी तरह से हाउसफुल होने वाला है क्योंकि आज प्ले होने वाले हैं बॉलीवुड के असली पार्टी किंग, पावर हाउस, और जिन्हें कहेंगे स्वैग के किंग, मीका सिंह। जी हाँ, टॉप 10 सुपरहिट गाने आज होने वाले हैं पूरी तरीके से मीका सिंह जी के नाम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार काउंटडाउन और सुनते हैं नंबर 10 का ट्रैक। आप बने रहिए और इन्जॉय करिए ये गाना क्योंकि ये है टॉप 10 का नंबर 10th गाना। और इसके बाद कौन सा गाना है सुन रहे रहिए बस 100.7 FM रेनबो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जी अभी आपने मीका सिंह की आवाज में सुना सावन में लग गई आग, और मुझे लगता है जब भी बारिश का मौसम आता है और इस गाने को हम लोग ना सुने ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी मतलब कभी ना कहीं हम लोग चलते फिरते ये दो लाइनें तो हम लोग बोल ही देते हैं, इसलिए ये गाना मुझे लगा टॉप 10 में जरूर इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो अब बारी आती है सॉन्ग नंबर 9 की, और ये जो गाना है इसके बोल हैं चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। जी हाँ, मेरी आवाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा फिलहाल। ये गाना फ्रॉम द फिल्म राउडी राठौड़ का है। जी इस गाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें दिखने वाले कैमियो थे। गाने के बीच में अक्षय कुमार के साथ डांस करने के लिए 3 बड़े सुपरस्टार्स ने स्पेशल अपेयरेंस दी थी इस गाने में। पहले थे विजय जी, हाँ तमिल सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार विजय जी। करीना कपूर खान भी थी इस गाने में, दिखाई दी बेहद ही खूबसूरत अंदाज में, ब्लैक ड्रेस में नजर आई थी। प्रभु देवा जी भी नजर आए थे। निर्देशक होने के साथ साथ प्रभु देवा खुद भी इस गाने के एक हिस्से में थिरकते हुए नजर आए थे। तो ये थे 3 महान हस्तियां जिन्होंने इस गाने में शिरकत की थी। तो चलिए इस गाने की जिक्र हुए तो ये है सॉन्ग नंबर 9, इसको एंजॉय करिए। और इसके बाद बैक टू बैक हम आपको सुनवाएंगे सॉन्ग नंबर 8, और वो कौन सा है इसको सुनिए और कहीं मत जाइए।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।

जी हाँ, आज की पार्टी मेरी तरफ से है और आज मुझे लगता है कि बिल्कुल आप भी मेरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि आज आप अपने स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज जो टॉप टेन है वो पूरी तरीके से पार्टी टॉप टेन होने वाली है। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मीका सिंह के गानों को, और जिनको हम कहेंगे पावर हाउस किंग और स्वैग के किंग। तो अब इसके जैसे अभी हमने सुन लिया सॉन्ग नंबर 10, 9, और जब अभी आपने सुना था आज की पार्टी फ्रॉम द फिल्म बजरंगी भाईजान से, वो था सॉन्ग नंबर 8। तो अब बारी आती है सॉन्ग नंबर 7 की। तो भाई सॉन्ग नंबर 7 भी इसी तरीके का है, तड़कता भड़कता हुआ गाना। वो है ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ओ जी हाँ, ओ तो नहीं है लेकिन जो भी है भाई, इनके बोल ही कमाल के हैं। तो फिल्म रेडी का है ये गाना, जो आई थी 2011 में, उसका ये सुपर हिट गाना हम सुनने वाले हैं। असल में ये गाना तेलुगु फिल्म आर्या 2 के लोकप्रिय गाने रिंगा रिंगा का हिंदी रीमेक है, जी हाँ, जिसे सलमान खान ने विदेश में रह के यानी फॉरेन के किसी क्लब में सुना था और सुनकर इतना ज्यादा वो इंप्रेस हो गए थे कि उसी टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस गाने का हिंदी रीमेक तो बिल्कुल बनना है तो बनना ही। और सलमान भाई ने एक बार अगर ठान ली तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, तो लेकिन हम सब उनके गाने को जरूर सुनते हैं। तो चलिए सुनिए, इसको एंजॉय करिए।

और इसी डिंका चिका वाले गाने के साथ ही अब हम सुनने वाले हैं सॉन्ग नंबर G6 और 6 के बाद ही यानी कि 6 नंबर के साथ ही बैक टू बैक आप सुनेंगे गाना नंबर 5 भी। तो गाना नंबर 6 है जुम्मे की रात जो है फ्रॉम द फिल्म किक और इस गाने को आवाज़ दी है मीका सिंह और पलक मुछल ने। और इसके बाद हम सुनेंगे सॉन्ग नंबर 5 बैक टू बैक और वो है गाने के बोल चलिए बता देते हैं आँख मारे फ्रॉम द फिल्म सिम्बा। तो इन गानों को बैक टू बैक इन्जॉय करिए और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए कि सॉन्ग नंबर 1 आज कौन है प्लेलिस्ट से।

0: मिलेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों वक्त हुए 5:34 और कुछ सेकंड्स। आपको बता दें आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टॉप 10 ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, और आज माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ। और टॉप 10 में आज हम जो टॉप गाने सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं मीका सिंह की आवाज़ में, क्योंकि वैसे तो अगर उनकी बॉलीवुड हिस्ट्री की अगर बात करें कि जितने भी उन्होंने गाने गाए फिल्मी या नॉन फिल्मी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 गानों का सिलेक्शन करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पूरी मेहनत की टॉप 10 गाने होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि लगना चाहिए कि ये गाना भी नंबर वन पे होना चाहिए, ये गाना भी नंबर वन पे होना चाहिए। मतलब अभी तक जितने भी गाने मैंने आपको सुनवाए हैं, 5 गाने सुनवा चुके हैं, उसमें से हर गाना कहीं ना कहीं नंबर वन पे जरूर रहा है अपने वक्त पर। तो अभी जो आपने सुना गाना लड़की आंख मारे फ्रॉम द फिल्म सिम्बा, ये मूवी साल 2015 में आई थी, और ये भी तेलुगु हिट फिल्म टेम्पर की जो है हिंदी रीमेक थी। और अगर हम इस फिल्म की कॉप यूनिवर्स की बात करें, यानी कि ये फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स का हिस्सा है। इसकी शुरुआत उसी शिवगढ़ गाँव से होती जहाँ अजय देवगन की सिंगम फिल्म खत्म हुई थी। जी हाँ, इस फिल्म में कैंपियो संकेत भी दिया गया था। फिल्म के लास्ट में अगर आपको याद हो कि अक्षय कुमार की एक छोटी सी झलक जिसको हम कैंपियो कहते हैं वो भी दिखाई गई थी, जो बाद में रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सूर्यवंशी का जो कहीं ना इंडिकेशन था, संकेत था कि अगली फिल्म ये आने वाली है। और ये फिल्म भारत में 4000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज की गई थी, और इस फिल्म के जरिए पहली बार निर्देशक रोहित शेट्टी ने एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस सारा अली खान को एक साथ, मतलब ये जो है जोड़ी बनाकर स्क्रीन पर लाए थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर हम बात करें अगले गाने की जो अब आप सुनेंगे, मिलेगी मिलेगी फ्रॉम द फिल्म स्त्री, और इस गाने की बात करें, इस गाने को गाया है वही हमारी खूबसूरत आवाज़ जिनको हम कहते हैं बड़े ही प्यार से मीका सिंह। और ये जो गाना है ना मिलेगी मिलेगी, ये एक प्रोमोशनल ट्रैक है जिसे मीका सिंह ने गाया और म्यूज़िक दिया सचिन जिगर ने, कंपोज़ किया था। यानी कि इस गाने की सबसे बड़ा अगर फैक्ट की बात करें तो वो ये है कि डायरेक्टर अमर कौशिक की जो है मुताबिक ये प्रमोशनल गाना होने के बावजूद फिल्म के कोर कॉन्सेप्ट और जो स्पूकी एसेंस को पूरी तरह दर्शाता है। अगर इस गाने को आप देखेंगे ना तो इस गाने में एक महल कुर्सी है, और मतलब राजा का सिंहासन है, किस तरीके से राजा उस पर बैठा तो ये कहीं ना कहीं एक स्पूकी सा है व्यू जो बड़ा ही खूबसूरत है। तो चलिए इसको सुनते हैं, और ये गाना है आज की लिस्ट में 4th नंबर पे। जी हाँ, ये टॉप 10 के 4th नंबर को गाने को आप इंजॉय करने वाले हैं फ्रॉम द फिल्म स्त्री।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो एफएम,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
6: निष्पक्ष और सटीक हर कार्यक्रम,
7: बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं के लिए स्पेशल सेगमेंट,
8: जहां मिलती है हर जानकारी रियल टाइम में,
7: ना कोई फेक न्यूज, हर जानकारी परखी हुई,
6: सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: दोस्तों वक्त हुआ है 5:42 और कुछ सेकंड्स और आज आप सुन रहे हैं टॉप टेन में है जो आज की आवाज़, वो है मीका सिंह जी। हाँ, उनके हम धमाकेदार गाने सुन रहे हैं जिनको हम बड़े ही प्यार से कहते हैं बॉलीवुड के असली पार्टी किंग, पावर हाउस और स्वैग किंग। जी हाँ, मीका सिंह और इनके हम लोगों ने लगभग 10987654 यानी कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 के 3 गाने बचे हैं। और अगर हम बात करें कि 10th नंबर पे हमने जो गाना सुना सावन में लग गई आग, 9th नंबर पे हमने आपको सुनवाया राउडी राठौर से चिंता ता चिता चिता, और सॉन्ग नंबर 8 जो रहा बजरंगी भाईजान से आज की पार्टी, और सॉन्ग नंबर 7 रहा ढिंका चिका फ्रॉम द फिल्म रेडी, और सॉन्ग नंबर 6 हमने आपको जो सुनवाया फ्रॉम द फिल्म किक जुम्मे की रात है जो अभी आपने इंजॉय किया है।

और सॉन्ग नंबर 5 रहा है जी सिम्बा फिल्म से आंख मारे, और सॉन्ग नंबर 4 स्त्री फिल्म से मिलेगी मिलेगी। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत से गाने मैंने सुनवाए। अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो है फ्रॉम द फिल्म सन ऑफ सरदार, और इस गाने को गाया है मीका सिंह और भाव्या पंडित ने। हनी सिंह की भी आवाज़ है, और चलिए इस गाने को सुनते हैं। ये भी गाना बड़ा ही प्यारा है, इस गाने को सुनिए तो लगता है पार्टी में भी सुने चाहे अकेले भी सुने, हमेशा ये गाना एवर ग्रीन लगता है। तो इसको एंजॉय करते हैं ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, और आज माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों, अभी आपने सुना रानी तू मैं राजा फ्रॉम द फिल्म सन ऑफ सरदार, वो था गाना नंबर 3। और अब बारी आती है गाना नंबर 2 की, और ये है हवा हवा फ्रॉम द फिल्म मुबारका। और इस गाने को गाया है मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ ने। अब जिस ट्रैक की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी हिस्ट्री भी बड़ी ही दिलचस्प और सुपर मसालेदार है। हम सब ने फिल्म मुबारका में अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज पर फिल्माया गया वो पार्टी डांस नंबर तो खूब इंजॉय किया है ना, सही कहा ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना असल में कोई नया नवेला ट्रैक नहीं है? जी हाँ, इस आइकॉनिक धुन की शुरुआत हुई थी 80s में, जब हसन जहांगीर साहब ने इसे गाकर पूरे देश में तहलका मचा दिया था, और ये गाना बन गया था उस जमाने का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर। और कमाल की बात देखिए, मुबारका से बहुत पहले भी बॉलीवुड इस धुन पर फिदा हो चुकी थी। 1989 में गोविंदा की फिल्म बिल्लू बादशाह हो या फिर बप्पी लहरी की धांसू म्यूजिक वाली आग का गोला, हर जगह इस धुन ने अपना जादू चलाया था। यानी ये एक ऐसा गाना है जो हर जनरेशन की पार्टी की जान रहा है। तो चलिए फिर से थिरकते हैं इसी एवरग्रीन बीट पर और सुनते हैं ये सुपरहिट ट्रैक, यानी कि गाना नंबर 2 फ्रॉम द फिल्म मुबारका।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए, वक्त हो गया 5:55 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही टॉप 10 का जो सफर हमने ठीक 5 शुरू किया था वो बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गया है। यानी कि जो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग था, यानी कि गाना नंबर 1, इसका हम लोग 5 से इंतजार कर रहे थे। हमें तो पता था, लेकिन आप सब इंतजार कर रहे थे आखिर में मीका सिंह का कौन सा गाना होगा जो फर्स्ट नंबर पे हो गया। यानी कि वैसे तो उनके सारे के सारे गाने नंबर 1 लगते हैं, लेकिन किसी एक गाने ने इसमें बाजी मार ली है। जी हाँ, वो है गाना फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट। जी बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, और ये गाना होना भी चाहिए नंबर 1 पे। और इस गाने की अगर खास बात ये है ना, अगर बात करें तो ये गाना तब भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है, और आने वाले वक्त में भी नंबर 1 ही रहेगा। क्योंकि किसी भी पार्टी में इस गाने के बिना, मतलब अगर डांस किसी ने किया हो ये तो इम्पॉसिबल। ये गाना पार्टी की जान रहा है, तो आज के टॉप 10 की शान है ये गाना। सुनिए और कहीं मत जाइए, इस गाने के उस पार है शाम अवध आपके साथ, और इन दोनों के साथ रहेगी आरजे प्रीति आपके साथ। सुनते रहिए

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह मंजूरी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि की नींव है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधे भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने आज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभागवार जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि अलंकार योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ उनके परिवारजनों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने आज बहुउद्देशीय सहकारी समिति पहाड़पुरा का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद किसानों से सीधा संवाद कर खाद वितरण की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जिले में किसानों को किसी भी दशा में खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। इस आयोजन में मेजबान लखनऊ सहित प्रदेश के 61 जिलों के खिलाड़ी राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अपनी चुनौती पेश करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: निष्पक्ष और सटीक हर कार्यक्रम,
3: बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं के लिए स्पेशल सेगमेंट,
4: जहां मिलती है हर जानकारी रियल टाइम में,
3: ना कोई फेक न्यूज, हर जानकारी परखी हुई,
2: सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, वक्त हो गया 6:09 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही कुछ लाइन हमारे दिमाग में आई है, वो लगता है ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये मुझे लगता है ये जगह जगह लिखा भी होता है और आप इसको पढ़ते भी हैं और उसको पढ़ने के बाद मुस्कुराते भी हैं। जी हाँ, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, जहाँ हवाओं में नज़ाकत और बातों में मिठास घुली होती है। गोमती का किनारा और हजरतगंज की वो शाम यादों को ताज़ा करती है। तो थाम लीजिए चाय का कुल्हड़ क्योंकि शामे अवध अब आपके साथ है। और भाई, जब शाम इतनी खास हो तो शहर की खबरें कैसे भला छूट सकती हैं पीछे। तो चलिए जानते हैं कि आज शाम हमारे लखनऊ में क्या क्या हलचल हो रही है और लखनऊ से रिलेटेड और हमारे आसपास से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए। तो इसके लिए बस बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन शामे अवध। वक्त हो गया 6:10 कुछ सेकंड्स और माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ। और अगला गाना फ्रॉम द फिल्म डर, और इस गाने को सुनिए डरिए नहीं और रोमांटिक होके बस 100.7 FM रेनबो के सफर में बने रहिए।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: तो भाई शाम अवध में अगर हम शुरुआत करें न्यूज़ की, तो सबसे पहले न्यूज़ जो मैं लेके आई हूँ वो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए। तो भाई आप दोनों लोग ध्यान दें, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 9th या 12th में हैं तो ये अलर्ट आपके लिए ही है। जी हाँ, लखनऊ के ज़िला विद्यालय निरीक्षक जी ने साफ कह दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और लखनऊ में अभी भी बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग हैं। उन्होंने स्कूलों को भी भाई सख्त हिदायत दे दी है कि अगर किसी बच्चे का फॉर्म छूटा तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की होगी। तो बॉस, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करिए। तो स्टूडेंट्स कल ही अपने स्कूल जाकर अपने फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराइए, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसी अपडेट के साथ सुनते हैं अगला ट्रैक ओनली ऑन शामे अवध।

जी, शामे अवध तो बिल्कुल धूम मचा ही रहा है, और धूम मचाने के लिए एक जो अगली खबर हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर तो वाकई आपको लगेगा सुनकर कि हाँ, आपके लिए तो वाकई धूमधाम वाली है ये बात। और ये न्यूज़ है, अगर आप राजाजीपुरम से बीवीडी की ओर रोज़ाना सफ़र करते हैं तो अब आपकी जो यात्रा है ना वो और भी आरामदायक होने वाली है। यानी कि इस रूट पे आप चलते हैं तो आपको कंफर्टेबल आपकी रहेगी जर्नी, क्योंकि 1 अगस्त से यानी कि कल से लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट इस रूट पर AC इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और ये बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगी और हर आधे घंटे से 45 मिनट के बीच आपको बस मिल जाएगी। और रास्ते में अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टॉपेज होंगे, पहले मैंने सोचा स्किप कर दे, फिर हमें लगा कि आपको क्यों ना बता दे कि कहां कहां से आपको बस मिल सकती है। तो चारबाग, GPO, जवाहर भवन, सिकंदराबाद, लोहिया पार्क, गोमती नगर और BVD कॉलेज जैसे इनके मेन स्टॉप शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो किराया है ना वो भी काफ़ी किफ़ायती है, मतलब आपकी पॉकेट में पैसे बचेंगे। उसके बाद भी शुरुआती जो सफ़र होगा वो सिर्फ 15 रुपये से है, और जो अंतिम स्टॉप यानी कि लास्ट स्टॉपेज होगा वो 45 रुपये तक रहेगा। तो अगर आपका रोज़ का सफ़र है इसी रूट पर तो अब ट्रैफिक की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी आपकी और सफ़र थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है। तो ऐसी ज़रूरी और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए शामे अवध ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

0: You're listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

दोस्तों अब बात एक ऐसी खबर की जो पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए राहत लेकर आई है। जी हाँ, अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, अपॉइंटमेंट या प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय 2 अगस्त शनिवार को विशेष पासपोर्ट सेवा अभियान चलाने जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के अनुसार इस दिन लखनऊ में पासपोर्ट कार्यालय के साथ साथ 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 33 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खुले रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। तो अगर आपका पासपोर्ट से जुड़ा कोई काम अभी बाकी है तो इस विशेष अभियान का लाभ उठाइए और समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिए।

दोस्तों आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज के दिन ने भारत के संचार इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। जी हाँ, साल 1995 में आज ही के दिन देश की पहली मोबाइल फोन कॉल की गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता से केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को दिल्ली में फोन कर इस ऐतिहासिक शुरुआत की थी, और यही वो पल था जिसने भारत में आधुनिक मोबाइल संचार क्रांति की नींव रखी थी और देश को एक नए दौर में प्रवेश कराया।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों वक्त हो गया 6:54 और कुछ सेकंड्स, और ये वक्त कह रहा है कि शामे अवध को भी वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। लेकिन उससे पहले चलते चलते बॉलीवुड की उस सदाबहार अदाकारा को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देना तो बाकी है, जिनकी मुस्कान और अदाकारी ने लाखों दिलों पर अपनी कहीं ना कहीं छाप छोड़ी। जी हाँ, आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज जी का, जिन्होंने दो रास्ते, खिलौना, बंधन और रोटी जैसी कई यादगार फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता और अपने दौर की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस में भी शुमार रहीं। तो बस शामे अवध को वाइंड अप करने से पहले इनको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए इनकी ही फिल्म का एक खूबसूरत सा ट्रैक इसको सुनेंगे फ्रॉम द फिल्म लोफर। और इस फिल्म में इनके साथ जो रोल प्ले किया है वो है धर्मेंद्र जी ने। तो बस शामे अवध को यहीं वाइंड अप करते हैं और शामे अवध के उस पार कर रहा हेलो FM आपका इंतज़ार, तो उस प्रोग्राम में करेंगे हम आपसे बातें। तो बस कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा 100.7 FM रेनबो। और आज माइक के इस पार है RJ प्रीति आपके साथ, सुनते रहिए।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026 से 27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के करीब 3025 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। श्री पुरी विप शहना केंद्र और कपिलवस्तु स्थित बुद्धा स्तूप में लाइट एवं साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। काशी में श्रावण मास के दूसरे दिन आज भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से धाम की सभी व्यवस्थाओं पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव लम्ही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक में लम्ही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए।

0: एफएम रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है, या एफएम रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली, तो टॉप थ्री विनर्स को मिलेगा एफएम रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा।
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं।
6: अरे क्या बोल भैया।
2: अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
7: जी हाँ, अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो बस आप डायल कर दीजिए 0522223845 और दूसरा नंबर है 2238852। तो ये तो हमारे हुए दो नंबर्स, और इन नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और हमारे जरिए अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल वक्त हो गया 7:05:40, और इस वक्त के साथ बता दें प्रोग्राम स्टार्ट हो गया हेलो FM, और माइक इस पार है RJ प्रीति आपके साथ, और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे बात करने से पहले ये गाना सुनवा दिया जाए, और गाने के उस पार हम धीमे धीमे आपसे बात करेंगे, फिर आपको हम लेंगे फोन लाइन पर। तो सुनना ना भूलिएगा अपना नाम। जी हाँ, ऑन एयर।

जी, अभी आपने सुना बरसात फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना और आवाज़ है इसमें कुमार सानू और अलका याग्निक जी की, और इसके बाद अब हम जो अगली आवाज़ सुनने वाले हैं तो सुनिए आप भी। हेलो हेलो, ये क्या हुआ? फिलहाल आपको बता दें कि राम प्रताप सिंह जी थे लखीमपुर खीरी से, और शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, लग रहा है कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई नहीं, हम बात कर लेंगे फिर से। तो इन्होंने फिलहाल कसूर फिल्म के गाने की रिक्वेस्ट की थी, इसको प्ले करते हैं और इसको सुनिए और आप भी कॉल लगाइए।

0: जी अब हमारे साथ है, देखिए अब हम लोग सुनते हैं कि किसकी आवाज़ है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो मेरी प्यारी सी क्यूट सी प्रीति दीदी को प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: जी गुड इवनिंग। और नाम तो बताइए, इतनी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी आवाज़ है
1: दिलों पे
0: आपकी।
1: हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर रायबरेली से।
0: ओहो, ये तो बिल्कुल इतना अच्छे से आप डिस्क्राइब करती हैं अपने रायबरेली को। अगर मुझे कोई रायबरेली का मिल गया और मैंने उनसे पूछा कि बताओ दीवानों के शहर किसको कहते हैं, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, फिर मैं उनको आपका नाम
1: बताऊंगी
0: बताऊंगी
1: क्योंकि
0: कि
1: रायबरेली में ना FM रेनबो की दो दीवानी रहती है, इसलिए हमने
0: जी
1: अपने शहर का नाम दीवानों के शहर रख लिया।
0: अच्छा, तो मुझे लगता है रायबरेली को अब जाना जाना चाहिए। मतलब हम लोग कहते हैं ना, हर शहर को किसी ना किसी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो अब
1: जी, और
0: रायबरेली को हम
1: अपने
0: लोग।
1: देश के लिए और
0: हाँ
1: अपने
0: हाँ
1: जिले के लिए अगर कुछ लिखना या कुछ बोलना पड़े ना तो जरूर श्रोताओं को बोलना भी चाहिए और कहना भी
0: जी
1: चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब रायबरेली को हम जानेंगे रिंकी पिंकी के नाम से, है ना।
1: प्रीति दीदी नमस्ते। पिंकी
0: नमस्ते, आप कौन है, पिंकी है कि रिंकी इस टाइम? जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं दीदी?
0: बहुत ठीक हैं, बिल्कुल मस्त हैं, दुरुस्त हैं, चुस्त हैं, और चुस्त दुरुस्त मस्त सारे कुछ हैं। आप कैसी हैं? और
1: मेरा
0: बहुत
1: यही
0: अच्छा लगा आप लोग से
1: कहना है,
0: बात
1: बस
0: करके।
1: मस्त रहे और हम लोगों का मनोरंजन करती रहे।
0: जी आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: जी मूवी का नाम है राजा जानी और गीत के बोल है कितना मजा आ रहा है, और लता मंगेशकर की आवाज में है, और ये गाना आपको डेडिकेट है और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सबको, और पूनम दीदी, अनु पांडे, समा परवीन, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, फैज भाई, जितने श्रोता सुन रहे सबको।
0: सबको, तो चलिए सब लोग सुनते रहिए। और रिंकी पिंकी जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। और
1: और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कॉल शामिल करने के लिए,
0: जी
1: नहीं तो हम लोग कॉल
0: देखिए रिंकी पिंकी,
1: कॉल
0: मैं
1: नहीं
0: हमेशा यही कहती हूँ, मेल भी मैं सारी शामिल करती हूँ और कॉल भी पूरी कोशिश करती हूँ सबसे बात कर लें।
1: इसीलिए तो मैम हम आपका कार्यक्रम यहाँ भी सुनते हैं और विविध भारती में भी सुनते हैं,
0: ओहो
1: आपको वहाँ
0: जी, अच्छा लगा सुनकर कि आप हमारी दो दो जगह फैन हैं और हमसे कनेक्ट हैं और हमसे जुड़ी हुई हैं। बहुत दिल को खुशी मिलती है इस तरीके की बातें
1: जी,
0: सुनकर।
1: हमें भी अपने फेवरेट अनाउंसरों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, जब उनसे बात हो जाती है ना
0: जी,
1: तो खुशी का ठिकाना ही नहीं
0: और आज
1: रहता।
0: हमारी भी खुशी का ठिकाना नहीं है आज आपसे बात होकर। तो
1: जी
0: चल
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। और इनके फेवरेट ट्रैक को सुनते हैं अपने रेडियो सेट पर, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष

0: 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
1: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
3: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसपे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गद्दा

0: मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: जी वक्त हो गया 7:32 और कुछ सेकंड्स और इस वक्त के साथ ही बता दें शुरू हो गया प्रोग्राम हेलो एफएम और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन है सुनते हैं। हेलो।
4: हाँ हेलो दीदी नमस्ते।
3: जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया दीदी
3: जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप, मतलब किस शहर से?
4: इस समय मैं अम्बेडकर नगर गुलजार नगर लखनऊ से बोल रहा हूँ और रहने वाला हूँ मैं जिला बाराबंकी भाषा शरीफ का।
3: अच्छा जी, तो अच्छा ये बताइए कि सावन तो स्टार्ट हो गए हैं, है ना? तो सावन के टाइम में आप क्या क्या चीजें, मतलब पूरे साल जैसे हम सब लोग इंतजार करते हैं किसी ना किसी त्योहार का कि जब ये त्योहार आएगा तो हम ये करेंगे, तो आपकी भी कुछ प्लानिंग है कि सावन जब आएगा तो हमें ये काम करने हैं या ये काम नहीं करने हैं, ऐसा कुछ लिस्ट बनाते हैं आप?
4: मैं तो वैसे ब्लाइंड पेशेंट हूं
3: जी,
4: वैसे मैं ट्रेनों में अपना रोजगार करता हूं।
3: ओके ओके जी।
4: तीर्थ धाम वगैरह जाया करता हूँ।
3: ओहो जी, बड़े अच्छा लगा सुन के। और
4: तीर्थ धाम वगैरह जाया करता हूँ और जैसे अयोध्या हुआ और तुम्हारा ये वैष्णो देवी हुआ, ये विंध्याचल वगैरह हुआ
3: जी,
4: जब मैं ऊपर यात्रा से कितना सब घुमा करते हैं
3: जी। अच्छा जी, और बताइए।

0: गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: बहन जी वो गाना जो है अनोखा अंदाज का गाना है, तू दीवाना पागल मेरा हो गया।
0: तो ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कि बस यू मन कर गया?
1: कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाह रहे हैं,
0: किसको?
1: कुछ लोगों को नाम लेना चाह रहा
0: जी
1: हूँ।
0: बिल्कुल नाम लीजिए।
1: दीदी सबसे पहले आपको
0: जी शुक्रिया।
1: और ये हमारी राजा जी पुरम में है सीमा रावत जी, जो गणेश जी की मूर्तियाँ बनाती है।
0: अच्छा अच्छा जी।
1: और ये हमारे बारामंकी देवा शरीफ में भांजे रहते हैं, दीपू सैनी
0: जी,
1: सतीश सैनी, शिवा
0: जी,
1: सैनी,
0: अच्छा
1: पवन
0: जी।
1: सैनी।
0: तो उन लोगों को बता दिया है ना कि आपने उनका नाम ऑन एयर लिया है?
1: वो दीदी रोज सुनती सुनते
0: अच्छा
1: रहते हैं।
0: तो
1: हाँ, सुन
0: चलिए
1: रहे होंगे, अभी मेरे पास रिटर्न फोन आएगा।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए आप उनको
1: और
0: जी।
1: जितने लोग लाइव सुन रहे हैं सभी को
0: चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आप भी हमारे साथ बात कर सकते हैं, बस आपको डायल करना होगा 0522223845 और दूसरा नंबर है 2238852। फिलहाल माइक इस पर है आरजे प्रीति आपके साथ और सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

और आप भी हमारे साथ बात कर सकते हैं, बस आपको डायल करना होगा 0522-223-8845 और दूसरा नंबर है 223-8852। फिलहाल माइक इस पर है आरजे प्रीति आपके साथ और सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

0: जी आप भी इसी तरह हेलो एफएम प्रोग्राम में खो जाइए और हमें कॉल यूं ही करते रहिए क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और अब सुनते हैं कि कौन है नेक्स्ट कॉलर। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मोहम्मद राशिद।
0: मोहम्मद राशिद जी, मोहम्मद राशिद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जिला कौशाम्बी, तहसील सिराथू, कड़ा ब्लॉक, पोस्ट टेलीपुजीता, गांव दलपुर कसार।
0: आप लोग इतने आराम से डिटेल में एड्रेस बताते हैं, लग रहा सब लिख लूं आपका एड्रेस और बस कुछ पोस्ट कर दें, आप लोग को कुछ कोरियर कर दें, इतने आराम से पूरा डिटेल दे देते हैं अपने एड्रेस का। जी क्या करते हैं आप राशिद?
1: घर पर रहते हैं।
0: अरे कुछ तो करते होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस?
1: पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं
0: जी। अब आप जो है वन वर्ड वाला हमारे साथ खेल रहे हैं ना कि बस एक आप एक शब्द बोल के शांत हो जाते हैं फिर उसके बाद हम सोचे अब हमें क्या बोलना है ना।
1: नहीं, मतलब इसलिए मतलब बात बराबर पहुंचे, इस वजह से।
0: जी बिल्कुल सही आपने बोला है, लेकिन हम तो यहाँ पे कोशिश ये करते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज जाए, इसलिए हम रुक जा रहे होते हैं कि आपकी आवाज आनी चाहिए। तो राशिद जी गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: ये मोहम्मद रफी का काली घटा छाई, प्रेम रुतराई, आई आई देखो तेरी याद आई।
0: ओहो, ये गाना किसी को डेडिकेट कर रहे हैं कि बस यूं?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। किसको?
1: सबसे पहले आपको
0: जी शुक्रिया। बिल्कुल, और किसको?
1: हमारे बच्चे भतीजी भतीजा मोहम्मद अहद, अशरफ फातिमा और वो मिंटू तिवारी, बेटा सिंह यादव
0: जी,
1: और राजेंद्र घुटनी कुंडा प्रतापगढ़ से, सीतापुर परवीन अंसारी, साहब अंसारी, साजी अंसारी, यासमीन बानो, कंडेला से अहमद नवाब
0: जी। अच्छा,
1: और जितने सुन रहे हैं सभी के लिए
0: जी। अच्छा राशिद, एक सवाल पूछे, बिल्कुल सच सच बताइएगा।
1: बिल्कुल,
0: ये जो इतने सारे आप लोग एक फ्लो में नाम लेते हैं, आप लोग कहीं लिखते हैं कि बस यूं ही जुबा पे आ जाते हैं इतने सारे नाम?
1: लिखते नहीं मैं, हाँ। तो कम लिया है। क्योंकि
0: अच्छा
1: यासिर भाई,
0: अच्छा ये यासिर भाई रह गए थे, तो भाई आप सारे

0: नो जिनका जिनका जिनका नाम लिया है राशिद ने, तो आप सब ऑन एयर इनका गाना सुनिए और इनको कॉल बैक करके इनको शुक्रिया बोलिए। भाई मैसेज मत करिएगा बिल्कुल भी, इन्हें कॉल करके थैंक यू बोलिएगा। क्यों राशिद, अब आप इंतजार करिए, एक घंटे तक आपका फोन ना बिल्कुल वो बिजी होने वाला है।
1: मैम बहुत लगाते लगता नहीं जल्दी,
0: तो यही तो इस यही तो यहाँ की लाइन का जो क्रेज है, लगता नहीं है, तो इसलिए और लगाना चाहिए आपको कि किस दिन लगेगा है ना। चल,
1: मैं हार नहीं जल्दी मानता ना, लगा
0: हार तो माननी ही नहीं चाहिए।
1: हाथ लगा जाएगा
0: नहीं, जो हार गया फिर वो बाजीगर कैसे कहलाएगा, आज तो आप बाजीगर कहला गए। तो राशिद जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, और राशिद की पसंद का गाना आप तक पहुंचा रहे हो। जिनका जिनका नाम लिया राशिद ने उनको ये गाना डेडिकेट है, और आप प्लीज राशिद को कॉल जरूर करके शुक्रिया अदा करिएगा।

0: जी आज बहुत सारे रिक्वेस्ट जितने भी आ रहे हैं ना, मुझे मोहम्मद रफ़ी के पसंद के ही गाने आ रहे हैं. आप सब मोहम्मद रफ़ी के गाने इसलिए पसंद कर रहे हैं, वो मैं अभी सस्पेंस नहीं रिवील करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लिसनर्स किसी ना किसी आरजे के तो ज़रूर फ़ैन होते हैं. तो आज मैं आपको बता दूँ, आज का रजनीगंधा जो डेडिकेटेड होगा मोहम्मद रफ़ी जी पे, वो अंजू जी जो हैं वो प्रोग्राम करने वाली हैं. तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर रजनीगंधा सुनिएगा. और जैसे ही अंजू जी स्टूडियो में इन करेंगे तो हम जरूर जो है 8 बजे से पहले 2 मिनट उनसे बात करवाएंगे, जिससे आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ रात 12 बजे तक. और अब सुनते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ. हेलो.
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए अपना.
1: मैं ओम नगर आलमबाग लखनऊ से जॉली बोल रहा हूँ.
0: बड़ा प्यारा नाम है आपका जॉली जी.
1: प्रीति जी, आपने तो जो मुझे कहना था कि रजनीगंधा का प्रोग्राम अंजू जी करेंगी जी. आपने अनाउंस कर दिया.
0: ओहो, आपने मुझे बता ये आपको मुझे बताना चाहिए था कि मुझे ये चीज अनाउंस नहीं करनी, क्योंकि मैं देख रही तब से
1: जी थोड़ी हंसी कर रहा हूँ.
0: अच्छा कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मोहम्मद रफी जी के कानों की रिक्वेस्ट आ रही, तो मैं सबसे कह रही हूँ कि आप इंतजार करें, 10 बजे आपको मिलेंगे उन्हीं के गाने, और वो भी बेहतरीन आवाज के साथ अंजू जी मिलेंगी. तो
1: आज तो रात भर जागना पड़ेगा.
0: बिल्कुल पड़ेगा भाई, प्रोग्राम भी तो सुनिए ना कि मोहम्मद रफी जी पर आज बेस्ड है, और ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा. रजनीगंधा आज तो स्पेशली डेडिकेटेड है उन्हीं के लिए, है ना
1: जी. जी जी.
0: तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: रफी साहब की आवाज में ही है
0: जी.
1: तीसरी मंजिल पिक्चर का
0: जी,
1: कि तुमने मुझे देखा, और अच्छा. राहुल देव बर्मन जी का संगीत था और ये गीत मुझे बहुत पसंद है
0: जी. तो ये गाना किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: डेडिकेट आपको
0: जी. शुक्रिया. तो चलिए आपकी पसंद के गाने को हम सब मिलकर इंजॉय करते हैं, और शुक्रिया कॉल करने के लिए. आप भी इनकी तरह जॉली जी की तरह कॉल कर सकते हैं, बस आपको हमें डायल करके कनेक्ट करना है 0522223885, और दूसरा नंबर है 0525223885. और फिलहाल आज माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ, सुन रहे प्रोग्राम हेलो एफएम.

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी वक्त हो गया 7:47, तो अब सुनते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
2: जी गुड इवनिंग
3: मैम, मैं नवनीत मौर्य, मैम कुरोनी बंतरा लखनऊ से बोल रहा हूँ मैम। और मैम कैसे हैं आप?
2: जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं?
3: मैम हम भी बहुत अच्छे हैं मैम।
2: अच्छा सावन तो स्टार्ट हो गया है, आपकी तरफ सावन ने दस्तक दी है कि नहीं?
3: यस मैम, सावन ने दस्तक दी। मैम सावन में बारिश होती थी, इस बार बारिश नहीं हो रही है।
2: तो फिर कहाँ सावन ने दस्तक दी? वो तो सिर्फ जी
3: मैम जो दर्शन वर्शन करने जाते हैं, कांवड़ यात्रा करने जाते हैं, सब ये स्टार्ट हो गया, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
2: हाँ, मतलब कि सावन अभी अधूरा है।
3: बारिश होती है तो हाँ, कांवड़ लेके जाओ तो बारिश होती, बड़ा आनंद आता है।
2: जी जी, तो आप भी लेके जाते हैं?
3: मैम लेके जाते हैं, हमारा छोटा भाई लेके जाता है मैम, कभी चले जाते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो चलिए। अच्छा गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
3: मैम जो गाना हमने अभी बोला था मैम,
2: जी जी,
3: मूवी का मैम, जब तुम आ रहे थे सामने।
2: चलिए
3: और कुछ फ्रेंड है मैम डेडिकेट करना?
2: जी बिल्कुल, फटाफट नाम ले लीजिए उनके भी।
3: मैम हरकेश जी है मैम, और मुनेश्वर भैया है, और बाबू अंसारी जी है मैम, और जितने थोड़ा सुनने सबको डेडिकेट कर।
2: चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वक्त बहुत कम बचा है, 10 मिनट है हार्डली, तो जल्दी जल्दी फोन करिए और हमसे बात करिए और अपनी पसंद का गाना डेडिकेट करिए।

0: जी, अभी आप सुन रहे हैं महाराजा फिल्म से ये गाना, और अब हम सुनते हैं अगली आवाज जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आप कहाँ पे हैं? बहुत शोर शराबा आ रहा है
1: जी, रेडियो लगाए थे
0: थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए
1: जी, आ गए, दूर आ गए
0: जी। क्या नाम है आपका?
1: जी, जिला राजरैली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: अच्छा रामराज जी, आपकी मेल भी तो आती है ना?
1: जी, हम मेल बहुत भेजते हैं, कार्यक्रम में भी भेजा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, मैंने देखा
1: कार्यक्रम में पढ़ लिया करो
0: मैं हमेशा आपकी ईमेल शामिल करती हूँ, आप शिकायत नहीं कर सकते हमें।
1: बहुत अच्छी बात, आपने पहले कह दिया, हमको बहुत खुशी हुई
0: जी। और ये बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी, मुझे फिल्म जानी दुश्मन का गाना सुना दे, पुरानी वाली है।
0: हाँ हाँ, तो ये गाना किसी को डेडिकेट करना है?
1: यहाँ 4-6 लोग हैं, ज्यादा
0: अरे 6 लोगों का ही बस नाम लीजिएगा, 52 हो गए, जल्दी जल्दी बताइए
1: कोई बात नहीं
0: नहीं नहीं, आप बोलिए
1: जी। राजू भानु हो गए, पप्पू पासी मजहरगंज, रामचरण प्रजापति, मिर्जा तुराब बेग।
0: चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए, और 7:53 का वक्त है, और बस आप भी हमें कॉल करिए और हम आपके फ़ोन का वेट कर रहे हैं।

0: तो दोस्तों वक्त हो गया 7:55 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही लगता है आखिरी कॉलर को भी हमें लेना होगा, और लेकिन हमारे साथ कोई और भी है, उनको भी हमें लेना है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिर आपसे बात करवाते हैं। तो भाई लीजिए, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और शायद वो आतिश या आतिफ करके कुछ नाम था, फ़ोन में बहुत ही डिस्टर्बेंस थी, उनकी आवाज़ तो क्लियर नहीं आई, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी पसंद के गाने को ज़रूर उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया। एक्चुअली उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। हीर रांझा के इस गाने की रिक्वेस्ट की है, इसको सुनिए और कहीं मत जाइए। और आज का रजनीगंधा बेहद ही स्पेशल होने वाला है। आज कौन है हमारे साथ, चलिए आइए आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
1: मुझे लगता है किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, उनकी उन जिनके पर आधारित होगा आज का रजनीगंधा। जो गीत अभी अभी आप सुनने वाले हैं या सुबह से सुन रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है। मुझे लगता है कि साल, बहुत सारे साल कम पड़ जाएंगे प्रीति, जब हम रफ़ी साहब के गानों को बजाने बैठेंगे या उनका जिक्र करने बैठेंगे तो। लेकिन कोशिश करूँगी कि 2 घंटे के प्रोग्राम रजनीगंधा में एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष एपिसोड उनको समर्पित करूं, और जिसमें आप सभी श्रोताओं की मौजूदगी, आपका साथ बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए।
0: जी, और अंजू जी आपको मैं बता दूं कि 7 बजे जब हेलो एफएम मैं कर रही थी उसमें ही भी मोहम्मद रफ़ी जी के गानों की रिक्वेस्ट आने लग गई थी। मतलब ये क्रेज़ है उनका, है ना,
1: हिंदुस्तान ही नहीं हर संगीत प्रेमी, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस संगीत प्रेमी के दिलों पर राज करते हैं रफ़ी साहब, आज भी और हमेशा करते रहेंगे। जब तक दुनिया में संगीत रहेगा मुझे लगता है रफ़ी साहब की आवाज़ हमारी रहेगी।
0: तो चलिए, आवाज़ों की बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब इस वक्त पर एक आवाज़ को कहना होगा टाटा बाय बाय, वो है आरजे प्रीति। आरजे प्रीति साइनिंग ऑफ, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सावन का इंतजार बिल्कुल मत करिए, भगवान से बस प्रेयर करते रहिए कि जल्दी से बारिश हो जाए। सावन स्टार्ट हो गया लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, तो इसको पूरा करने के लिए प्रेयर की बहुत जरूरत है। तो चलिए सुनते हैं ये लास्ट ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हीर रांझा।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस अवधि के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ये निर्णय करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, कृषि निवेश को नई गति तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। अयोध्या में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बीच जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और स्पष्ट कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर प्रभावित परिवार तक समय पर सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। डीएम ने कहा कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रामपुर के रजा पुस्तकालय में हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुस्तकालय के निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र ने कहा कि प्रेमचंद के लेखन की प्रासंगिकता आज भी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने मानव जीवन के मूल प्रश्न पर अपने लेखन के माध्यम से टिप्पणियां दी। मैनपुरी में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और चिन्हित ब्लैक स्पॉट का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है आप शार।

0: शब्द, ना एक कम ना एक को ज्यादा।
1: ए भैया ये का है इरादा?
0: विनर बनेंगे और बर्थडे पार्टी में जाएंगे।
2: अरे कैसे, हमको भी बताएंगे।
3: अगर आप करते हैं FM रेनबो से प्यार तो कर डालिए 26 शब्दों में इजहार
0: और भेज दीजिए उसे इस मेल आईडी पर FM से इश्क 26@gmail.com।
1: एक लिसनर की होगी सिर्फ एक ही एंट्री
0: और ये प्रतियोगिता है सबके लिए फ्री।
2: So don't be late.
4: Cause 5th of August is the last date.
5: Keep listening to 100.7 FM.

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और हमारे लिए तो सही मायने में जिंदगी हर मौसम में है, हर सुर में है, हर सांस में है। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, आपकी हमनवा मैं आरजे अंजू शुक्ला खैर मद्दम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आप सभी सामाइन का 100.7 FM रेनबो पर। प्रोग्राम लेकर आई हूँ आप शार। वक्त हुआ है 8:05 और ये पहली गज़ल आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश। एल्बम है वादा और आवाज़ है साधना सरगम की।

होता। और फिर गजल की तो बात ही क्या, लिखने से पहले जिंदगी को पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर कागज पर दो मिसरे उतरते हैं। और यही वजह है कि अच्छी नज़में, अच्छी गज़लें या अच्छे शेर वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: मैं समय हूं और मैं हरीश विमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
3: अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता।

0: रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए एफएम रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार, भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए एफएम रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है, या एफएम रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली, तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा एफएम रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।

मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

रात घटाएं और ये फिजाएं। दोस्तों, बरसात की बूंदें भी जब जमीन को छूती है ना, तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि दिल के कई बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। फिजाओं में नमी घुल जाती है और हवाओं में एक खुशनुमा सी नरमी उतर आती है। हर तरफ एक दिलकश सा एहसास बिखर जाता है। उर्दू शायरी में भी सावन को सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि इश्क, इंतज़ार, मुलाकात और यादों की तर्जुमानी करने वाला मौसम कहा गया है। इसी रुत पर एक खूबसूरत शेर है कि बरसती बूंदों ने फिर दिल की सदा याद दिला दी। बरसती बूंदों ने फिर दिल की सदा याद दिला दी, ये सावन हर बरस कोई पुरानी बात सुना देता है। आइए इसे खुशगवार फिजा, भीगी भीगी हवाओं और सावन की दिलनशीन रुत के नाम सुनते हैं ये बेहतरीन पैगाम।

0: वक्त हुआ है 8:30, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार। मैं हूं आपके साथ आपकी हमनवा आरजे अंजू शुक्ला और आपने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो। दोस्तों, कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक, और प्रायोजित कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार शाम 7:30 से 8 बजे तक।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अजनबी कोई अगर दिल में उतर जाए कभी, फासले रहते नहीं सिर्फ मोहब्बत रहती है। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, रूह तक उतर जाती हैं और उनमें सुर कम एहसास ज़्यादा होते हैं। इसलिए आबिदा परवीन की गायकी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। उनकी आवाज़ सूफियाना रंग में डूबी हुई है जो इश्क को महज एक रिश्ता नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत बना देती है। आइए सुनते हैं।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 4,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
3: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये

0: विन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतरदेशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान

0: के तंत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय

मंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 100.7 FM रेनबो अपने स्थापना दिवस के मौके पर लेकर आया है आपके लिए एक खास और दिलचस्प प्रतियोगिता रेनबो लखनऊ एट 2026।
1: सन 2000 में शुरू हुए FM रेनबो ने पिछले 26 वर्षों में आपके प्यार भरोसे और अपनत्व के साथ एक यादगार सफर तय किया है और अब वक्त है आपके दिल की बात सुनने का।
0: जी हाँ, सिर्फ 26 शब्दों में बताइए FM रेनबो आपके लिए क्या मायने रखता है या FM रेनबो से अपने प्यार का इजहार कीजिए।
1: अगर आपकी बात हुई सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली तो टॉप 3 विनर्स को मिलेगा FM रेनबो के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सुनहरा मौका।
0: जी हाँ, तो अब आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: आपकी एंट्री ठीक 26 शब्दों की होनी चाहिए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज्यादा,
0: और एंट्री हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में भेजी जा सकती है।
1: हर लिसनर की सिर्फ एक ही एंट्री मान्य होगी।
0: अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।
1: और याद रखिएगा, एंट्री भेजने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त रात 12 बजे तक।
0: तो अपनी एंट्री ईमेल के जरिए हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है
1: fmseishq26@gmail.com। स्पेलिंग बता देते हैं, fmseishq26@gmail.com।
0: निर्णायकों का फैसला फाइनल और सभी के लिए मान्य होगा।

जय हो, जय हो, बम बोल बम बोल बम। सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी सुनने वालों को। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आरजे अंजू शुक्ला लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम पॉप टाइम। 9:02 का वक्त और ये लीजिए होने वाले 9:03। आज का ये सफ़र कुछ अलग है, कुछ हटके है, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है ना। तो चलिए इंजॉय करते हैं सबसे पहले ये गाना।

भैया रूठने का मौका ही क्यों दे रहे हैं, हरी हरी चूड़ियां पहले से ले आई है, हरी साड़ी, हरी चुन्नी, हरा सूट, मतलब आज मैंने भी हरा पहना है, बिल्कुल गाढ़ा पत्ता होता है ना पीपल का पत्ता, वो वाला हरा नहीं, नीम का पत्ता, अब क्या बताऊं कौन सा पत्ता है, लेकिन बस ये है कि हरियाली के रंग में रंगना है। सावन का महीना भोले बाबा की भक्ति, बोल बम के जयकारों से गूंजती गलियां और दिलों में उमंग मस्ती और संगीत का मौसम। आज की शुरुआत होगी उसी जोश और आस्था के साथ। देखिए ये गाने तो बस हमारे अंदर जोश भर देते हैं, और उसके बाद इन गानों के बाद लगेगा पॉप म्यूजिक का तड़का, बजेंगे हिंदी पॉप के सुपर हिट नंबर, इंडी म्यूजिक की ताजगी, युवाओं की पसंद, बीट्स का धमाल और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। तो वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए, मूड को कर लीजिए रिफ्रेश, क्योंकि ये घंटा है सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक पॉजिटिव वाइब्स का फुल टू।

बतावा का कसूर है इनका, जलवा चढ़ावत रहे तो भुलाए गए। लेकिन भैया देखिए, भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी धाम पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर दुकानें लगी रहती हैं, भूल कैसे सकते हैं, याद आ जाता है ना। शॉप्स देखिए, मेले का माहौल होता है और सावन के महीने में तो हर शिवालय के आसपास मेले जैसा माहौल है ना, तो बस भूलना नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि मेरा मानना है कि जब कहीं धाम पर जाए, दर्शन करने जाए, तो जो सौभाग्य की चीजें हैं ना, वो जरूर लेकर आनी चाहिए। देखिए अभी हम गए थे 3-4 दिन पहले गोला गोकर्णनाथ दर्शन करके आए थे जी हाँ, लखीमपुर खीरी, और वहां से हम लेकर आए बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें, और पहना भी है, आज ही पहना है कुछ तो। और कहते हैं ना कि जब हम किसी भी स्थान पर जाएं, किसी देवालय में जाएं, या आप घूमने फिरने जाएं, तो वहां की लोकल कुछ चीजें अपने साथ जरूर लानी चाहिए। निशानी रहती है, सनद रहता है ना कि हम गए थे वहां पर। वैसे सावन का ये जो माहौल है, कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं और सावन का पहला सोमवार आएगा जब 3 अगस्त को, तो फिर देखिए कैसी धूम मचती है और फेस्टिवल्स का जो मोड है, पूरा मूड है, वो शुरू हो चुका है। तीज उत्सव होंगे जगह जगह, लेडीज़ की तो बहार है भैया, मेहंदी लगाएंगी, हरी हरी चूड़ियाँ पहनेंगी, साज श्रृंगार करेंगी, और पतियों के जेब पर थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानने का है ना, और सपोर्ट करना इस करने का है कि, और इसके लिए आप बचत करके रखा करिए। देखिए किसी भी वक्त डिमांड आ सकती है, समझ रहे ना, किसी भी वक्त डिमांड आ सकती है चीज़ों की, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बजट प्लान कर लीजिएगा। आज महीने की आखिरी तारीख है, कल पहली तारीख है, तो प्लान कर लीजिए अभी से। फिलहाल ये बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, रहा है बहुत सारे लोगों का, इंडी पॉप म्यूज़िक की जब शुरुआत हुई थी पॉप म्यूज़िक, दूरदर्शन पर ये सब गाने हम लोग देखा करते थे ना, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपकी रेडियो सेट पर। इंजॉय कर रहे हैं आप पॉप टाइम प्रोग्राम अंजू के साथ।

हाँ भाई, परदेसियों को तो आना पड़ेगा. जब सावन का महीना आता है तब तो ज़रूर, मतलब मंथ में एक बार छुट्टी ले लीजिएगा, आ जाइएगा. सावन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो पति पत्नी साथ में मिलकर करते हैं ना. रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू होता है. तो फिर देखिए, वैसे आप लोग सावन का त्यौहार, जो सावन का पूरा महीना है, इसमें क्या कुछ ख़ास करते हैं ये हमें बताइए. देखिए, ईमेल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन सावन में क्या कुछ ख़ास करते हैं ये अगर बताते हैं कोई एक चीज़, एक लाइन में, छोटा सा ईमेल. बहुत लंबी चौड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वक्त बहुत कम होता है और गाने हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुनवाना चाहते हैं ना, क्योंकि ये है आपकी म्यूजिकल धड़कन, लखनऊ की धड़कन, आपका म्यूजिकल हम सफर 100.7 एफएम रेनबो. तो म्यूजिक तो बनता है भाई, और बहुत ज्यादा हम बातें करेंगे तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे जिनको बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिनके लिए म्यूजिक प्रायोरिटी होती है. तो एक अगला गाना आपको सुनवाती हूँ, बहुत बढ़िया सा. लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप मेल कर रहे हैं हमें लगातार. रिंकी पिंकी का मेल आया, संजू जी का मेल आया, संजू देवी जी का, कोमल तिवारी, नीलू शर्मा, सुल्तान रजा और अंसारी शाहनूर और मोहम्मद आसिफ जी, राम राज विकास, रोशनी रावत, मोहम्मद माज, अशोक कुमार, विजय पाल यादव, कमल पांडे, कृष्णकांत सिंह जी, वारिस अली खान जी, मुनेश कुमार राज जी और बाबू अंसारी, रजनीश पासवान. आप सबके मेल्स मुझे मिल चुके हैं, राजकमल यादव जी का भी, और इन्हें एक एक करके शामिल करूंगी. लेकिन हमें मेल कीजिए और ये बताइए सावन में क्या स्पेशल करते हैं, क्या कुछ खास आपके घर में होता है, कुछ स्पेशल अगर अलग तरह की कोई रस्म रवायत हो तो हमें जरूर बताइए. fmakashwani@gmail.com पर. और अब आपको ले चलते हैं हम सीधा राजस्थान.

प्यारा म्यूजिक है ना, मन करता है बस म्यूजिक सुनते रहें, इस तरह के गाने सुनते रहें और झूमते रहें, बस ऐसे ही बने रहें, सुनते रहें 100.7 एफएम रेनबो। वैसे यहाँ पर तो सतरंगी गाने चलते हैं, सतरंगी चैनल है वैसे। और अगर बात की जाए सावन की या किसी भी मौसम की, मेरे लिए तो भाई म्यूजिक तो हर मौसम को खुशनुमा बनाता है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हों, अगर संगीत हमारा साथ हमारे आस पास है, चाहे हम ढोलक पर बजा कर गा रहे हों या फिर हमने प्ले कर रखा हो, सुन रहे हो हम डीजे पर, सुन रहे हो म्यूजिक सिस्टम पर सुन रहे हो, अगर संगीत है तो आप यकीन मानिए हर त्यौहार हर रस्म हमारी और इन्हेंस हो जाती है ना, और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। और जब हम खुद गाते हैं, जैसे कि जब जो रिचुअल्स होते हैं, चाहे मेहंदी लगा रहे हो हाथ में या सावन पर कुछ बना रहे हो स्पेशल, बड़े सारे लोग घरों में तो अलग अलग चीज़ें भी बनती हैं, है ना, खान पान भी एक अलग तरह का हो जाता है हमारे इस मौसम में, तो उस समय भी गुनगुनाते रहते हैं सावन के गीत, भोले बाबा के भजन गुनगुनाते रहते हैं, और मतलब एक अलग तरह का माहौल बन जाता है जहाँ पर म्यूज़िक हमारे आसपास होता है, म्यूज़िक हमारा साथ देता है। और यही खासियत होती है हमारे हिंदुस्तान के हर तीज त्यौहार की, हर फेस्टिवल के लिए गाने बने हुए हैं, हर मौसम के लिए गाने बने हुए हैं। और फिर देखिए जब इस तरह के प्रोग्राम हम लेकर आते हैं पॉप टाइम, जहाँ पर अलग अलग प्रांत के की बोली हम शामिल करते हैं, तब तो भाई मौसम और मूड माहौल पूरा एकदम अलग बन जाता है, क्या कहने। और आप लोगों के जब ईमेल्स आ जाते हैं, जब आपका साथ हमें मिल जाता है, तब तो भाई सोने पर सुहागा हो जाती हैं चीज़ें, है ना। हाँ, तभी तो कहते हैं कि भाई छोटा छोटा मेल करिए ताकि आप सबके मेल्स मैं पढ़ सकूँ। फिलहाल 9:23 का वक्त हो गया है, बड़े सारे ईमेल्स हमारे सामने हैं। संजू देवी जी ने पहले भी मेल किया था और इस समय भी कर रही हैं, बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें आप हमारे लिए लिखकर भेज देती हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मोहम्मद रफ़ी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि है। जी हाँ बिल्कुल, अगले कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और सावन का महीना वैसे ख़ास है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर ये बहुत अच्छे से मनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूछा ना कि क्या स्पेशल होता है आपके यहाँ सावन में ख़ास तौर पर, ये आपको बताना है। अंकित कुमार जी का मेल है, इन्होंने बस जय श्री महाकाल लिखकर भेजा, आपको भी जय श्री महाकाल, कृपा बनी रहे सब पर। और अच्छा, इनका एक और दूसरा मेल है, उसमें भी इन्होंने लिखा है सावन में सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा का इंतज़ार रहता है और हम सभी मंदिर जाते हैं, बिल्कुल जलाभिषेक करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। और आपने हमें बेहट लखनऊ से मेल किया है, कौड़िया मऊ पोस्ट बेहट लखनऊ से, तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आपका मेल मैं देख रही हूँ, हमेशा करते रहेगा इसी तरह।

दे रहेगा। जितेंद्र नामदेव जी, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक, आरोही, सौम्या, सब ने हमें मेल किया है कि नौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से। और नमस्कार अंजू जी, आज पॉप टाइम पर महिला गीत सावन के पवित्र महीने पर बजाया जो भोले को बाबा को समर्पित है, दिल खुश हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ऐसे पॉप टाइम में। आज फ्राइडे है, हम लोग इंडी पॉप और मिक्स्ड म्यूज़िक बजाते हैं, लेकिन देखिए आज सावन का दूसरा दिन है और सावन में पहली बार मेरी मुलाकात आप सबसे हो रही है, तो मैंने कहा ये तो बनता है भाई, बजाना बनता है। और नफी अंसारी जी का मेल पढ़ते हैं, वालेकुम सलाम आपको भी, जिला लखीमपुर खीरी से हैं अंसारी, महेवागंज से आप सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, प्रोग्राम की तारीफ की, आवाज़ की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि हमारी तरफ सावन में झूले पड़ते हैं, हमारी तरफ मेला भी लगता है और जब जाते हैं तो झूला ज़रूर झूलते हैं, हम सबको झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोगों के नाम है, शाजिया, गुलफशा, वकील अहमद और समा अंसारी, नायला, रोशनी, बबीता, सबके नाम आपने लिखकर भेजे हैं। चलिए गाने की बारी आ गई है, सुनवा देती हूँ और उसके बाद आपके सबके मेल्स तो आ ही रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे। ले चलते हैं भैया पंजाबी बीट के बिना। अब क्या समझते हैं, कोई फेस्टिवल पूरा होता है नहीं ना, तो बस सुन लीजिए।

जी जी जी साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे जी, यानी एफएम रेनबो दे नाल रहोगे तो, है ना। तो बस एफएम रेनबो को ट्यूनन करके रखिए, अपने आसपास रखिए, जहां भी रहिए वहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ताकि आवाज आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि अब बारी है ईमेल्स को पढ़ने की और हमारे पास लगातार ईमेल्स आ रहे। और मैंने आपसे जानना चाहा है कि भैया सावन में क्या स्पेशल होता है आपके वहां यहां, जो भी आप कहते हो। और देखिए कुछ मेल्स शुरुआत में आए थे, उनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, उनको भी हम शामिल जरूर करेंगे जो शुरुआत में मेल की थी, किया था जिन्होंने, जब मैंने ये बात आपसे नहीं पूछी थी तब। कोमल तिवारी जी ने गुड इवनिंग भेजा था, रिंकी पिंकी ने भी नमस्कार भेजा है, दिलीप राजमाही, रिंकी पिंकी और जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से ही आप हमें मेल करती रहती हैं। और शैलेश कुमार यानी नीलू शर्मा जी ने भी सभी दोस्तों को नमस्कार भेजा है, है ना। और कहते हैं कि लिखा है कि नमस्कार अंजू दी, जैसे आपका नाम सुना था मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई आज आकाशवाणी कानपुर की। अच्छा, इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, कोई बात नहीं भाई। देखिए बहुत सारी चीज़ें आसपास होती रहती हैं, मौसम बदल रहा है, सावन का महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, हरियाली, साज श्रृंगार, त्यौहार की खुशबू और उत्साह तो लेकर आता है, उल्लास लेकर आता है, लेकिन साथ में बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है ना। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, डबल ख्याल रखने की, है ना, अपने और अपने परिवार का। थैंक यू सो मच। और आप दीपशिखा दीदी को डेडिकेट करना चाहती हैं आज का रजनीगंधा, अरे है ये कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम है। चलिए हम उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सुल्तान रजा जी कैसे हैं आप, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपने हमें मेल किया है। सुल्तान रजा इकबाल, रजा जीशान, अल अफजल, रजा मोनिश, सादिक, मम्मी पापा, पूरा रजा परिवार हमें सुन रहा है। तो बस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए 107 FM रेनबो, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। अंसारी शाह रून नूर साहब का भी मेल आ गया है, ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं। आप सब, आपके साथ हैं फरियाद हुसैन, शकील अहमद, इदृशी, मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजे प्रधान, सब सुन रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बहुत दिनों से आप जुड़े हुए हैं, रोज़ सुनते हैं प्रोग्राम। मोहम्मद आसिफ जी तेलंगाना से सुन रहे हैं और इन्हें गज़लें बहुत अच्छी लगीं, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि FM रेनबो के लिए दो लाइन, अरे दो लाइन नहीं भैया, 26 शब्दों में बात कहिए अपनी पूरी, ठीक है, और उसको भेजिए FM से इश्क 26@gmail.com पर, है ना। सुन रहे हैं कि नहीं, पता तो है ना लोगों को, अरे ना पता हो तो सबको बता दीजिए भाई। FM रेनबो अपना स्थापना दिवस मना रहा है, बर्थडे मनाने वाला है 20 अगस्त 2026 को, और 20 अगस्त सन 2000 से ये सफ़र शुरू हुआ था।

और देखिए कितनी जल्दी हमारा रेनबो 26 साल का हो गया. अरे नजर ना लगे रही किसी को. और देखिए इस मौके पर हम एक कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं अपने लिसनर्स के लिए. तो दो लाइन की जगह 26 शब्दों की प्रैक्टिस करिए. और अगर अभी तक अगर नहीं भेजी है अपनी एंट्री तो देर मत कीजिए, क्योंकि 5 अगस्त लास्ट डेट है, जल्दी से भेज दीजिए. ईमेल आईडी की स्पेलिंग मैं बता देती हूँ. वैसे हम लोग प्रोमो बीच बीच में बजाते रहते, सुन ही लिया होगा आपने, लेकिन मैं आई हूँ तो फिर से दोहरा देती हूँ. FMSEISHQ, दैट इज एफ एम से इश्क. उसके बाद नंबर्स में लिखिएगा 26 यानी 26 और उसके बाद @gmail.com. FM से इश्क 26@gmail.com. और इसे इस मेल आईडी पर आप अपनी कोई भी बात, FM रेनबो से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं रेनबो के लिए, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, 26 शब्द होने चाहिए बस, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है. और उसे भेजना है आपको इसी मेल आईडी पर 5 अगस्त रात 12 बजे से पहले पहले. और भाई आसिफ जी आपकी का मेल पढ़ लिया. रामराज जी ने भी हमें मेल किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से. रामराज, राजू भानु और जुर्री यादव, मिर्जा, बहुत सारे नाम है भाई. ये जो नाम वाला

लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं रेनबो के लिए, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, 26 शब्द होने चाहिए बस, ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है? और उसे भेजना है आपको इसी मेल आईडी पर 5 अगस्त रात 12 बजे से पहले पहले। और भाई आसिफ जी आपकी का मेल पढ़ लिया, रामराज जी ने भी हमें मेल किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु और झुर्री यादव मिर्जा, बहुत सारे नाम है भाई, ये जो नाम वाला जो क्या करूं मैं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सबको हमारी तरफ से नमस्कार, और आपने मेल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बहुत सारे लिस्ट में मत भेजा करिए प्लीज़, आप लोग सभी दोस्त बस इतना लिख दिया करिए, सभी साथी, ठीक है? उसमें सब इंक्लूडेड होते हैं भाई। देखिए किसी का नाम आप ही भूल गए तो वो नाराज़ हो जाएगा आपसे। अब ये लीजिए, दिन भर चाहे रहियो हमार पिया हैं, और ये जो है गाने की फरमाइश हमें भेज दी है विकास जी ने, सुगंध माटी की मैं सुनवाएंगे आपको, ठीक है? वैसे जो कल रत्ना जी आएंगी सुगंध माटी के प्रोग्राम में, है ना, और फूलमती भौजी भी आएंगी, तब ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आपको ये गाना सुनवा देंगी वो, ठीक है? वैसे ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है फरमाइशी की, तो कहा ठीक विकास जी, आप तो पुराने, आपको तो सब पता है भाई, और उन्नाव से हमें सुन रहे हैं, कार्यक्रम की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी है भैया गाने की, बहुत हो गई बातें, है ना, बहुत सारे ईमेल्स हैं उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये गाना, इस पर तो बहुत झूम के नाचे हम लोग, और आज भी नाचते हैं बहुत सारे लोग, है ना। फाल्गुनी पाठक को नहीं सुना तो क्या सुना सावन में आपने, बताइए।

भैया हम तो चिट्ठी कैसे बात, जब चिट्ठी पत्री का जमाना ही चला गया, मतलब बताइए ईमेल आ जाते हैं बस, या खट से कॉल कर दिया जाता है, व्हाट्सएप या लेते हैं लोग, इसीलिए चिट्ठी पत्री का तो खैर अब पुराना दौर हो गया, लेकिन अभी भी लोग चिट्ठियां लिखते हैं। जब राखी भेजनी होती है तो ऑनलाइन ना भेज के अपने हाथों से भेजिएगा। देखिए याद दिला दिया हमने, 28 अगस्त को है राखी, है ना, तो अपने हाथों से राखी खरीदिएगा पसंद से अपने भैया के लिए, और अगर भैया दूर रहते हैं ना तो उनको दूर भेजा जाता है ना लिफाफे में करके, हल्दी कुमकुम लगा के, प्रार्थना करके, उनकी सलामती की दुआ करके, अपने हाथ से जब लिखकर आप कुछ संदेश साथ में डालेंगी ना तो और अच्छा लगेगा। तो देखिए सारी बहनों को एक मैसेज दे दिया मैंने लगे हाथ, हम बहुत सारा मतलब चीज़ें समेटने की कोशिश करते हैं ना, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। वैसे पॉप टाइम में एक रंग बिरंगा मैसेज आ गया हमारे पास, और ये भेजा है हमें गाँव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, और रहने वाली हैं यहाँ की और चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है, नाम है इनका रोशनी रावत। तो ये हमेशा रोशनी फैलाती हुई आ जाती है हमारे प्रोग्राम्स में, अलग अलग तरीके से मेल करती हैं, और इन्होंने गुड इवनिंग भेजा है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम में धमाल कमाल मचा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, रजनीगंधा का इंतजार कर रही हैं, 12:02 तक ये साथ रहेंगी और जब तक आप घर नहीं पहुँच जाएंगी तब तक हम जागते रहेंगे, ऐसा लिखा है इन्होंने जी 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद आप सो जाइएगा। अच्छा इन्होंने लिखा है कि मैम जी मेरे मन में एक सवाल बहुत दिनों से खटक रहा है, पूछ लूँ? तो भैया बता ही देते हैं, इन्होंने पूछा है हमसे कि आप खाना खाकर आती हैं या घर जाकर खाती हैं? भैया देखिए बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हम डिनर थोड़ा जल्दी करते हैं, 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है तो हम खाना खाकर आते हैं, है ना, यहाँ पर 7:15 तक हम लोग आते हैं तो हम खाना खाकर ही आते हैं, शाम को 6 बजे ही खा लिया था आज भी हमने, है ना, और हमें भूख भी नहीं लगती क्योंकि आप लोगों के साथ इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आप लोग लिखकर भेजते हैं ना, उसी से हमारा पेट भर जाता है, मतलब गले तक ओवरफ्लो हो जाता है, क्या बताऊँ, बहुत सारा प्यार और शुक्रिया रोशनी। मोहम्मद माज जी का भी मेल है और शाहपुर बाराबंकी से मेल किया है इन्होंने, बहुत सारा प्यार, आसिफ अंसारी और तेलंगाना से सुन रहे हैं हैदराबाद से, और इन्होंने फ़ोन करके बताया कि रजनीगंधा में हम रहेंगे तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह रात 12 बजे तक हमारा साथ निभाते रहेगा। अशोक कुमार जी कैसे हैं आप, रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से हमें सुन रहे हैं, गज़लें अच्छी लगी, पॉप टाइम में भी गीत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल रजनीगंधा ज़रूर सुनेंगे, बैलिस्टर राज चाचा भी साथ में हैं। तो और इसके बाद हमारे सामने मेल है विजयपाल यादव जी का, और कहते हैं कि कुछ आवाज़ें समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि हर गुजरते साल के साथ और भी अनमोल होती जाती हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ भी ऐसी एक अमर धरोहर है, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत सारी बातें होंगी अगले प्रोग्राम में उनके बारे में, थैंक यू सो मच। और सावन के महीने में पहली बार हम पॉप टाइम में आए हैं इसके लिए इन्होंने बधाई दी है, बहुत शुक्रिया। ललहुआ खीरी से आप हमें सुन रहे हैं, और कमल पांडे जी ने भी नमस्कार भेजा है, ग्राम मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से हमारे साथ बने हुए हैं, कार्यक्रम की तारीफ की है आपने जी, हम जल्दी जल्दी आते हैं, हम सुबह आ जाते हैं ना इसलिए आप रात के प्रोग्राम सुनते हैं, क्या बताएं। वारिस जी रजनीगंधा के इंतजार में बड़ी फुर्सत में बैठे हैं, थैंक यू सो मच, बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, 8 बजे से हमें सुन रहे हैं। कृष्णकांत जी कैसे हैं आप, सावन माह के प्रथम आगमन पर, अच्छा सावन माह का प्रथम दिन तो कल था, प्रथम आगमन हमारा आज हुआ है, इसके लिए स्वागत किया है आपने और हमारे अलग अंदाज की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही हमारे साथ बने रही, हैप्पी सावन टू यू टू। कैसरगंज बहराइच से आप हमें सुन रहे हैं, और देखिए स्पीड में नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे मेल्स और बाकी सारी बातें छूट जाएंगी, है ना। राजकमल यादव जी क्या लिख रहे हैं, ये ब्लॉक ग्राम बरैया पोस्ट ब्लॉक सूरतगंज बाराबंकी से, और बम भोले दीदी जी कैसी हैं, बहुत बढ़िया भैया, कहते हमारा 3 साल का बेटा सावन कुमार यादव डांस करने लग गया, वाह क्या बात है, नाम बड़ा अच्छा रखा आपने, उनका नाम सावन में ही हुए थे क्या, वो आपने सावन ही रख दिया। चलिए बहुत सारे और भी लोग इनके साथ सुन रहे हैं, मुनेश कुमार जी क्या लिखते हैं, अच्छा इन्होंने ये मेल इससे पहले लिखा था, खैर बहुत सारी चीज़ें जी, मैं प्रीति नहीं हूँ, मैं अंजू हूँ, अच्छा समझ गए, और इन्होंने कहा कि कोई जलाभिषेक करता है, कोई कांवड़ यात्रा, कोई पैदल जाता है, कुछ भक्त हर सोमवार व्रत रखकर पूजा करते हैं, कुछ लोग रोज़, देखिए बाकी सब लोग क्या करते हैं ये नहीं, मैंने पूछा था कि आप क्या करते हैं सावन माह में, अगर कुछ स्पेशल आपके यहाँ होता हो तो वो हमें बताइए।

वैसे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है. ये बात तो सही कही है आपने. और हरियाली भी छा जाती है, साज श्रृंगार करती हैं, चूड़ी भी जिद पे आ जाती है, पायल भी शोर मचाती है, फिर देखिए क्या झूम के डांस होता है. तीज उत्सव होते हैं बहुत सारे, सावन उत्सव होते हैं. अमन नवाब कैसी हैं? और अच्छा, इन्होंने लिखा वहाँ दीदी गोला गोकर्णनाथ गई थी छोटी काशी, हमें बता दिया होता हम भी हो लेते आपके साथ. अच्छा, इनका घर है गोला में. खैर, ये जो इन्होंने लिखा है कि सावन में जो खास हमेशा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि सावन में मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है. हरी सावन की चूड़ियाँ पहनती हैं, बहुत खूबसूरत काम करती हैं आप. और रजनीगंधा लखनऊ की शाम, आरजे अंजू दीदी की जादुई आवाज़ और रफ़ी साहब की यादें हैं. क्या लिख डाला आपने, थैंक यू सो मच. बेसब्री से इंतज़ार है, मुझे भी बहुत इंतज़ार है. बाबू अंसारी जी भी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. हनहन हुआ लग रहा है कार्यक्रम, अरे वाह क्या बात है. रजनीश पासवान जी का भी मेल आया है, जस्ट ट्यून, बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है, रजनीगंधा ज़रूर सुनूंगा. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बस आप लोग साथ रहते हैं तो हमारा जोश बना रहता है. फिलहाल एक गाना बजा देते हैं. भैया साज श्रृंगार की बात हुई है तो सुरमे रानी का है पीछे, रहेगी है ना, सुनिए.

चाहिदा भैया, हमें तो बहुत कुछ चाहिए, हम कैसे कह दें कि हमें की चाहिदा। वैसे ये बात है, जब अपनों का साथ मिल जाता है ना तो सारे फेस्टिवल कंप्लीट हो जाते हैं ना। मतलब कोई कहाँ हो, कोई कहाँ हो, कैसे हो सकता है भाई, फिर मज़ा नहीं आता, अधूरा अधूरा सा लगता है ना। हो लगता है कि नहीं भाई? मुझे तो लगता है कि बहुत इनकम्प्लीट सा फील होता है अगर सारे फैमिली मेम्बर्स साथ नहीं होते हैं तो। और वैसे अब मेल अगर देखें तो भाई क्या कहूँ मैं, इतने सारे ईमेल्स हैं। गुंडवा पट्टी अतरौली संडीला हरदोई से नमस्ते भेजा है हमें वीरपाल सिंह जी ने, और उन्होंने लिखा है कि सावन में हमारे यहाँ पेड़ पर झूला डालते हैं और सभी लोग झूलते हैं और कजरी गाते हैं। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत मौसम होता है ना।

और अच्छा लगता है जब साथ मिलकर कजरी गाते हैं, और हम लोग यहाँ से कजरी सुनाते हैं ना सुगंध माटी की प्रोग्राम में। रामराज जी, आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं और आपने दोबारा मेल किया है, और कहते हैं कि सावन में हमारे यहाँ बालेश्वर बाबा का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। क्या बात है, सब लोग मिलकर दर्शन करने जाइए, खूब आशीर्वाद मिले सबको भोले बाबा का। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं कि खरगोन में शिव डोला निकलता है, जो भारत का सबसे बड़ा शिव डोला होता है। क्या बात है, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश के अलग अलग प्रांत में, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, जो वाकई एक विरासत है, और उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। वारिस अली जी कहते हैं कि सावन माह में हम गरीबों को अन्न या पैसा देते हैं, जिसे हमने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, प्रकृति की रक्षा करने के लिए पौधों की देखभाल करते हैं, पौधे लगाते भी होंगे, है ना। संजय नगर ऐशबाग से आपका ईमेल, बहुत बहुत शुक्रिया। और नजीम रायन जी दिल्ली में हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब आपको भी, इंद्रलोक कॉलोनी में। वीरपाल सिंह जी, आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ। नहीं है हरी हरी पर क्या लिखा है आपने, अच्छा बहुत सारी और बातें लिखी हैं, अब बहुत फॉन्ट बहुत छोटा सा है, क्या करूँ, चश्मे का नंबर बढ़ गया लग रहा है हमारा, अरे समझ में नहीं आ रहा। खैर, बहुत खुशी की बात है कि आपका ईमेल आया, और बस अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिखकर भेजते रहिए। मनीष कुमार राज जी ने भी हमें मेल किया है, भाई आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ, सावन का महीना आते ही भक्ति में माहौल हो जाता है। बाबू अंसारी जी कह रहे हैं हमारे यहाँ सावन में कल भी मेला था, जो सिर्फ सावन में लगता है, अच्छा क्या बात है। और इसके अलावा सुशील कुमार यादव जी, प्रोग्राम की तारीफ की है आपने, निकट सरयू रेलवे स्टेशन गोंडा से आप हमें सुन रहे हैं। और आसिफ जी ने कहा सावन में अपने खेत में पेड़ जरूर लगाते हैं, गांव में नहीं होते हैं तो पापा लगाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। महेंद्र दीपन जी क्या लिखते हैं, इन्होंने कहा है कि बहुत दिनों बाद नाइट में प्रोग्राम, अरे बहुत दिनों, पिछले शुक्रवार को तो हम आए थे मनोज कुमार साहब पर स्पेशल रजनीगंधा लेकर, है ना, और सावन का माहौल बनाकर गए थे, राजस्थानी गाने सुनाए थे, कैसे भूल जाते, इतनी मतलब मेमोरी का क्या करें, बादाम खाया करिए आप, है ना। अच्छा कहते हैं कि बहुत सारी तारीफें आपने लिख दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और रजनीगंधा का इंतज़ार मुझे भी है, और बेहतरीन गीतों से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए इन्होंने पोस्टर बना बना के भेज दिया हमको यही से, बहुत धन्यवाद, इतना एफर्ट आप करते हैं। शालिनी जी कैसी हैं, लालगंज रायबरेली से प्रोग्राम की तारीफ लिख दी है इन्होंने, बस और कुछ नहीं लिखा है, बहुत शुक्रिया। आरती मिश्रा जी ने अटकोहना लखीमपुर खीरी से हमें मेल किया है, और लिखती हैं कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आरती, आप कैसी हैं, होप ऑल इज़ वेल विद यू, और पंजाबी बीट्स सॉन्ग सेलेक्शन वाओ, एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज, थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी सावन आरती। हिस्टोरिया यानी ये ओम जी हैं, मेल कर रहे हैं, विशेष रजनीगंधा का इंतजार कर रहे हैं। सावन में तो मैं दाढ़ी रखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रख नहीं पाता हूँ, क्लीन शेव हो जाता हूँ, ये अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनका अलग ही हिसाब किताब है भैया, ये कौन सी स्पेशल चीज़ हो गई बताइए, ये तो घर की खेती है, कभी भी बढ़ा लीजिए, कभी भी कटा लीजिए। राजकमल यादव जी, ग्राम बरैया पोस्ट ब्लॉक सूरतगंज बाराबंकी से आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ, और इन्होंने कहा कि मैम जी सावन में ही हमारे बेटे का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम सावन कुमार यादव रखा, 3 साल से बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। क्या बात है, बहुत सारा आशीर्वाद हमारी टीम की ओर से भी सावन जी को, छोटे सावन जी को। और देखिए ये है, मेरा नाम लवलेश कुमार जी, रायबरेली से प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स इन्होंने भी लिख कर भेजी है, बहुत तारीफ की प्रोग्राम की। पिंकी जी कह रही हैं आपको आज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, हरी हरी पत्तियाँ भेज दी हैं इन्होंने, और इन्होंने कहा दुखी हूं अब क्या, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तभी, और रिचा हम साथ में शो करेंगे। अरे भाई देखिए जल्दी आपका इंतजार खत्म होगा, कान तरस गए हैं। अच्छा अंजू और रिचा को साथ में सुने हुए। बाबू अंसारी जी, कोमल तिवारी जी, सबके मेल्स आ चुके हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं मेल्स पढ़ूं, एक छोटा सा गाना सुनवा दूं कि नहीं सुनवा दूं बताओ भाई, गाने तो सुनने ही हैं, गानों के बिना कैसे पूरा होगा हमारा ये प्रोग्राम है। तो भाई ये जो बहुत सुपर डुपर हिट ट्रैक है, एक बहुत ही आइकॉनिक सिंगर है शुभा मुदगल जी, उनकी आवाज़ में सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है, अरे चलिए सुना देते हैं।

बिल्कुल, बस उम्मीद तो ये है कि सावन ऐसे बरसे कि हर दिल भीग जाए, तन मन और धरती अंबर सब कुछ भीगे और जमकर बारिश हो और हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। सबसे पहले तो मैं यही दुआ मांगती हूँ हर बार। कोमल तिवारी जी लिखती हैं कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो हमने जब पूछा, उन्होंने कहा मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। क्या क्या लिख कर भेजते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। और बाबू अंसारी जी लिखते हैं कि प्रोग्राम की तारीफ की है, उन्होंने चाय भेजी हमारे लिए। वीरपाल सिंह जी आपका मेल शामिल कर चुकी हूँ, थम जाइए। तेज बहादुर यादव जी कहते हैं कि बिजी हैं लेकिन रात तक हमारे साथ बने रहेंगे। विशेष सिंह जी का मेल आया है पुलिस चौकी के पास फतेहपुर और जिला बाराबंकी से, देवा महादेवा की भूमि से प्रोग्राम की तारीफ की है, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और शैलेश कुमार यानी नीरू शर्मा लिखती हैं कि डलवा बनाती हैं महिलाएं, साथ में बैठकर मेहंदी लगाना, गीत गाना, झूला झूलना, ये सब चलता है, बहुत सारी परंपराएं हैं जो निभाई जाती हैं इनकी तरफ। और साथ ही साथ आकाश कुमार आंचल वर्मा कहती हैं कि प्यारी रौनक मैम जी, जिस दिन रजनीगंधा स्पेशल होता है उस दिन बहुत देर में 10 बजते, नहीं नहीं जल्दी, देखिए 9:57 ऑलरेडी हो चुके हैं और हम क्या ही करें, क्या सुनाएं आपको क्या ना सुनाएं। बस इतना कहूँगी कि भाई जब आप सब लोग मेल करते हैं ना तो कोशिश ये रहती है कि भाई इतने प्यार से आपने हमें मेल भेजा है तो उसे भी शामिल कर लूँ। राजेश कुमार विद्यार्थी जी भी सुपर फास्ट दीदी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। कुरसठ हरदोई से अजय सिंह कुमार जी का भी मेल है और इन्होंने हमें मेल किया है। अच्छा बिल्कुल, मैं रात में आती हूँ तो अगले दिन सुगंध माटी की मैं नहीं आती हूँ, अच्छा ये इनको दुख होता है, इस चीज़ की तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, सुगंध माटी की मैं बहुत अच्छे कलाकार कल आपको मिलने वाले हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा बहुत सारे प्यार से आप सबने हमें मेल किया है और बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए, लेकिन चलते चलते एक बहुत बढ़िया गाना, ये देखिए मेहंदी चूड़ी कंगन साज श्रृंगार ये सब नहीं होता ना तो सावन अधूरा लगता है, और परंपराएं रीति रिवाज ये सब, हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा इतनी खूबसूरत है, इसको सहेज कर रखिए, अपनी विरासत को संभाल कर रखिए और आपकी विरासत को संजोने में आपका साथ निभाता है 100.7 FM रेनबो। अगला प्रोग्राम है संगीत की दुनिया की महान विरासत मोहम्मद रफ़ी साहब को डेडिकेटेड, सुनिएगा ज़रूर आज का स्पेशल रजनीगंधा मोहम्मद रफ़ी साहब की स्मृति दिवस पर। मैं अंजू शुक्ला आपके साथ रहूंगी रात 12 बजे तक, स्टे ट्यून्ड। पॉप टाइम में आज बस इतना ही, आप सब हमारे साथ जुड़े मिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, स्टे ट्यून्ड।

पर उच्च स्तरीय बैठक में हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। यूपी रेरा ने वाराणसी मंडल के गृह क्रेताओं, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सुरक्षित निवेश रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों तथा शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी दी गई। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि सुरक्षित निवेश के लिए उपभोक्ताओं का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने निवेश से पहले परियोजना का रेरा पंजीकरण, स्वीकृत नक्शा, भूमि स्वामित्व, निर्माण प्रगति और प्रमोटर का रिकॉर्ड अवश्य जांचने की सलाह दी है। बलरामपुर में यातायात निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 पहिया इंटरसेप्टर वाहनों को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इंटरसेप्टर वाहन का उद्देश्य तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाना और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकना है। वाहन के माध्यम से यातायात नियमों का पालन न करने वाले, अधिक तेज गति से चलने वाले वाहनों, रैश ड्राइविंग, स्टंट बाइकिंग पर अंकुश लगाना एवं इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा में 76,000 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने श्रेणी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थी अपना परिणाम जानने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि अंकित कर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है रजनीगंधा।

कभी बरछी कभी कटार था वो, गीत संगीत की बहार था वो, इश्क और प्रेम उसका था पैगाम, दिल की दुनिया का राजदार था वो। मुस्कुराती नजर चुराए हुए, चल दिया हक से लौ लगाए हुए, हश्र तक लोग गाए जाएंगे जो तराने उसके गाए हुए, महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज़ बनी जादुई फरिश्ते वाली आवाज़, एक ऐसे गायक जिनके अंदाज बने हर अभिनेता की आवाज़, एक ऐसे सुरों के महाज्ञानी जो आज के गायकों के भी हैं आदर्श, सुरों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान की संगीत में धड़कन शहनशाह तरन्नुम, मोहम्मद रफ़ी साहब। नमस्कार, मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, प्रोग्राम रजनीगंधा। आज रफ़ी साहब के याद के दिन पर उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़े किस्से और उन्हीं की फिल्मों के गाने उनकी अमर आवाज़ में इस प्रोग्राम रजनीगंधा के ज़रिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके याद के दिन पे। आज की ये रात केवल गीतों की रात नहीं है, ये उन सुरों को

0: नमन करने की रात है, जिन्होंने करोड़ों दिलों की धड़कनों को अपनी आवाज़ दी, वो आवाज़ जो इबादत भी थी, मोहब्बत भी थी और दर्द भी थी, साथ साथ दुआ भी थी। लेकिन आज के इस विशेष अंक की शुरुआत हम एक ऐसे साहित्य मनीषी को नमन करके भी करेंगे जिनकी कलम ने भारतीय समाज की आत्मा को शब्द दिए। आज महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती भी है। प्रेमचंद जी कहा करते थे कि साहित्य वही है जो मनुष्य में संवेदना, करुणा और मानवता को जगाए। कितनी अद्भुत बात है ना, यही संवेदना हमें प्रेमचंद जी की कहानियों में मिलती है और यही संवेदना हमें मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में भी सुनाई पड़ती है। एक ने शब्दों से इंसानियत को जीवित रखा और दूसरे ने सुरों से साहित्य की सेवा की, साथ साथ सुरों की सेवा की। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को आज उनकी जयंती पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपको वो गीत सुनवाती हूँ जो उनकी गोदान पर बना था। फिल्म का नाम था गोदान, पर्दे पर नजर आए थे महमूद और इस गीत को आवाज दी रफी साहब ने।
1: अरे पुरवा के झोंकवा में

माटी के सपूत मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी जयंती पर नमन करते हैं, एफएम रेनबो की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रफी साहब की आवाज में ये गीत कितना सुंदर लग रहा था। गांव देश का माहौल, हिंदुस्तान की संस्कृति, मानो सादगी तो रची बसी थी उनमें। बुलंद शख्सियत रखते थे वो, लेकिन उतनी ही सादगी से भरी उनकी जिंदगी भी रही। दोस्तों, आवाज़ें बहुत सी होती हैं, कुछ कानों तक पहुंचती हैं, कुछ दिल तक, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की सरहदें लांघकर रूह में उतर जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ एक ऐसी ही नेमत है। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि हर एहसास को अपनी आवाज़ दी। मोहब्बत को, इबादत को, दर्द को, हंसी को, ज़िंदगी को, ज़िंदगी के हर रंग को।

0: रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। जगह थी ज़िला अमृतसर और वहाँ पर मजीठा नगर के पास एक गांव कोटला सुल्तान में। पिता का नाम हाजी अली और माँ अल्लाह रखी। 8 भाई बहनों में से रफ़ी साहब एक थे। सभी उन्हें प्यार से फीको बुलाया करते थे। रफ़ी साहब की पढ़ाई गांव में हुई और पढ़ाई में कुछ खास मन लगता नहीं था। गायकी का शौक अचानक ही पैदा हुआ, कैसे चलिए सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब की ही ज़बानी।
1: सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ, उसके बाद हमने लाहौर चले गए। लाहौर से 1942 में मैं बम्बई आ गया। मेरी तालीम ज़्यादातर घर पे हुई क्योंकि मुझे ज़्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। गाने का शौक पैदा ऐसा हुआ जब मेरी उम्र 10 साल की थी, तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था, तो वो गाकर पैसा मांगता था। तो जब गाता था वो, तो उसकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जाना चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता था। वो पंजाबी में है, मैं आपको सुनाता हूँ उसके बोल।

0: इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं जहां जहां जाता था उसके पीछे पीछे पीछे पीछे उसको देख देख के मुझे गाने का शौक इतना बड़ा था।
1: खेदन दे दिन चार माए, खेदन दे दिन चार, यही गीत गाते गाते रफ़ी साहब उस फ़कीर के पीछे पीछे घुमा करते थे। आपने उन्हीं की आवाज़ में ये बात सुनी, और ये जो अंश आपने सुना वो बीबीसी आर्काइव के एक हिंदी इंटरव्यू के अंश थे, जो रफ़ी साहब का इंटरव्यू था। दोस्तों, रफ़ी साहब यूं ही गुनगुनाते गुनगुनाते फ़कीर के पीछे घुमा करते थे, और बस ऐसे ही गुनगुनाते गुनगुनाते उनकी आवाज़ में निखार आने लगा। नन्हे से मोहम्मद रफ़ी को लोग सुनने के लिए आतुर हो जाते थे। सारे गांव वाले रुक रुक कर नन्हे से रफ़ी को सुना करते थे, लेकिन रफ़ी साहब के पिता गाने के सख्त खिलाफ थे। उनके वहां गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था, और इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब अपने पिता के सामने कभी भी नहीं गाते थे। साल 1935 में रफ़ी साहब का पूरा परिवार रोज़गार के सिलसिले में गाँव से लाहौर की तरफ आ गया और वहीं पर बस गया। वहीं पर भाटी गेट न्यू मोहल्ला में एक हेयर कटिंग की दुकान खोली गई, जिसे संभालने की जिम्मेदारी मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई मोहम्मद दीन को मिली। रफ़ी साहब भी कभी कभी भाई की मदद के लिए भेजे जाते थे। फिर क्या, रफ़ी साहब को वहाँ गाना गाने की पूरी आज़ादी मिल जाती थी, क्योंकि पिताजी वहाँ नहीं होते थे। रफ़ी अपना गाना गुनगुनाते और काम किया करते थे। धीरे धीरे दुकान पर आने वालों को भी रफ़ी साहब का गाना बहुत भाने लगा। फिर क्या, फरमाइशों का दौर चलने लगा, और दुकान पर जो भी आता वो रफ़ी के गाए हुए गीत सुनकर बहुत खुश हो जाता था और कहता था कि भाई इस लड़के में कोई तो बात है, और कोई बात वही बात जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया। एक ऐसी आवाज़ दुनिया के सामने आने वाली थी जिसने सबको अपना बना लिया, बस सिर्फ़ और सिर्फ मौसीकी के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

दोस्तों, जमाने में बाकी किसी गायक की तरह रफ़ी साहब भी केएल सहगल साहब के दीवाने थे। उनके गीत गुनगुनाया करते थे अक्सर। और एक बार जब उन्हें पता चला कि केएल सहगल साहब आकाशवाणी लाहौर आए हुए हैं और वहाँ कार्यक्रम में अपने गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, बस फिर क्या था, उन्होंने जिद पकड़ ली और अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे ये कार्यक्रम देखने जाना है। बड़े भाई मोहम्मद रफ़ी को लेकर कार्यक्रम में पहुँचे। कार्यक्रम के दौरान अचानक लाइट चली गई और तब सहगल साहब ने कहा कि अब मैं गीत नहीं गाऊंगा, जब लाइट आएगी तभी गाऊंगा। अब ऐसे में सहगल साहब का गाना सुनने आए लोग शोर मचाने लग गए। भाई, ऑडियंस कितनी देर तक इंतज़ार करती है ना। बड़े भाई मोहम्मद दीन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऑर्गेनाइजर्स से कहा कि जब तक लाइट नहीं आ जाती है तब तक आप क्यों ना मेरे भाई से गाना गवा लीजिए, बहुत अच्छा गाता है ये। इस तरह पहली बार किसी बड़े मंच पर रफ़ी साहब को गाना गाने का मौका मिला। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी ने गाना शुरू किया, उस भीड़ का शोर तालियों की गड़गड़ाहट में तब्दील हो गया। रफ़ी साहब का गाना सुनकर सहगल साहब भी बहुत खुश हुए और छोटे से मोहम्मद रफ़ी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। और उस वक्त वहाँ एक और शख्स मौजूद था जिसकी उंगली पकड़कर छोटे से मोहम्मद रफ़ी संगीत की दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रहे थे। कौन था वो शख्स, चलिए बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले उन्हीं की आवाज़ में एक और बहुत ही खूबसूरत नजराना।

0: आवाज़ें ऐसी, काश सौ सौ बार जन्म ले और हर बार रफ़ी साहब के रूप में ही जन्म ले ये आवाज़। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे लाहौर के मंच पर छोटे से मोहम्मद रफ़ी का गाना। जब मोहम्मद रफ़ी गा रहे थे तो उस समय सहगल साहब भी उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उस वक्त वहाँ पर प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को सुना और वहीं का वहीं रफ़ी साहब को एक गाना गाने का ऑफ़र दे दिया। डायरेक्टर श्याम सुंदर के निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी साहब ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच में जीनत बेगम के साथ एक गीत गाया और वो रफ़ी साहब का पहला गीत था। बोल थे सोनिए नी हीरिए नी, और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 1944 में। और अब रेडियो पर भी मोहम्मद रफ़ी का गाना गाने के लिए उन्हें इनवाइट कर लिया गया था। कौन जानता था कि ये लड़का जो आज यहाँ गा रहा है, आने वाले वक्त में आकाशवाणी और सभी रेडियो स्टेशंस पर, सभी चैनल्स पर सिर्फ इन्हीं के गीत बजा करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर लाहौर में ही एक संगीत प्रेमी का प्रोग्राम था, एक संगीत का प्रोग्राम था और रफ़ी साहब का वहाँ पर जाना हुआ। और वहाँ उस दिन मशहूर फनकार नज़ीर और स्वर्णलता भी आए हुए थे। उनकी आवाज़ में उन्हें एक अलग सी खनक, एक अलग सा आकर्षण लगा और इतनी पसंद आई वो आवाज़, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ उन फनकारों को, कि लैला मजनू फिल्म में गीत गाने के लिए ऑफ़र दे दिया रफ़ी साहब को। लेकिन रफ़ी साहब के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पूछिए क्या? वो इस पेशकश को इसलिए नहीं कबूल कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वालिद साहब, यानी जिन्हें प्यार से मियाँ जी कहकर बुलाया जाता था, उनको गाना गाना पसंद नहीं था। रफ़ी साहब ने बड़ी सादगी से नज़ीर को कह दिया कि अगर आप मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लें तो मैं आपकी फ़िल्म में गाना गा सकता हूँ। फिर तब जब पिताजी से पूछा गया, वालिद साहब से पूछा गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मगर यहाँ भी बड़े भाई मोहम्मद दीन साथ आए और उन्होंने न जाने कैसे पिताजी को मना लिया और उनसे गाना गाने के लिए हाँ करवा दी। और फिर मजनू की, यानी नज़ीर की आवाज़ बने मोहम्मद रफ़ी साहब। फिल्म थी लैला मजनू, जो रिलीज़ हुई थी 1945 में। और ख़ास बात ये भी कि इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब खुद फिल्म के पर्दे पर भी नज़र आए थे गाना गाते हुए। अच्छा, रफ़ी साहब के वालिद साहब का जिक्र हुआ है तो आपको सुनवाते हैं कि उन्हें जब गीत गाना पसंद नहीं था, रफ़ी साहब का गाना गाना उन्हें पसंद नहीं था, तो पूछा गया कि भाई रफ़ी साहब पिताजी कैसे थे, क्यों मना करते थे, तो क्या कहते हैं वो?
1: अगर ये तो मत पूछिए, ये तो इतने खिलाफ थे, कभी तो ऐसा था काम को मारते भी थे, इतने खिलाफ थे गाने के। पर फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई।
0: और इस जीत में कहीं ना कहीं बड़े भाई मोहम्मद दीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उन्हें शुक्रिया करते हैं कि उनकी वजह से रफ़ी साहब हमें मिले।

0: दोस्तों, बड़े भाई मोहम्मद दीन ने रफ़ी की पूरी मदद की। संगीत की कोई भी महफिल आसपास कहीं भी जमती हो, वहाँ पर वो अपने भाई को यानी मोहम्मद रफ़ी को लेकर ज़रूर जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लाहौर में ही अपने दोस्त अब्दुल हमीद की मदद से बरकत अली खान और फिर अब्दुल वाहिद खान से मोहम्मद रफ़ी साहब को संगीत की शिक्षा भी दिलवाई। रफ़ी साहब और संगीतकार नौशाद साहब की बात करते हैं। दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी के प्रति अपने लगाव को बहुत बार कुछ शेरों और नज़मों के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए, नौशाद साहब की ही आवाज़ में सुनवाती हूँ क्या कहते हैं वो रफ़ी के लिए।
1: गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।
0: बिल्कुल, मौसीकी को मोहम्मद रफ़ी साहब पर, बल्कि हिंदुस्तानी संगीत ही नहीं, दुनिया भर के संगीत जगत को मोहम्मद रफ़ी साहब पर नाज है। दोस्तों, 70 के दशक में नौशाद ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बड़े से बड़े गायक को सुरों से हटते हुए देखा है। एक तन्हा मोहम्मद रफ़ी है जिनको कभी सुरों से हटते हुए नहीं देखा। इन दोनों ने कुल 41 फिल्मों में काम किया। एक बार एक दूसरे रेडियो इंटरव्यू में नौशाद साहब से पूछा गया था कि आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी संगीत रचना करनी होगी तो आप क्या करेंगे। नौशाद साहब का जवाब क्या था मालूम है? कहते, रफ़ी और मैं हमेशा एक हुआ करते थे। उनके जाने के

0: बाद मैं सिर्फ 50% बचा रह गया। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो रफ़ी को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए भेज दे, जी हाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए, ताकि मैं अपनी सबसे बेहतरीन रचना बना सकूं, क्योंकि वो तो रफ़ी साहब के बिना संभव नहीं है।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

विभाजन के सदमे से उभर ही रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और इस मौके पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी को हुस्न राम भगत राम ने संगीत में ढाला था और उसको स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। उनके करियर का शुरुआती दौर था और इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ख़ास तौर पर मोहम्मद रफ़ी को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। गीत सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। भारत की आज़ादी की पहली वर्षगांठ पर नेहरू ने रफ़ी को चांदी का एक मेडल भेंट किया था। सिर्फ 24 साल के मोहम्मद रफ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। उस गीत को पूरे भारत में बहुत सराहा गया और मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी फिर पहले जैसी नहीं रही। वो सितारा जो आसमान में आज भी चमक रहा है अपने गीतों के ज़रिए, उसने शुरुआत कर दी थी उसी वक्त अपना एक नया आसमान बना लिया था। उनकी आवाज़ में बहुत सारे गीत हमने सुने हैं, लेकिन जब वतन की बात आती है तो वतन पर मर मिटने वाले नौजवानों को जब उन्होंने प्लेबैक दिया पर्दे पर, उनकी आवाज़ बने तो मानो एक ऐसा जज्बा जागा लोगों में कि हाँ, एक ऐसा क्रांतिकारी गा रहा है, एक ऐसा महान भारत माता का सपूत गा रहा है जो आवाज़ सीधा दिल से निकल रही है और हर देशवासी के दिल में उतर रही है। एक छोटी सी झलक सुनाती हूँ आपको उनके गाए हुए देशभक्ति गीतों की।

0: यही संदेश दिया करते थे और वास्तव में वो भी अपने देश से बहुत प्यार करते थे। हर गीत को उन्होंने महसूस करके गाया और तभी वो जज्बा, वो आवाज़ सीधा हमारी रूह तक पहुंची, क्योंकि वो रूह से गाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब मुंबई आए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।
1: दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा

पर्दे पर जॉनी वॉकर साहब को उन्होंने प्लेबैक किया था. सिर्फ हीरो की आवाज़ नहीं थे मोहम्मद रफ़ी, कॉमेडियंस में जैसे कि महमूद साहब का वो गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाया था. दोस्तों, प्रोग्राम रजनीगंधा में आज हम सब रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं. तो सिर्फ एक महान गायक को याद करना नहीं है ये, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम युग को सलाम करना है जिसकी पहचान उन्हीं की आवाज़ बन गई. इस सुरीले सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब एक झलक आपको सुनवाती हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की भजनों की. एक भी ऐसा क्षेत्र मोहम्मद रफ़ी साहब ने नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ ना दी हो. रोमांटिक सॉन्ग्स हो, इंडो वेस्टर्न सॉन्ग हो, मतलब फास्ट म्यूज़िक हो, जैसे कि आर डी बर्मन साहब के गाने गाए उन्होंने, दर्द भरे गीत हों, देशभक्ति का जज्बा हो,

की निकली आवाज के जादूगर शहंशाह तरन्नुम सुरों के सम्राट मोहम्मद रफी साहब की स्मृति दिवस पर ये विशेष एपिसोड सुन रहे हैं आप कार्यक्रम रजनीगंधा का। समाचार के उस पार मिलेंगे तो उनकी जीवन से जुड़ी और बातें और उनकी ये संगीत यात्रा उन्हीं के गीतों के साथ आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रजनीगंधा अंजू के साथ।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट की परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता को 2 घंटे की होगी और

ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें वर्तमान जलाशयों, नहरों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास के कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी कार्ययोजना पर ठोस, प्रभावी व त्वरित गति से कार्रवाई की जाए, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चित्रकूट में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लगभग 84 करोड़ रुपये लागत की 31 पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया। बैठक में चित्रकूट की 15 प्रमुख पर्यटन विकास परियोजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री ने सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने, चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर जनपद में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पारदर्शिता बढ़ाने और अनाधिकृत रूप से अल्ट्रासाउंड किए जाने पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नई तकनीकी व्यवस्था लागू करने की पहल की है। इसके तहत अब अल्ट्रासाउंड मशीन केवल संबंधित पंजीकृत चिकित्सक के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही संचालित हो सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था से चिकित्सक की अनुपस्थिति में मशीन किसी भी स्थिति में संचालित नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक अल्ट्रासाउंड का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे शिकायतों की जांच और निगरानी अधिक प्रभावी हो सके। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है रजनीगंधा।

स्वागत है आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर 100.7 एफएम रेनबो पर। रात के 11:03 का वक्त, आज 31 जुलाई 2026 है। दोस्तों 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से अचानक रुखसत हो गए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, संगीत जगत उनके चाहने वाले स्तब्ध थे। एक खालीपन सा आ गया था, लेकिन तभी शायद उन्हें मालूम था कि वो जल्दी चले जाएंगे। इतने गीत उन्होंने गाए, 26,000 से भी ज़्यादा, कि उन्हें उनकी गैर मौजूदगी, उस खालीपन को दूर करने के लिए हमारे पास एक अनमोल ख़जाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए गीतों का। और इसीलिए न्यूज़ ब्रेक में जाने से पहले देशभक्ति के गीत जो उन्होंने गाए, उसकी एक झलक एक मैशअप के रूप में आपको सुनाई, और कुछ भजन जो उन्होंने गाए थे, बहुत यादगार भजन, वो भी आपको सुनाए, एक झलक दिखाई मैंने आपको, सुनवाई। क्यों? क्योंकि सब कुछ इस 2 घंटे के कार्यक्रम में समेटना असंभव है। रफ़ी साहब को एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ। उनके विषय में बात करना, उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी एक कोशिश। 100.7 एफएम रेनबो की ओर से सुरों के सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। देशभक्ति का रंग सुना आपने, भक्तिभाव का आभास किया आपने उनकी आवाज़ में, और अब एक ऐसा गीत जो रोमांस के चरम को छूता है। उनकी आवाज़ में यही तो जादू था, जो भी भाव वो ओढ़ लेते थे बस उसे जी लेते थे, और दिल से निकली वो आवाज़, रूह से निकली वो आवाज़ रूह तक पहुंच जाती थी।

दोस्तों रफ़ी साहब की एक ख़ासियत थी, पहले तो वो अनुशासन प्रिय थे और दूसरी सबसे बड़ी ख़ासियत थी कि वो जिस अभिनेता के लिए प्लेबैक करते थे, समझ लीजिए पर्दे पर देखने पर ऐसा मालूम होता था कि वही कलाकार गा रहा है। अपनी आवाज़ को इस कदर बदलना शायद ही कोई और फनकार ऐसा कर पाया हो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गीतकार राइटर जावेद अख्तर साहब जब मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी की चर्चा करते हैं तो एक बेहद दिलचस्प बात करते हैं। उनका मानना है कि रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि उनकी गायकी अभिनय भी करती थी। जी हाँ, जावेद अख्तर साहब एक बातचीत में मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे बड़ी विशेषता का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प प्रसंग सुनाते हैं। बताते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे थे, रेडियो पर एक गीत बजा और गीत सुनते ही दोस्तों में से ही किसी ने कहा, लगता है दिलीप कुमार की कोई नई फिल्म आ रही है, जबकि फिल्म का नाम किसी को नहीं पता था। सिर्फ आवाज़ सुनकर ये एहसास हो गया था कि पर्दे पर यह गीत दिलीप कुमार पर ही फिल्माया गया होगा। और यहीं से जावेद साहब रफ़ी साहब की उस असाधारण कला की ओर इशारा करते हैं जो उन्हें दूसरे गायकों से अलग बनाती है। उनके मुताबिक मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गीत गाते नहीं थे बल्कि जिस अभिनेता के लिए गा रहे होते थे पहले उसके व्यक्तित्व, उसकी चाल, उसके हाव भाव, उसके अभिनय को अपने भीतर महसूस करते थे और फिर उसी के अनुरूप अपनी आवाज़, अपने उच्चारण और यहाँ तक कि अपने ठहराव और अपनी अदायगी को भी ढाल लेते थे। और जब जिस गीत की चर्चा इन्होंने की, जिस फिल्म की चर्चा की थी, दिलीप कुमार साहब की कोई नई फिल्म आ रही है, उसी फिल्म का वो गीत आपको सुनवाती हूँ जिसके रिकॉर्डिंग से पहले बड़ी मुश्किलें आई थी। भाई बड़ी मुश्किलें आई थी और किस प्रकार की मुश्किलें थी रफ़ी साहब को

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि अपने आवाज़ पर एक अजब सा, एक अद्भुत सा नियंत्रण था। शकील बदायूनी साहब ने जब इस गीत की रचना की तो नौशाद साहब ने राग हमीर में ये धुन बनाई। रफ़ी साहब गाने को तैयार थे, रियाज बहुत करते थे, लेकिन फिल्म कोहिनूर का ये गीत और फिल्म के प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशकों ने कहा कि भाई ये गीत कैसे गाया जाएगा, बड़ा कठिन है और ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो जानते हैं रफ़ी साहब ने क्या बोला कि अगर गीत नहीं चला तो एक रुपया नहीं लूँगा। गीत रफ़ी साहब ने गाया, दिलीप कुमार साहब पर्दे पर, दिलीप कुमार साहब पर ये फिल्माया गया था और उसके बाद ये गीत इतना पॉपुलर हुआ, राग हमीर में गाया हुआ। एक गायकी के अंदाज़ से देखें तो बड़ा कठिन गीत था, लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने उसे बखूबी निभाया, गीत सुपरहिट हुआ, बहुत चला और फिर क्या, सब खुश, किसी की कोई शिकायत नहीं। रफ़ी साहब के ऊपर जो भरोसा था संगीतकारों का, निर्माताओं का, निर्देशकों का, वो उन्होंने कमाया था। उन्होंने अपनी मेहनत से और संगीत के प्रति, अपनी साधना, अपने समर्पण के प्रति, समर्पण के जरिए कमाया था।

0: दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए ही नया निलड़जहीं भी गाया था, मधुबन में राधिका नाचेरी भी गाया था। दोनों में अलग तरह की गरिमा, गहराई, ठहराव, चंचलता थी। सुनते हुए लगता था मानो स्वयं दिलीप कुमार साहब गा रहे। लेकिन यही रफ़ी साहब जब देवानंद के लिए गाते हैं तो आवाज़ में एक अलग ही नज़ाकत, चपलता और स्टाइल आ जाता है। अभी ना जाओ छोड़ कर या खोया खोया चांद, ये गीत सुनिए तो एहसास होता है कि वही बेफिक्र और स्टाइलिश देवानंद है। और जब बारी शम्मी कपूर की आती है तो वही आवाज़ शरारत, जोश और उन्मुक्त ऊर्जा से भर उठती है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तारीफ करूं क्या उसकी दीवाना हुआ बादल। इन गीतों को सुनकर लगता है ना कि आज भी ये आवाज़ शम्मी कपूर के लिए ही बनी है और उन्हीं की तरह नाच रही है। जावेद अख्तर साहब का कहना था कि उनके जैसे जैसे एक महान अभिनेता हर फिल्म में अपना किरदार बदलता है, उसी तरह मोहम्मद रफ़ी हर अभिनेता के लिए अपनी गायकी का व्यक्तित्व ही बदल लेते थे। उनकी आवाज़ का रंग बदल जाता था, उनके मिजाज बदल जाते थे, उनकी बनावट बदल जाती थी। और यही कारण है कि कई बार ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता था कि इतने अलग अलग अंदाज में गाए गए गीत एक ही गायक की आवाज़ है। शायद यही मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे बड़ी चमत्कारिक विशेषता थी। वे केवल पार्श्व गायक नहीं थे, प्लेबैक सिंगर नहीं थे, वो पर्दे पर दिखाई देने वाले अभिनेता की आवाज़ थे। उनकी गायकी भी अभिनय करती थी और यही वजह है कि आज भी उनके गीत सुनते समय सबसे पहले हमें वो एक्टर, वो हीरो दिखाई देता है, लेकिन उसकी आत्मा में रफ़ी साहब की आवाज़ धड़कती हुई महसूस होती है। ऐसा ही एक वाकया फिल्म जंजीर के वक्त हुआ था, जिसका जिक्र अभिनेता और गीतकार गुलशन बावरा जी करते हैं। और उन्होंने बताया कि फिल्म जंजीर के वक्त जब उसके गीत की एक रिकॉर्डिंग होनी थी, एक गीत की, उस समय रोज़े चल रहे थे, रमज़ान का माह था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी रोज़ा रखा हुआ था। वो गाने की रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, गुलशन बावरा जी उन्हें बाहर ही मिलते हैं। वो आ रहे थे, मतलब वो लेट थे, रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंच पाए थे, और गुलशन बावरा जी ने उनसे पूछा कि रिकॉर्डिंग हो गई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप मेरे लिए प्लेबैक कर रहे हैं। बस फिर क्या, रफ़ी साहब झट से बोले, अरे मैंने तो ये गाना अमिताभ बच्चन को सोच कर गा दिया और मुझे नहीं मालूम था ये गीत तुम पर फिल्माया जाएगा, इस गाने को तो मुझे फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आपने जो गाया है वो बहुत अच्छा गाया है। मतलब गुलशन बावरा जी के लाख मना करने के बावजूद रफ़ी साहब वापस उल्टे पांव स्टूडियो में गए और उन्होंने वो गीत दोबारा रिकॉर्ड किया। जी हाँ, एक स्ट्रीट सिंगर का रोल था गुलशन बावरा जी का फिल्म जंजीर में, और वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर कैसी फिट बैठी, आइए सुनाते हैं वही गीत।
1: थोड़ी सी जगह मिल

दोस्तों कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जितने बड़े कलाकार थे उससे भी कहीं बड़े वो इंसान थे। सफलता उनके सिर कभी नहीं चढ़ी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो सबसे पहले पहुंचते थे, वक्त की बहुत पाबंद थे और सबसे बाद में निकलते थे, यानी अनुशासन के बहुत पक्के थे। और निकलते निकलते हमेशा संगीतकारों से और वहाँ उपस्थित लोगों से ज़रूर पूछते थे, दादा मैंने ठीक तो गाया था ना, सही था कि नहीं था। नए संगीतकारों और नए गायकों का हौसला बढ़ाना भी उनकी आदत थी। कई बार उन्होंने संघर्ष कर रहे स्ट्रगलिंग निर्माताओं संगीतकारों के लिए बहुत कम मेहनताना लिया और अलग अलग तरीक़ों से उनकी मदद की और कभी कभी बिना पारिश्रमिक के भी गाया। और ऐसा ही एक वाक्या मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संबंध में भी है कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी बनी थी उस वक्त पहली बार लक्ष्मीकांत मोहम्मद रफ़ी साहब के पास एक गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए गए तो कहने लगे, रफ़ी साहब हम तो नए हैं, हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, निर्माता हमें कम पैसे देते हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा पैसे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके लिए एक गीत कंपोज किया है आपको ही सोचकर, यदि आप इसे गा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रफ़ी साहब ने गीत सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा और इसके बाद रफ़ी साहब ने वो गीत गाया। रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संकोच करते हुए बड़े झिझकते हुए रफ़ी साहब को थोड़े से पैसे देने लगे तो रफ़ी साहब ने वो पैसे लिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को वापस करते हुए कहा कि ये तुम दोनों आपस में बांट लो, हमेशा साथ रहो, बांट कर खाओ और मिलकर कार्य करो। ऐसे थे रफ़ी साहब। और वो गीत था 1963 में आई फिल्म पारस मणि का ये गीत, जिसे आज

वाकई रफ़ी साहब बहुत याद आते हैं, लेकिन उनकी कमी, उनके जाने से जो खालीपन रहा, उनके गाए हुए गीत, उनकी आवाज़ में ये सदाबहार गीत, कभी ना पुराने होने वाले गीत पूरी करते हैं। दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में जो रजनीगंधा है और आप उसे सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की याद के दिन पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रोग्राम, ये ख़ास एपिसोड आप तक पहुंच रहा है। अब आप ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए 1966 के उस सुनहरे दौर में। दोस्तों, ये वो साल था जब हिंदी फिल्म संगीत अपनी बुलंदियों पर था। एक और महान संगीतकार एक तरफ अपनी अपनी श्रेष्ठ धुनों के साथ सामने थे, तो दूसरी ओर एक ऐसी आवाज़ थी जिस पर लगभग हर बड़ा संगीतकार भरोसा करता था, और यकीनन वो आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। उस साल संगीत की दुनिया में मानो रचनात्मक प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। SD बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन, रवि, ओपी नैयर, खयाम और युवा RD बर्मन, हर कोई अपनी धुनों को अमर बनाना चाहता था, और इन धुनों को आत्मा देने के लिए वो बार बार रफ़ी साहब की ओर ही देख रहा था। जिस स्वर की ओर सबकी नज़र जाती थी वो था रफ़ी साहब का स्वर। बॉम्बे के रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक के बाद एक नई धुनों से गूंज रहे थे। युवा RD बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आधुनिक संगीत का नया रंग रचा। रफ़ी साहब ने पूरे जोश के साथ गाया ओ हसीना जुल्फों वाली और दीवाना मुस्सा नहीं। इन गीतों ने यह साबित किया कि उनकी आवाज़ आधुनिक संगीत पर भी उतनी ही सहज है, सरल है। दूसरी ओर संगीतकार रवि ने फिल्म दो बदन में रफ़ी साहब से गवाया रहा गर्दिशों में हरदम। दर्द, बेबसी और टूटे हुए दिल की एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसे सुनकर श्रोता आज भी भावुक हो उठते हैं। फिर बारी आई मदन मोहन की। फिल्म मेरा साया में रफ़ी साहब ने गाया आपके पहलू में आकर रो दिए। वही आवाज़ लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। इसके बाद मैदान में उतरे SD बर्मन।

अपनी कालजयी फिल्म गाइड के साथ। रफ़ी साहब ने दिन ढल जाए और क्या से क्या हो गया जैसे गीतों में ऐसी भावनाएं उकेरी कि ये गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए। लेकिन मुकाबला यही नहीं रुका, साल वही था 1966, शंकर जयकिशन की फिल्म सूरज आई और रफ़ी साहब ने गाया बहारों फूल बरसाओ। ये गीत पूरे देश में लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और वर्ष के सबसे चर्चित गीतों में शामिल हो गया। इसी दौरान खयाम साहब ने फिल्म आखिरी खत में रफ़ी साहब से गवाया और कुछ देर ठहर। फिल्म भले ही बहुत बड़ी कमर्शियल हिट नहीं बन सकी लेकिन उसका संगीत खूब सराहा गया। रोशन ने फिल्म दादी माँ में रफ़ी साहब से जाता हूँ मैं मुझे अपना बुलाना जैसा मधुर गीत गाया और ओपी नैयर साहब ने आपके हसीन रुख पे और आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है जैसे गीतों से रफ़ी साहब की गायकी का एक और रंग सामने रखा। अब ज़रा सोचिए, कुछ ही महीनों के भीतर एक ही गायक कभी दर्द बन जाता है, कभी इश्क, कभी मस्ती, कभी रोमांस और कभी विरह। यही मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे खूबसूरत बात भी। इतनी लोकप्रियता के बावजूद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग पूरी होने पर विनम्र स्वर में संगीतकार से पूछा करते थे, जो अभी अभी मैंने बताया कि दादा मैंने ठीक गाया ना, अगर आप कहें तो एक टेक और कर लूँ। ये उनकी महानता थी। और उसके बाद उस साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों की वो शाम आई जिसका जिक्र इस गाने के बाद करते हैं।

दोस्तों 1966 का वो साल और उसके बाद जो महानतम संगीतकारों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा हुई कि सब ने रफ़ी साहब को लेकर अपनी अपनी फिल्म का संगीत हिट कराने की पूरी कोशिश की और बारी आई फिल्म फेयर पुरस्कारों की वो शाम रफ़ी साहब को बहारों फूल बरसाओं जो अभी आप सुन रहे हैं उसके

0: सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान गया शंकर जयकिशन को इसी फिल्म यानी फिल्म सूरज के लिए। लेकिन सच पूछा जाए तो उस साल जीत किसी एक संगीतकार की नहीं थी, जीत उस आवाज की थी जिसने हर धुन को अमर बना दिया था। आज उन ट्रॉफियों पर शायद समय की धूल जम गई हो, लेकिन दिन ढल जाए, रहा गर्दिशों में हरदम, आपके पहलू में आकर और बहारों फूल बरसाओ, आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने 60 साल पहले थे। और शायद यही कारण है कि मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ एक महान गायक नहीं थे, बल्कि भारतीय संगीत की वो मिसाल थे जिनकी आवाज़ समय की सीमाओं से बहुत आगे निकल गई थी। और इसीलिए जब भी हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की चर्चा होगी, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सबसे सम्मानित स्वरों में लिया जाएगा। बात जब होती है उनके पसंदीदा गीतों की या जो 25-26 हज़ार गीत उन्होंने गाए उनकी, तो बीबीसी आर्काइव के इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: ऐसा जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है कि

0: नई फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की चर्चा होगी। मोहम्मद रफी साहब का नाम सबसे सम्मानित स्वरों में लिया जाएगा। बात जब होती है उनके पसंदीदा गीतों की या जो 25,000-26,000 गीत उन्होंने गाए उनकी, तो बीबीसी आर्काइव के इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: ऐसा जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है कि वो इस लाइन में 35 साल हो गए और उस अरसा के अंदर मैंने कुल 25,000 गाने गए, 25,000-26,000 से जो गाने हिट हो जाते ज़्यादा एकदम वो गाने याद रहते हैं। कई ऐसे गाने भी हैं जो भूल भी गए हुए।
0: सौजन्य से बीबीसी और बीबीसी आर्काइव से ये मोहम्मद रफी साहब की वास्तविक आवाज़ आपको सुनवाने का ये प्रयत्न किया मैंने। क्वालिटी ख़राब थी जहर सी बात है, बहुत संभाल कर ये चीज़ें रखने वाली हैं। ये वो विरासत है जो आने वाली पीढ़ियाँ जब सुनेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि संगीत क्या है और संगीत की साधना सच्ची मायने में क्या होती है। मोहम्मद रफ़ी साहब की उन 25-26 हज़ार गीतों की फहरिस्त में से उनका पसंदीदा गीत

0: रात ढल चुकी।
1: ये रात आज समर्पित है महान गायक सुरों के सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके स्मृति दिवस पर। 11:40 का वक्त हुआ है, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा, आपके साथ मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला। दोस्तों, रफ़ी साहब ने बहुत सारे को सिंगर्स के साथ गाने गाए। जब वो डुएट्स गाते थे तो उनके साथ लता जी बहुत पसंद की जाती थी। हालांकि उन्होंने और भी फीमेल सिंगर्स के साथ गाने गए, आशा जी हों, सुमन कल्याणपुर हों, बहुत सारे और कलाकार, लेकिन रफ़ी साहब के ने लता जी के साथ सर्वाधिक युगल गीत गाए हैं। 60 के दशक में रॉयल्टी को लेकर दोनों में मतभेद हो गए थे, लेकिन उससे पहले जब दोनों ने शुरुआत की थी तो रफ़ी साहब लता जी को अपनी बहन मानते थे और रफ़ी लता जी को दीदी कहकर बुलाते थे। एक बार एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि उन्होंने एक बार किसी को मुझे उर्दू सिखाने के लिए भेजा।

और उनकी वजह से ही मैं उर्दू बोलना सीख पाई, जो साहिर लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, शकील मदानी, नक्श लयालपुरी और राजेंद्र कृष्ण के गीतों को गाने के लिए ज़रूरी था। 60 के दशक में रॉयल्टी के मुद्दे पर रफ़ी और लता मंगेशकर में मतभेद पैदा हो गए थे और दोनों ने साथ में गाना गाना छोड़ दिया था। सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन की कोशिशों से इन दोनों के बीच सुलह हुई थी और नरगिस ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि सुजाता देव मोहम्मद रफ़ी की जीवनी, मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में लिखती हैं कि 1967 में बंबई के षणमुखानंद हॉल में सचिन देव बर्मन नाइट का आयोजन किया गया था और इस समारोह में सभी गायकों, लता जी हों, आशा जी हों, मुकेश, रफ़ी, मन्ना डे, सबको अपने अपने सोलो गीत गाने थे। समारोह की एंकरिंग कौन कर रहा था? नरगिस दत्त, और मदन मोहन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। अचानक मदन मोहन साहब ने और नरगिस जी ने अनाउंस किया कि अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तभी मंच के एक ओर से रफ़ी और दूसरी तरफ से लता जी ने प्रवेश किया। उसके बाद तो तालियों का जो शोर हुआ उसके शब्द उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। दोनों के बीच 4 सालों का मौन था और उस दिन ज्वेल थिफ के गाने दिल पुकारे आरे आस रे से ये मौन टूटा था। बाद में लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि रफ़ी साहब कमाल के गायक थे, बेहद सुरीले और उतने ही भाव प्रवण। मुझे उनके बारे में जो बात करनी हो तो मैं यही कहूँगी कि उनके गाए गीतों में हम दोनों, तेरे घर के सामने और गाइड के गीत बहुत पसंद हैं। रविंद्र जैन ने उनके बारे में एक बार कहा था कि मोहम्मद रफ़ी भारतीय फिल्म जगत के तानसेन हैं। यही नहीं दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में शायद एक ऐसी बात है जो शायद सिर्फ उन्हीं के अकेले के लिए कही जा सकती है। मोहम्मद रफ़ी भारत में ही नहीं, शायद विश्व में एक अकेले गायक होंगे ऐसे जिन्होंने एक दूसरे प्लेबैक सिंगर को अपने स्वर दिए थे। रागिनी और शरारत जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनेता, जी हाँ, इस बार अभिनेता किशोर कुमार साहब के लिए प्लेबैक भी किया था।

आप तक पहुंचाऊं और क्या छोड़ूं। बात कर रहे थे हम किशोर कुमार साहब की। दोस्तों, जब रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब की बात आती है तो गीतकार सुधाकर शर्मा, जिन्होंने किशोर कुमार के साथ काम किया, वो बताते हैं कि 70 के दशक में किशोर कुमार आम तौर पर एक दिन में 2 या 3 गाने रिकॉर्ड करते थे, लेकिन जिस दिन उन्हें रफ़ी साहब के साथ गाना होता था वो पूरा दिन उस गाने के लिए रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि रफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं और उन्हें अंतिम रिकॉर्डिंग से पहले घंटों अभ्यास करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर एक के बाद एक चुटकुले सुनाते रहते थे, जबकि रफ़ी मुस्कुराकर उसका आनंद लिया करते थे। किशोर कुमार ने 1982 में एक फिल्म चलती का नाम जिंदगी बनाई थी, और इस फिल्म में एक कव्वाली थी जिसे गाने के लिए उन्होंने रफ़ी साहब को आमंत्रित किया था। दोनों की ये जुगलबंदी अमर है, हमेशा याद की जाती रहेगी।

दोस्तों मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह याद करते हैं रफ़ी साहब को, और एक शो के दौरान बताते हैं कि जिसमें रफ़ी और किशोर दोनों भाग ले रहे थे, किसी फैन ने किशोर कुमार से ऑटोग्राफ देने का अनुरोध किया। किशोर ने रफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे मेरे से क्यों ऑटोग्राफ ले रहे हो बंधु, संगीत तो उधर है। उन शो के दौरान किशोर रफ़ी के कुछ गाने गाते थे और बहुत आदरपूर्वक कहते थे कि मेरे पास रफ़ी साहब जैसी आवाज़ तो नहीं है, पर फिर भी मैं उनके कुछ गाने पेश करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए रफ़ी साहब की सादगी की, तो बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी भी होगी कि मोहम्मद रफ़ी को ऑटोग्राफ साइन करना नहीं आता था। महेंद्र कपूर के बेटे रूहान कपूर याद करते हैं और कहते हैं कि एक बार रफ़ी साहब और मेरे पिता ऑल इंडिया रेडियो से लौट रहे थे। कुछ लोगों ने रफ़ी साहब को पहचान लिया और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। उन्होंने मेरे पिताजी से पंजाबी में पूछा की मांग रहे ने, मेरे पिताजी ने जवाब दिया उन्हें आपके दस्तखत चाहिए। रफ़ी साहब तपाक से बोले तू कर दे। वास्तव में तब तक रफ़ी साहब को अंग्रेज़ी में दस्तखत करना नहीं आता था। जैसे जैसे वो मशहूर होते गए उन्होंने दस्तखत करने का बाकायदा अभ्यास किया ताकि वो अपने प्रशंसकों को निराश न कर सकें। उनके बेटे शाहिद रफ़ी भी बताते हैं कि वो दस्तखत के अभ्यास के लिए बहुत सारे कागज़ बर्बाद कर देते थे, लेकिन जब वो दस्तखत करने में पारंगत हो गए तो एक पत्रकार ने उनके दस्तखत की तारीफ करते हुए कहा था कि यकीन मानिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सुंदर ऑटोग्राफ, इतना सुंदर दस्तखत किसी और का नहीं है।

बहनों और भाइयों, रफी साहब की महानता तो सभी जानते ही हैं। मैंने भी जब शुरू किया हिट परेड प्रोग्राम, अपना काउंटडाउन प्रोग्राम गीतमाला रेडियो सिलोन से, और उसके बाद वो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर भी आया, तो उसमें कई बरसों तक रफ़ी साहब ही छाए रहे। हफ्तावार पायदानों पर भी नहीं, बल्कि संगीत सीढ़ी की सालाना पायदानों पर भी उनका राज रहा। बहनों भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रफ़ी साहब को काफ़ी करीब से जान पाया। बड़े प्यार से वो सबसे मिला करते थे, मुस्कुराकर, धीमी सी उनकी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, और न उनमें कोई कभी गुस्सा मैंने देखा, न कोई झुंझलाहट देखी। हमेशा बिल्कुल काम लिए, बहुत प्यार से, चुपके से सबसे मिला करते थे, और फिर जब स्टेज पर आते थे तो बिल्कुल शेर बन जाते थे, जैसे गाना होता था उस और एक दिन उसके बाद पता लगा कि महान गायक रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। मैं भी उन लाखों लोगों में शामिल था जो उनके जनाजे के साथ कब्रिस्तान की तरफ चले। बांद्रे में उनके घर के पास ही था कब्रिस्तान, तो वहाँ से मैं भी चला था। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की परवाह किसको थी। हमारा बड़ा ही प्यारा गायक, बड़ा ही प्यारा इंसान मोहम्मद रफ़ी जा रहा था सबको छोड़कर, गोया ये कहते हुए। वो गाना था ना उनका एक बहुत बहुत खूबसूरत, असद भोपाली ने जिसे लिखा था, कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा।

31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी का दिल का दौरा पड़ा। उनकी पत्नी बिल्किस ने नोट किया कि उनकी उंगलियां नीली पड़ रही हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जब उनकी जांच की तो पता चला रफ़ी साहब का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर है और वो पसीने से तर बतर हैं। कुछ ही मिनटों में अस्पताल से एम्बुलेंस आ गई, लेकिन रफ़ी ने जोर दिया कि वो अपनी फीएट से ही अस्पताल जाएंगे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन जहां पेसमेकर की व्यवस्था वहां नहीं थी। फिर उन्हें बॉम्बे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां पर डॉक्टरों ने 1.25 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उनके शरीर में पेसमेकर लगाया। जब रफ़ी को होश आया तो उन्होंने अपने शरीर में लगे तमाम पाइप्स, ऑक्सीजन ड्रिप को हटाने की कोशिश की। जब उनकी बेटी नसरीन ने उनकी तरफ देखा तो मोहम्मद रफ़ी की आंखों में आंसू थे। रात 10:25 पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोदी ने बाहर आकर उनके परिवार वालों को बताया कि रफ़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय उनकी उम्र मात्र 55 साल थी। भारतीय फिल्म उद्योग ने इतिहास में पहली बार मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में 2 दिन का शोक घोषित किया था। दोस्तों, उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके और उनके दोस्त नौशाद साहब कहते हैं कि वो करोड़ों लोगों के लिए ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जिनके गानों के साथ उनका दिन शुरू होता था और उनके नगमों के साथ ही उनकी रात ढलती थी। ऐसा हादसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि सातों सुरों के सरगम से एक सुर कम हो गया, अब सिर्फ 6 सुर ही बचे हैं।

0: रेडियो की तरंगों में, ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में, कैसेटों में, सीडी, डिजिटल प्लेलिस्ट और सबसे बढ़कर करोड़ों दिलों की धड़कनों में हमेशा जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब। 1980 का आज ही का दिन था जब सुरों का एक सितारा इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन कुछ आवाज़ें कभी खामोश नहीं होती हैं और रफ़ी साहब कभी खामोश होंगे भी नहीं।
1: वो बहारे वो चांदनी राते,
0: शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके स्मृति दिवस पर 100.7 FM रेनबो की पूरी टीम की ओर से शत शत नमन श्रद्धांजलि। इजाज़त दीजिए अंजू शुक्ला को, शुभ रात्रि, शब्बा।

नमस्कार, 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देर रात सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने जंतर मंतर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वो बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हें गलतियों से सीखने और सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, ये एक कल्चरल शॉक है। गुमराह बच्चों को राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। आइए मिलकर भारत के लिए काम करें। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये एंटी पेपर लीक कानून अब देश में आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 और से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये मंजूरी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि की नींव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026

2021 के बजट सहित किसान कल्याण कृषि विपणन एवं मंडी व्यवस्था से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। गोरखपुर में श्रावण मास के अवसर पर कांवड़ यात्रा एवं जलाभिषेक को लेकर जनपद में व्यापक यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। ये व्यवस्था सावन के प्रत्येक सोमवार 3 अगस्त 10 अगस्त 17 अगस्त और 24 अगस्त को प्रभावी रहेगी। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:31 और सूर्यास्त 6:55 पर होगा। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 7 प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। मध्यरात्रि के 12:02 का समय हुआ है। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।